पंच अगन तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तने हा, एक नाम अमृत ओह देवे, तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला, बिमल मझार बस निर्मल जल, पद्मन जावल रे, पद्मन जावल जल रस संगत, संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे, पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल, अमृत ना लखस रे रहाओ। बस जल नित ना वस्त अलियल, मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस, अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस, तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स, पिसन प्रीत ज्यो रे। पंडित संग वसे जन मूर्ख, आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स, स्वान पूछ ज्यो रे। एक पाखंडी नाम ना राचे, एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक, रसना नाम जप रे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है, हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक, जिस मस्तक पाग। शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली, सुन सह की एक बात सुहेली। जो मैं बेदन सा किस आखा।

तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पंत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू मैला पैला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करना।

दीवाना जानिए जा साहिब तेरे प्यार मंदा जाने आपको हवर पला संसार मारू महला पहला इहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तार रहाओ ना इहो तन जले।

इस तन बिन कहो किने परमगत पाए, पणत नानक अकथ की कथा सुनाए। सतगुर मिले ता यो तन पाए, मारू मैला पैला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। मूड़े काए चे परम पुला, ने चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ। अजर गहो जार ले, अमर गहो मार ले, प्रात तज छोड़ तो अप्यो पीजे। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। पणत ना

पवे। जे हर मनो मन पवन स्यो अमृत पी जय, मीन की चपल स्यो जुगत मन राखिय। उड़े न हंस न कंद चीजै, मारू मैला पैला माया मोई ना मन मुआ। सर लहरी मैं मत बोयत जल सिर तरट कै, साचा वखर जित। मानक मन में मन मारसी सच ना लागे कत, राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत। बाबा साचा साहेब दूर ना देख, सर्व जोत जग जीवना सिर सिर साचा लेख। रहाओ ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनि शंकर इंद तपे पेखारी, माने हुक्म सोहे दर साचे आकी मरे अफारी। जंगम जोत जति सन्यासी गुरपुरे विचारी, बिन सेवा फल कभू न पावस सेवा करनी सारी। नितनया तन निगुरिया गुर निमानिया तू मान, अंदुले मानक गुर

ज्ञान रतन मन मांझी है, बहुड़ न मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुटी है, मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला, जोगी जुगत नाम निर्माइल, ताके मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत बीती।

ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती, एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति, जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची, एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूझे जिस एक लिव लागी जियो रह निबराती, शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी, गुर बचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी। राग मारू मैला पहला कर पंजवा।

जियो जिसनु साचा सिफती लाए गुरमुख विरले किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो रहाओ फिर सेती तन प्रेम रचाए गुर के शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर के शब्द मरे मन मारे।

बाबा देहे वसा सच गावा, जाते सहजे सहज समावा राव, बुरा पला किच आपस ते जानिया, ए सगल विकारा ए फुरमाया खसम का हुआ, वर्त एह संसारा इंद्री तात सबल कहियत है, इंद्री किस्ते होई आपे खेल करे सब करता।

का मन अभिमाना तास तास तरम राय जप्त है। तय सच्चे की सरना मारू मैला तीजा आवन जाना नाथी है निज करवासा होए। सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार गुर कै शब्द त्याए तू सच लगी प्यार रहाओ। एथे नावो पुल्या फिर हथ किताऊ न पाए जोनी सब पुआयन बिष्टा माए समाए वड पागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए आंदिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए आपे सृष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाया जय पावे तें दे मारू मैला तीजा। पिछले गुने बख्साए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विच्चों आप गवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए सदा हर चरणी लाग रहा एक मन एक है भाई रहाओ। ना मैं जात ना पत है ना मैं त्यो न थाओ शब्द भेद प्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए क्यों मन लालच करदा फिरे लालच लागा जाए तंदे पूर्व आप्या जमपुर चोटा खाए नानक सब किछ आपे आप है दूजा नाही कोए भगत खजाना बख्शियो गुरमुखा सुख होए मारू मैला तीजा। सच रते से टोल लो से विरले संसार तिन मिलिया मुख उजला जप नाम मुरार बाबा साचा साहिब हृदय समाल सतगुर अपना पुछ देख लेहो वखर पाल रहाओ एक सच्चा सब सेम दी तुरपाग मिलावा होए गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए एक पगती सार न जाननी मनमुख परम पुलाए ओना विच आप वर्तदा करना किछु न जाए जिस नाल जोर न चले खले की चै अरदास नानक गुरमुख नाम मन वसै ता सुन करे साबास मारू मैला तीजा। मारू ते शीतल करे मनूरों कंचन होए सो साचा साला ही है तिस जेवर अवर न कोए मेरे मन अन दिन त्याए हर नाओ सतगुर के बचन अराध तू।

सत गुर प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे। दालद पंच सुदा में मिलियो भक्ति पाए तरे। भगत वचल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे। मेरे मन नाम जपत उदे त्रू प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे रहाओ। कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे। नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे। बेसुआरवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नर हरे। नाम जपत उग्रसेन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे। जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे। जन नानक हर कृपा धारी उर्धरयो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाज जप्यो लिव लाई। साधक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया। मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जप्यो ते भाए। गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जप करया। तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाओ। सुर नर गंगंदर बे जप्यो रिख बपुरे हर गाया। शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जपया। हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया। कोट कोट ते तिस्त्यायो हर जपत्या अंत न पाया। वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडत हर गाया। नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया। अनत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया। गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया। गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया।

त्याग विहूणिया तिन दुखी रहन विहानी हम जाचक दीन प्रभ तेरिया मुख दीजै अमृत बाणी सतगुर मेरा मित्र प्रभ हर मेलो सुगड़ सुजानी जन नानक शरणागति कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर पाओ लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख मिल संगत सरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख गुरपूरे हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रभ राख अमृत हर हर नाम है गुरपूरे हर रस चाख मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा देह दिस बहुलाख बिन नामे त्रिग जीव दे

हर हृदय सदा सदा समाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दिलो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवें अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सत गुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किल विकाटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदिया नाल सखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ। निर्भव निरंकार सतनाम, जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठे मारो, हर सेवक नेर ना जाई जियो। जिस ऊपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जम कंकर खाई जियो। सब में एक निरंजन करता, सब कर कर वेखे अपने चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे, जिस करता आप छड़ाई जियो। हौ अंदिन नाम लई करता रे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू मैला पंजवा, कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद, डर पे तरत आकाश नखत्रा।

सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ देह तार अर देवा डर पै सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया राजस सातक तामस डर पै केते रूप उपाया छल बपरी ए कौला डर पै अत डर पै धर्म राया सगल समग्री डरे व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सो है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बद्धिक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराद्यो गजपत पार उतारे इनी रखिया भगत प्रहलादे हर नाखस नखें विदा

रे आयो साम नानक ओट हर की लीजे पूजा पसारे मारू महला पंजवा वित्त न वित्त प्रमेय बहु पांते अनक

ठाकुर तिस्ते मुख नहीं मोरे हो। सहज आनंद रखियो गए पीतर उठ उआ हूँ कौ दौरे हो। आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सोग हरख नहीं जाने हो। जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले माने हो। पयो किरपाल ठाकुर सेवक को सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया। जिन नानक खसम पछाता मारू मैला पंजवा खुलिया कर्म किरपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई। श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई। अब मोह जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई राव। काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई। सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई। सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई। पावन पतत किए खिन पीतर महिमा कथन न जाई। निरपो पय सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई। नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिनस लिवलाई। मारू मैला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे। छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे। अपने प्रभु को क्यों ना समार सने बैरी संग रंग रस रचिया।

जिसका जास सुनत पवतरी है तांस्यो रंग ना लावसरे। थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकावसरे। पयो प्रसाद कृपा निध ठाकुर संत संग पत पाई कहो नानक त्रै।

दुलारयो हस्त पाव चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रहे हो मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो लून खाए करे हराम खोरी पेखत नैन बिदारे हो रहा हो असाद रोग उपजो तन पीतर तरत न काहू तारे हो प्रभ विसरत महा दुख पायो एहु नानक तत विचारे हो मारू मैला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत हर गुण गावे नीता नीत तिस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जा के वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गयो

सूद वै सब एक है नाम तरानत। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानत। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। बिसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दव तुम। नहीं सुनियो तर्म राय रहाओ विकार पाथर गले बांधे। निंद पोट सिराए महासागर समुद्र लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे विराए। शीश उठावन न कबू मिले महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पे मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए त्याए हर जियो होए।

आया था। अनुपव अचरज रूप प्रपेखिया, मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोल अमोल न पाया जाई। कर कृपा गुरु दिवाया था रहाओ, अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो, तें अमृत नाम च्यो आया था। तोट नाही मन तृष्णा बूझी, अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे, अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक परम।

ताऊ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट ना कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ ना कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आघाए, मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने पयो प्रगास, काती देरी पगे ते गुर की नी बंद खलास, आवन जान रहे हो कपत कलाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो रहा,

जिन गुरु मिल हर हर गाया, ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा, नामो वडियाई सोबा नानक खसम त्या।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहार।

दी गढ़ है, एक सुखने दाम न छड़ है, राज कमाए करी जिन थैली, ताके संग न चंचल चलिया, एक प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाप महतारी, सुत नीत प्राप्त गोजी, ताके निकट न होई खलिया, होए अवतूत।

मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया। कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए। चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जियो।

नानक ताकै बल बल जाए। राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाओ। मिथ्या वस्त सत पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता। अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता। कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या।

मन तन बासना बहुत विस्तारा, अंगमेव मूठो बेचारा, अनेक दोख और बहुत सजाई, ताकि कीमत कह न जाए, प्रभु विसरत नरक में पाया, तह मात न बंद न मीत न जाया, जिसको होत कृपाल स्वामी, सोजन नानक पार ग्रामी, प्रमत प्रमत प्रव स्वर्णी आया, दीना नाथ जगत पित माया, प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण, जिस पावे तिस ही निस्तारण, अंधकूप से काडनहारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा, साद रूप अपना तन तारिया, मां अगन ते आप उबारिया, जप तप संजम इस्ते किछ नाही, आद अंत प्रभ अगम अगाही, नाम दे मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा, मारू महला पंजवा, कत कौ डह कावो।

का आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई अपने को कृपा करियो इस नाम से आई नानक दीन नाम मांगे दुखिया परम चुकाई मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अपारा।

सेवा मारू महला पन्नवा तत्त उदाहरण तारण बल बल बले बल जाय ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा यह ओट आधारा।

सगलो भूमंडल खंडल प्रभ तुम ही आछे। अटल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मेला पंजवा तृप्त अघाए संता, गुरजाने जिन मंता ताकी किछ कह न जाई, जा को नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव, अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो। तेखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो, ने चल तिनका।

समाज सुभाए, हर पंडार हाथ आया, नानक गुर ते पाया, मारू मेला पंजवा कर छीवा दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियान पा, मिल साध त्याग गुमान, और सब कुछ मिटे।

बिना तै मिले सुख विश्राम, गुर प्रसाद नानक बखाने, हर भजन तत् ज्ञान मारू मैला पंजवा। जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे के, पुत्र मित्र विलास बनता टूटते इहने, मेरे मन नाम

नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो नीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल मात

सूर सजले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू मैला पंजवा पतित पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महा

हुआ। पंच तात कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़े जी, देही विच जियो आए पया। जिथे अगन पखे परहारे, पूरद मुख महा गुबारे, सास सास समाले सोई, उठे खत्म छड़ाए लया। विच्चों गर्भे निकल आया, खत्म विसार दुनी चित लाया, आवे जाए पुवाई जोनी, रहन न कितनी खाए।

रूप प्रदान है। कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है। आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण।

हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उद्रियो, गनकाहु गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निध गायो, ताको पयो सहाई। कहो नानक में यही परोस है, गही आम शरणाई।

काल फास जब घर में मेली ते शुद्ध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाय जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जग सब न गाय मारू मैला नामा माई में मन को मान न त्यागो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लागो राव जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत तय जागो कहा होत अब कै पछताए छूटत नाहीं भाग्यो ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुरागियो सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभ जस मैं पाग्यो मारू अक्षदिया मैला पहला कर पहला ओंकार सतगुरु प्रसाद वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका हर सत तीर्थ बहु कहा प्रम था के देखा साचो साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उधारा गुरपूरे पूरी मत है पूरे शब्द विचारा अठहठ तीर्थ हर नाम है किल विस्का तनहारा जल बिलोवे जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना गुरमति जद मत्थी है अमृत पाये नाम निदाना मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना हों मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार गुर कै शब्दे जे मरे फिर मरे ना दूजी वार गुरमति जग जीवन मन वसै

पाए कार कमावणी नित तोता से सारा साची संगत थान सचे सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ सचे सच नाम आधारा सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा मोटा नाव तराई है गल औगुण पारा मानस दात न हो वही तू दाता सारा अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा गुरु शब्दी दर जोई है मुक्ते पंडारा नानक मेल न चूकई साके वापारा मारू मैला पहला बिख बोयथा ला दिया दिया समुंद मंझार कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना केवटू जल सागर सराल बाबा जग फाथा मां जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ सतगुरु है बोए था सबद लंगावन हार तिथे पवन ना पाव को ना जल ना आकार तिथे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सों लिवलाए आवा गौन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए गुरमति सह रूप जय सच्चे रह समाए सप पिड़ाई पाए दिख अंतर मन रोस पूरब लिखिया पाए किसनो दी जय दोष गुरमुख गारण जे सुने मने नाव संतोख मागर मच पाए कुंडी जाल बताए गुरमत फाथा पाए फिर पछोताए जमन मरण न सुजई कीर्तना में क्या जाए हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए जरा जोहे ना सकई सच रहे लिवलाए जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए तंदे तामत जग बांदिया ना बूझे विचार जमन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार सुहट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार सच चुगे अमृत पिए उडे ताए कावार गुर मिले खसम पछाणी है कहो नानक मोख द्वार मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तह जाओ जिस तह डर तह पागी है अमृत ता को नाओ मारे राखे एक तू बीजो ना ही खाओ बाबा मैं कुचील काचो मत हीन नाम बिना को कछ नहीं गुरपूर है पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाए जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार आगे पाछे सुख नहीं गाडे लादे चार विछड़िया मेला नहीं दुख करो जम द्वार अगे क्या जाना नाहे मैं पूले तू समझाए पूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए गुरबिन दाता को नहीं कीमत कह न जाए साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख मुख तिमाने तन खरी गुरमुख आखी देख खुद पावे तू मन वसे नगरी कर्म विशेख भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे बीजो सूजे को नहीं मन तन पूरन दे जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतुर स्वरूप जो तिस पावे सोती है तू दीपक तू धूप गीत साध चाखे सुने बाद साध तन रोग सच पावे साचो चवे छूटे सोग विजोग नानक नाम ना विसरे जो तिस पावे सो होग मारू मैला पहला
ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਬਾਦ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੈ ਮੋਹਿਆ ਜੇਵਾ ਸਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕੋ ਰਸ ਨਹੀ ਹੋਰ ਚਲੈ ਦਿਖਲਾਦ ਐਸਾ ਲਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਕੋ ਸੁਣ ਖਤਮ ਹਮਾਰੇ ਜਿਉ ਫੁਰਮਾਵੇ ਤਿਉ ਚਲਾ ਸਚ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਉ ਅੰਦਿਨ ਲਾਲੇ ਚਾਕਰੀ ਗੋਲੇ ਸਿਰ ਮੀਰਾ ਗੁਰਬਚਨੀ ਮਨ ਵੇਚਿਆ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤੀਰਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਸਾਬਾ ਸਹਿ ਕਾਟੈ ਮਨ ਪੀਰਾ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਤਣੀ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹੋ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਪਾਣੇ ਬਖਸੇ ਪੂਰਾ ਤਣੀ ਸਤਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ ਵਿਛੜਿਆ ਕੋ ਮੇਲ ਲੈ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ ਹੈ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਮਤ ਖਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਨੀ ਕੀ ਸਾਚੀ ਸੁਰਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਨਮੁਖ ਮਤ ਪੀ ਕੀ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਚ ਤੀਰਥ ਤੁਰ ਕੀ ਸਾਚੈ ਬੈਸਣ ਉੱਠਣਾ ਸਚ ਭੋਜਨ ਪਾਖਿਆ ਚਿਤ ਸਚੈ ਵਿਤੋ ਸਚਾ ਸਾਚਾ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਸਾਚੈ ਕਰ ਸਾਚੈ ਰਖੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸੁਵਾਖਿਆ ਮਨ ਮੁਖ ਕੋ ਆਲਸ ਕਣੋ ਸਾਚੇ ਉਜਾੜੀ ਸਾਥਾ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਚੋਗੜੀ ਲਗ ਬੰਦ ਵਿਗਾੜੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਾਚੇ ਨਿਜ ਤਾਰੀ ਅਨਹਤ ਲਾਲਾ ਬੇਦਿਆ ਪ੍ਰਭ ਹੇਤ ਪਿਆਰੀ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਜਿਉ ਜਲ ਬਲੋ ਝੂਠੇ ਵੇਕਾਰੀ ਬਾਦਕਾਰਾ ਸਭ ਛੋਡੀਆਂ।

हर नाम तू बख्शे ता मेल ले नानक बल जाओ मारू मेला पहला लाले गर्व छोड़िया गुर के पैसे तुभाई लाले खत्म पछाणिया वड्डी वड्याई खत्म मिले सुख पाया कीमत कह न जाए लाला गोला खत्म का खत्म वड्याई गुर प्रसादी उबरे हर की शरणाई रहाओ लाले नो सिरकार है उर खत्म फुरमाई लाले हुकम पछाणिया सदा रह रजाई आपे मीरा बसले वड्डी वड्याई आप सच्चा सब सच

कह गुर शब्द बुझाई, तेरी सेवा सो करे जिसनो लह सुलाई, बिन सेवा किने न पाया दूजे परम खुआई, सो क्यों मनो विसारी है नित देवे चले सुलाया, जियो पिंड सब तिसदा साओ तिने विपाया, जा कृपा करे ता सेवी है सेव सच समाया, लाला सो जीवत मरे मर विच्चों आत गवाए, बंधन टूटे मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए, सब में नाम निदान है गुरमुख को पाए, लाले विच गुण किस नहीं लाला अवगणयार, तुझ जेवर दाता को नहीं तू बख्शनहार, तेरा हुक्म लाला मन्ने के करनी सार, गुर सागर अमृत सर जो इच्छे सो फल पाए, नाम पदार्थ अमर है हृदय मन वसाए, गुर सेवा सदा सुख है जिसनो हुक्म मनाए, सोना रूपा सब तात है माटी रल जाई, बिन नावे नाल न चलई सतगुर बूझ बुझाई, नानक नाम रते से निर्मले साचे रहे समाई, मारू मैला पहला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे चीर है, तेहो मन अवगुण बांधया सो दे शरीर है, पूरे गुर बख्शाई है सब गुने फकीर है, क्यों रही है उठ चलना बुद्ध शब्द बिचारा, जिस तू मेले सो मिले तुर हुक्मा पारा रहा, जो तू राखे त्यों रहा जो दे सो खाओ, जो तू चलावे त्यों चला मुख अमृत नाओ, मेरे ठाकुर हथ वड्याईया मेले मन चाओ, कीता क्या सालाई है कर देखे सोई, जिनकी आसो मन वसे मैं अवर न कोई, सो साचा सालाई है साची पत होई, पंडित पर न पहुंचई बहु आल जंजाला, पाप पुन दे संग में खुदया

पहला मात पिता संयोग उपाय रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पव जल क्यों तरे गुरुमुख नाम निरंजन पाले अफरे पार अपार तरह रहाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे तू दाता दयाल सदै सिर एनिस दास संवार करे चार पदार्थ ले जग जन्मिया शिव शक्ति कर वास करे लागी पूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे तरन पलाव करे नहीं पावे किस उत टूंडत थाक परे काम क्रोध अंकार व्यापे कूड़ कुटंब क्यों प्रीत करे खावे पोगे सुन सु देखे पहर दिखावे काल करे बिन गुर सब दिन आप पछाने बिन हर नाम ना काल करे जे कामो हो मैं कर पूले मेरी मेरी करते छीन खड़े तन तन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जोबन तन खिपिया कफ कंठ बिरु दो नैनो नीर तरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे सुरत गई काली हूँ तोले किसे न पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दोख लागे जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मिटई जन्म मरे का को दोष तरे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे खुशी खुआर पै रस पोगण फोकट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो फिर कर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जा को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुरु गोविंद हरे हर सिमरो गुरु बचन समारो संगत हर जन पाव करे हर जन गुर प्रदान द्वारे नानक तिन जन की रे।

सो सौ रंग रवंत सबे रुति चंगिया जित सच्चे सुने हो सात अनकंत पछाणिया सुख सुखी निस देहो पत्तन तूके पातनी वंजो तुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़ हिक नी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिन्नी सच वणंजिया से सच्चे प्रभ नाल ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोए नानक हो।

एक जोत दो नाओ। मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। गुरुद्वारे नाओ पाये बिन सतगुर पल्ले ना पाए। सतगुर कह पाने।

जियो एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा कुख गवाए आपन लिया किछु न पाए कर कृपा कल तारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नजर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचों गवाए सतगुर बाजो सब तंग कमावे देखो मन विचारी जियो एक परम पूले फिरे अंकारी इकना गुरमुख हो मैं मारी सच्चे शब्द रते बैरागी और परम पुले गावारी जियो गुरमुख जिन्नी नाम न पाया मनमुख बिरसा

तीजा अष्टपदिया इकोंकार सतगुरु प्रसाद लख चौरासी परमते दुर्लभ जन्म अब पायो रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो राव रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर कीतना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर नाम रस रसना उचारे मिष्ट गूढ़ा रंग मेरे मान को स्थान मीत साजन

ना कही मोख मुक्त द्वार जा कै संत रिदा भंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिनसै जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहै ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिद जाके अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान स्नान बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास बिसर नाही निमक मन ते नानक की अरदास।

चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन न मनी विपरीत, ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत, कर परगास पर चंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो बिखाद, शीत मंद सुगंध चलियो सर्वथान समान, जहां सा किछ तहां लागयो तिल ना शंका मान, सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए, चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल, मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंत।

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुरते मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुरचरणी मन लागना, ए विदित से प्राप्ते जा के मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभ की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख सजावना, दर्शन भेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना, नौ निद रिद सिद्ध पाई जो तुमरे मन पावना, संत बिना मैं थाओ न कोई हवर न सूजे जावना, मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रामना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना, पहनना रखपत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना, पोगना मन मदे हर रस संत संगत में लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी मन हर पगति संग सीवना, मात्या हर रस में राते तिस बहुड़ न कबहु औखीवना, मिलियो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार सतगुरु प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दोहु व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला पालिए, ग्रह राज में नरक उदास करोदा बहुविध वेद पाठ सब सोदा, देही में जो रहे अलिप्ता तिस जन की पूरन कालिए, जागत सूता परम विगूता बिन गुरु मुक्त ना होइए मीता, साध संग टूटे हो बंधन एको एक निहालिए, कर्म करे ता बंदा ने करे ता निंदा, मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने कट कट राम हे आलिए, संसार में सहसा व्यापे अकत कथा अगोचर नहीं जापे, जिसे बुझाए सोई बूझे ओ बालक वांगी पालिए, छोड़ बह तो छूटे नाही जो

अमृत नाम दान नानक को गुण गीता नित वखानिया। मारू सोलहे महला पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। साचा सच सोई अवर न कोई जिन सिर जी तिन ही फुन गोई। ज्यो पावे त्यो राखो रहना तुम स्यो क्या मुकराई है। आप उपाय आप खपाए आपे सिर सिर तंदे लाए। आपे विचारी गुणकारी आपे मार्ग लाई है। आपे दाना आपे बीना आपे आप उपाय पतीना। आपे पौन पानी बैसंतर आपे मेल मिलाई है। आपे सतसूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा। काल जाल जम जोहे न साके साचे स्यों लिवलाए।

आपे पावरफुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच खच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बख्शे, आपे दे ले पाई है। आपे तनख आपे सरबाना, आपे सुगढ़ स्वरूप सियाना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उदर संजोगी धरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेले खेल आई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

सहज रस अंतरमाने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, जोदी सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजै नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख है, कोई न मेटे साचे लेख है, आपे करे कराए आपे, आपे देवड़े आए है। पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले, काया नगर टह टह तेरी।

बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूझे त्रिभुवन सूझे, मन सामार मने क्यों लूझे, जो तुद सेवे से तुद ही जे है, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला, जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता, ना तिस मात पिता सुर्ग

कोई न काटे अवगुण मेरे, सुर नर नाथ साहिब सबना सिर, पाए मिले पहु जाई है, फूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे, बिन नावे मैं अवर न दिसे, नामो गत मित पाई है, गंगा जमुना केल किदारा, काशी कांति पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, अठसठ अंक समाई है, आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अगली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है, आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला, आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैर आई है, जिस बख्शे तिस देव डियाई, सबसे दाता तिल ना तमाई, परपुर तार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है, क्या काला ही अगम अपार है, साचे सिर जनहार मुरार है, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है, उबे सेवे अलख अपार है।

आवत राखे ठाक रहाया, कमल बिगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर थाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सवाया, जिन सिरिया तिन तंदे लाया, सच्चे ऊपर

दीगर जो निस सुपने पखलाई है तिनको तख्त मिली वड्याई निरपो मन वस्या लिव लाई खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी त्रिभुवन ताड़ी लाई है साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साथ मिले सुख पावा साचे साचे तख्त वडाई हौ मैं गणत गवाई है गणत गणिये सहसा जी है क्यों सुख पावे दुए पी है निर्मल एक निरंजन दाता गुर पूरे ते पत पाई है जुग जुग विरली गुरमुख जाता साचा रव रहा मन राता तिसकी ओट गही सुख पाया मन तन मैल न काई है जीव रसायन साचे राती हर प्रभ संगी पौ ना पराती श्रवण स्रोत रजे गुरु।

नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है मारू महला पहला, आद जुगादी अपर अपारे, आद निरंजन खत्म हमारे साचे।

सच नाम सच्ची वड्याई सच है तख्त वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वर्ते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है सच है हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगह साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वर्ते साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेत धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाने मनमुख पचे अवाई है। मनमुख कदे न दरगह सीजे बिन शब्द क्यों अंतर रीजे बांदे आवे बांदे जावे सो जी बूझ न काई है। दया दुआ पर अद्दी होई गुरमुख विरला चीने कोई दोए पग धर्म तरे तरणी तर गुरमुख साच तिथाई।

मुक्त मंगाही मुक्त पदार्थ सबद सलाही बिन गुर शब्द मुक्त न होई परपंच कर परमाई है माया ममता चोदी न जाई से छूटे सचकार कमाई एनस भगत रते विचारी ठाकुर स्यो बन आई है एक जप तप कर कर तीर्थ नावे जो तुद पावे तिवे चलावे हठ निग्रह अब चीज ना पीजे बिन हर गुर किन पत पाई है कली काल में इक कल राखी बिन गुर पूरे किन न पाखी मन मुख कूड़ वरते वरतारा बिन सतगुर परम न जाई है सतगुर वे परवाव सिरंदा ना जमकान ना छंदा बंदा जो तिस सेवे सो अबनासी ना तिस काल संताई है गुर में आप रखिया करता रे गुरमुख कोट असंख उधारे सर्व दिया जग जीवन दाता निरपव मैल न काई है सगले जाते गुर पंडारी आप निरंजन अलखा पारी नानक साच कह प्रभ जाते मैं दीजे साच रजाई है मारू महला पहला साचे मेले शब्द मिलाए जात इस पाना सहज समाए त्रिभुवन ज्योत करी परमेश्वर अवर न दूजा पाई।

परब न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है। बिन बाद विरोध है कोई नाही, मैं दिखा लियो तिस्ता लाही। मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर्ष्यों बनत बनाई है। प्रभ की गत मित कोई न पावे, जे को वड्डा

जो किछ करे सो आपे आपे भगत पाओ गुर की मत पूरी अनहद शब्द लखाई है एक नांगे भूखे पवे पवाए एक हठ कर मरे ना कीमत पाए गत अवगत की सार ना जाने बूझे शब्द कमा।

गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे आवाई, पच पच बूढ़े कूर कमावे, कूर काल बैराए है, हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सोसाज कमावे, नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है, मारू मैला पहला, आपे करता पुरख विदाता, जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है, आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाहा, गुर संगत ये बड़ाई है, जुग जुग संत पले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे, उस्तत करें पर हर दुख दालद, जिन नाही चिंत पर आई है, ओए जागत रहे न सूते दिसे, संगत कुल तारे साच परिसे, कलमल मैल नाही ते निर्मल, ओए रहे भगत लिवलाई है, बूजो हर जन सतगुर बाणी, इहो जो बन सात है देह पुराणी, आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है, छोड़ो प्राणी कूर कबाड़ा, कूर मारे काल उछाहारा, साकत कूर पचे मन हो मैं, दोहो मार्ग पचे पचाई है, छोड़ो निंदा तात पर आई, पढ़ पढ़ दज्जे सांत नाई, मिल सत्संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है, छोड़ो काम क्रोध बुरे आई, हों मैं तंद छोड़ो लंकटाई, सतगुर शरण परो ता उबरो, क्यों तरिये पवजल पाई है, आगे बिमल नदी अगन बिखतेला, तिथे अवर न कोई जियो इकेला, पढ़ पढ़ अगन सागर दे

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करन अंदर, विघन नाही गुरमुख तरकारी, क्यों पाव जल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे सबद रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाये, मर जन में आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तक सो शब्द विचारे, तत लह अंतर्गत जाने, सतसंगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबारे, ताड़ी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्यों तिस पाना तिवे चलाए, तिसे सरीक ना दीसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग तत्वारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूझे गुर विचारा है, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, कौन पानी अग्नि मिल जिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवासा।

काली हुफुन तौले आए, विणनावे गत गया गवाए, दुर्मत अंगला बिनस बिनासे, मूठे रोए पुकारा है, आप विचार न रोवे कोई, सतगुर मिले ता सोजी होई, बिन गुर बजर कपाट न फूले, शब्द मिले निस्तारा है, बिरद पया तन छीजे देही, राम न जपै अंत स्नेही, नाम विसार चले मुँह काले, दरगे झूठ खुआरा है, नाम विसार चले कूड़ियारो, आवत जात पड़े सिर छारो, सौरड़े कर वास न पाए, पेयड़े सिर मारा है, खाजे पैजे रली करीजे।

पछाने गुर के संग शब्द कर जाने किसी मंदा आंख न चले सच खरा सच आरा है साच बिना दर्श जय न कोई हाथ शब्द कह जय पत होई आपे बख्श ले तिस पावे हों मैं गर्भ निवारा है गुर कृपा ते हुकम पछाने जुगे जुगंतर की विद जाने नानक नाम जपो तर तारी सच तारे तारण हारा है मारू मैला पहला हरसा मीत नाही मैं कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारे सागर में रतन लाल बहु सारे मोती मानक हीरा हर जक गावत मन तन पीना है हर अगम अगाओ अगाध निराला हर अंत न पाये गुर गोपाला सतगुर मत तारे तारण हारा मेल ले रंग लीना है सतगुर बाजो मुक्त किने ही ओ आद जुगादी राम स्नेही दरगे मुक्त करे कर कृपा बक्से अवगुण की नाहे सतगुरु दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रख पाए जम जागात नाही कर लागे।

श्रेष्ठ उपाय रह प्रभ छाजे, पौन पानी बैसंतर गाजे, मनुआ डोले दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की ना है, नाम विसार दोख दुख सही है, हुकुम पया चलना क्यों रही है, नरक कूप में गोते खावे, जो जलते बाहर मीना है, 84 नरक साकत पोगाई है, जैसा की कह तैसो पाई है, सतगुर बाजो मुक्त न होई, किस बांदा ग्रस दीना है, खंडे तार गली अथ पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र फुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त पराई।

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमुख को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखिए मूले, गुरुमुख लिख विचारा है। गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुर पार उतारा है। मन मुख अंगले सोजी नाही, आवे जाहे मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख ना मिटे, जमदर अंध खो

तनेरे नरक पते अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी ली जाए दिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूड़ कमावे रोग बुरा बुरे आ रहा है मस्तक पार कल

जम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत् विचारा है। कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजै पड़ पड़ पाही। अमृत नाम गुरु वरदाना नाम जपो सुख सारा है। सतगुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए। कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखण हारा है। खेहू खेर ले तन छीजै मन मुख पाखर सैल न पीजै। करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुरग अवतार।

कूकर सूकर कहीं है कूड़ियारा, पौक मरे पौ पौ पौ हारा, मनसा चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है। सतगुर मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जप दरगे प्यारा है। राम नाम साधु शरणाई, सतगुर बचनी गत मित पाई, नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मेलन हारा है। मारू मेला पहला कर रहो रे मन मुग्ध याने, राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है। जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखा फुन आगे, राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा, एनस राम रहो रंग राते, क्यों जप तप संजम सारा है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो, गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्भ मजारा है। सच तीरथ नावो हर गुण गावो, सत विचारो हर लिवलावो, अंतकाल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है। सत गुर पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना, जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है। पंच तत् मिल काया कीनी, तिस में राम रतन ले चीनी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है। सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई, आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुर संगत क्यों निस्तारा है। साकत पूर कपट महते का, हैनत निंदा करे अनेका, बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्भ जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मुके, बाकी तर्म राय की लीजे, सिर अफरियो पार असारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परिया, बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है। गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई, जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। गुर ते पूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो, साकत मूर अचेत न चेते, दुख लाग

तू प्राणी सो अपना किया करारा है। हों मैं ममता करदा आया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत चाले चाले बिखला दे चार बिकारा है। हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मने समाई उठ चलता ठाक रखो कर अपने दुख काटे काटन हारा है। हर गुरु पूरे की ओट पराती गुरमुख हर ले गुरमुख जाती नानक राम नाम मत उत्तम हर बख्शे पार उतारा है। मारू महला पहला शरण परे गुरुदेव तुम्हारी तू समरथ दयाल मुरारी तेरे चोज न जाने कोई तू पूरा पुरख विदाता है। तू आद जुगाद करे प्रतपाला कट कट रूप अनूप दयाला ज्यो तुद पावे तिवे चलावे सब तेरो किया कमाता है। अंतर ज्योत पली जग जीवन सब कट पो गए हर रस पीवन आपे लेवे आपे देवे तिहो लोई जगत पित दाता है। जगत उपाय खेल

निराला, कोई गुरमुख बूझे सब निराला, साकत दुर्मत डूबे दाजे, गुर राखे हर लिव राता है, अब तेज वाए पृथ्वी आकाशा, दिन में पंच तत् करवासा, सतगुर शब्द रहे रंग राता, तज माया हो मैं प्राता है, इव मन पी जय शब्द पति जय, बिन नावे क्या टेक टिकी जय, अंतर चोर मुह कर मंदर, इन साकत दूत ना जाता है, दुंदर दूत पूत पिहाले, किंचो तान करें बेताले, सब

जम कंकर काल पर आता है, जम दर बांधे मिले सजाई, तिस अपराधी गत नहीं काई, करण पलाव करे बिल लावे, ज्यो कुंडी मीन पर आता है, साकत फांसी पड़े अकेला, जम वस किया अंध दुहेला, राम नाम बिन मुक्त न सूजे, आज काल पच जाता है, सतगुरु बाज न बेली कोई, एथे उथे राखा प्रभु सोई, राम नाम देवे कर कृपा, क्यों सलल सलल मिलाता है, फूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए, जिस गुरु सेव सदा दिन राती, दुख पंजन संग सखाता है, गुर की पगत करे क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश न जाने, सतगुर अलक कहो क्यों लखिए, जिस बख्शे तिसे पछाता है, अंतर प्रेम परापत दर्शन, गुरबाणी स्यो प्रीत सो प्रसन, एनत निर्मल ज्योत सबाई, काट दीपक गुरमुख जाता है, भोजन ज्ञान महारस मीठा, जिन चाख्या तिन दर्शन जीठा, दर्शन देख मिले बैरागी, मन मन सामार समाता है, सतगुर सेवे से प्रधाना, तिन कट कट अंतर ब्रह्म पचाना, नानक हर जस हर जन की संगत दीजे, जिन सतगुर हर प्रभु जाता है। मारू महला पहला, साचे साहिब सिरजन हारे, जिन कर चक्र करे विचारे, आपे करता कर

बिन मुक्त न होई, सच नाम जप लाहा है, पढ़े मन मुख पर विद नहीं जाना, नाम न बूझे परम पुलाना।

पराख है, जिनको नदर करे प्रभ अपनी, गुरुमुख सब सलाहा है। सुन सुन आखे कीर्ति बाणी, सुन कहिए को अंत न जाने, जा को अलख लखाए आपे, अकथ कथा बुधता है। जन्मे को वाजे वादाए, सोह लड़े अज्ञानी गाए, जो जन्मे तिस सर पर मरना, कृत पया सिर साहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ किए, सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए, दुख

सच्चा वखर जिस तन पल्ले शब्द सच्चे ओ महा है। काची सौदी तोता आवे गुरमुख वणज करे प्रभु पावे पूंजी साबत रात सलामत चूका जम का फाहा है। सब को बोले आपन पाने मन मुख दूजे बोल न जाने अंदले की मत अंदली बोली आए गया दुख ताहा है। दुख में जन्मे दुख में मरना।

डाल छोड़ तत्मूल पराता मनसाचा ओ माहा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है, ओढ़ न कथने सिर्फ सजा।

नानक साथ मिले पत राखो, तू सिर साहा पातशाह है, मारू मैला पहला दखनी, काया नगर नगर घर अंदर, साचा वासा पुर गगन अंदर, अस्थिर थान सदा निर्माइल, आपे आप उपाएंदा, अंदर कोट छजे हट नाले, आपे ले वे वस्त समाले, बजर कपाट जड़े जड़ जाने, गुर सब्जी खोलाएंदा, पीतर कोट गुफा कर जाई, नौ कर खापे हुक्म रजाई, दसवें पुरख अलेख अपारी, आपे अलख लखाएंदा, पौन पानी अग्नि इकवासा, आपे की तो खेल तमाशा, बल्दी जल निवरे कृपाते, आपे जल निद पाएंदा, तर्क उपाय तरी धर्मशाला, उत्पत पर लो आप निराला, पौने खेल किया सब खाई, कला किंच टहाएंदा, पार अठारे मालन तेरी, चौर तुले पवने ले फेरी, चंद सूरज दोए दीपक राखे, सत कर सूर समाएंदा, पंखी पंच उडर नहीं तावे, सफल्यो बिरख अमृत फल पावे, गुरमुख सहज रवे गुण गावे, हर रस चोग चुगाएंदा, तिल मिल चिल के चंद न तारा, सूरज किरण न बिजल गैनारा, अकत्ती कथो चेन नहीं कोई, पूर रहा मन पाएंदा, पसरी किरण जोत उजियाला, कर कर देखे आप दयाला, अनहद रुण चुन कार सदा सुन, निरपौ के करवाएंदा, अनहद वाजे परम पौ पाजे, सगल व्याप रहा प्रभु साजे, सब तेरी तू गुरमुख जाता, दरसो है गुण गाएंदा, आप निरंजन निर्मल सोई, अवर न जाना दूजा कोई, एक अंकार वसे मन पावे।

कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे, वे प्रवाह अखुट पंडार है। तू दयाल कृपाल सदा प्रभ, आपे मेल मिलाएगा, आपे देख दिखावे, आपे आपे थाप उठापे, आपे आपे जोड़ विछोड़े करता, आपे मार जीवाएगा। जेती है तेती तुद अंदर, देखे आप बैठ बिज मंदर, नानक साच कह बेनंती, हर दर्शन सुख पाएगा। मारू महला पहला दर्शन।

दरबारे मुक्त पए हर दास तुम्हारे आप गवाए तेरे रंग राते हम दिन नाम ते आएंदा ईश्वर ब्रह्मा देवी देवा इंद्र तपे मुन तेरी सेवा जति सती के ते बनवासी अंत न कोई पाएंदा विण जान आए कोई न जाने जो किस करे सो आपन पाने लख चौरासी जी उपाय पाने सह लवाएंदा जो तिस पावे सो नेचो होवे मन मुख आप दनाए रोवे नाम पुल्ला ठौर न पाए आए जाए दुख पाएंदा निर्मल काया उजल हंसा तिस विच नाम निरंजन अंसा सगले दुख अमृत कर पीवे बहुर दुख न पाएंदा बहु साधो दुख प्राप्त होवे ओगो रोग सो अंत विगोवे हरखो सोग न मिटई कभू बिन पाने परमाएंदा ज्ञान विहूनी पवे सबाई साचा रव रहा लिव लाई निरपौ शब्द गुरु सच जाता ज्योति ज्योत मिलाएंदा अटल अडोल अतोल मुरारे खिन में चाहे फिर उसारे रूप न रेखिया मृत नहीं कीमत शब्द भेद पति आएंदा हम दासन के दास प्यारे साधित साच पले विचारे मन्ने नाओ सोई जिन जासी आपके साथ बिड़ाएंदा पल्ले साच सचे सच्यारा साचे पावे शब्द प्यारा त्रिभवन साच कला तर थापी साचे ही पति आएंदा वड्डा वड्डा आखे सब कोई गुरु बिन सो जी किरे न होई साच मिले सो साचे पाए ना विछड़ दुख पाएंदा गुरु विचुन्ने ताही रुन्ने मर मर जन में मोहलत पुन्ने जिस बख्शे तिस दे वड्याई मेल न पछोताएंदा आपे करता आपे पुगता आपे तृप्ता आपे मुक्ता आपे मुक्त दान मुक्ति सर।

पहला अरबद नरबद तुंदू कारा तरना गगना हुकम अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी ओ पत खपत ना आवन जानी खंड पताल सपत नहीं सागर नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मच पयाला दोजक पेत नहीं खै काला नरक सुरग नहीं।

पुरख नहीं जात न जन्मा ना को दुख सुख पाएगा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी योगी जंगम पेख न कोई ना को नाथ कहाएगा जप तप संयम ना व्रत पूजा ना को आंख बखाने दूजा आपे आप उपाय विगसे आपे कीमत पाएगा ना सुच संयम।

ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएंदा निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएंदा वरन पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव ना देहोरा।

मसाई कहा जी रैयत राव न हो मैं दुनिया ना तो कहन कहाएंदा पाओ न पलती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एवो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएंदा जात पाना ता जब उपाया बाज कला आडान रहाया ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय माया मोह वधाएंदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मंड पत

पंडार है, सर्व कला ले आपे रहया, गुरमुख किसे बुझाएंदा, नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जम धार न मारे फेटे, यो जल अंतर कमल बिगासी, आपे बिरसते आएंदा, आपे वर्ख है अमृत तारा, रतन जवे हर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा पाये, प्रेम पदार्थ पाएंदा, प्रेम पदार्थ ले अमोलो, कभी न काटस पूरा तोलो, सच्चे का व्यापारी होवे, सच्चो सौदा पाएंदा, सच्चा सौदा बिरला को पाए, पूरा सतगुर हृदय मिलाए, गुरमुख होए सो हुकम पछाने, माने हुकम समाएदा, हुकमे आया हुकम समाया, हुकमे दीसे जगत उपाया, हुकमे सुर्ग मच पयाला, हुकमे कला रहाएदा, हुकमे तरती तौल सिर पारंग, हुकमे पौन पानी गैनारंग, हुकमे शिव शक्ति करवासा, हुकमे खेल खिलाएदा, हुकमे आडाने आगासी, हुकमे जल फल त्रिभुवनवासी, हुक्मे सास गिरा सदा फुन, हुक्मे देख दिखाएंदा, हुक्म उपाए दस अवतारा, देव दानव अगणत अपारा, माने हुक्म सो दरगह पैजे, साथ मिलाए समाएंदा, हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे, आप नाथ नक्की सब जाकी, बख्शे मुक्त कराएंदा, काया कोट करे मैं राजा, नेब खवास पला दरवाजा, मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताएंदा, सत संतोख नगर में कारी, जत सत संयम शरण मुरारी, नानक सहज मिले जग जीवन, गुर सबदी पत पाएंदा, मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी।

आप निरालम अपर अपारी आपे कुदरत कर कर देखे है। सुनो सुन उपाय दा कौन पानी सुने के साजे श्रेष्ठ उपाय काया गढ़ राजे अगन पानी जियो ज्योत कुमारी सुनने कला रहाए दा सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय सुनने वर्ते जुब सवाए किस पद विचारे सो जन पूरा किस मिलिए परम चुकाए दा सुनो सपत सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे तित सत सर मनुआ गुरमुख नावे फिर बहुड़ जोन न पाए दा सुनो चंद सूरज गहना रे किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे सुनने अलख अपार निरालम सुनने ताड़ी लाएंदा सुनो तरत आकाश उपाए बिन थम्मा राखे सच काल पाए त्रिभुवन साज मेखली माया आप उपाय खपाएंदा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समानी कुछ कुछ चलत किया सुर करते विस्माद शब्द देखाएंदा सुनो रात दिन सदोय किए ओ पत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा साम वेद ऋग जुजर असर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रै गुण ताकि कीमत कह न सके को त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा सुनो सप्त पताल उपाय सुनो पवन रखे लिवलाए आपे कारण किया परम्पर सब तेरो किया कमाएंदा राज्य तम सत कल तेरी छाया जन्म मरण हो मैं दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथे मुक्त कराएंदा सुनो उपजे दस अवतारा श्रेष्ठ उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजे सब लिखिया कर्म कमाएंदा गुरमुख समझे रोग न होई हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुग है जुगंतर मुक्त परायण सो मुक्त पया पत पाएंदा पंच तत् सुनो परिगासा दे संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा पला दोय मस्तक लीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुरु पुरख निराले शब्द रते हर रसमत वाले रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये पूरे पाग मिलाएंदा इस मन माया को

अंदर जुगत समाई रहो निरालम राया। जग तिस की छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैन ना प्राव कमाया। ना तिस ओपत खपत पुल जाती, ओ अजरावर मन पाया। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निरा।

निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द सिखाया। उत्तम जन संत पले हर प्यारे हर रस माते पार उतारे। नानक रेण संत जन संगत।

पाया, पंच तत् मिले तन किया, आत्म राम पाए सुख किया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना किस भूख प्यास मन मान्या, सर्व निरंजन कट कट जान्या, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुवाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, सब दिर साल रसन रस रसना, बेन रसाल बजाया, बेन रसाल बजावे सोई, जाकी त्रिभुवन सोजी होई, नानक बूजो ए विद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रह निरारे, आप तरह संगत कुल तारे, तिन सफल जन्म जग आया, कर दर मंदर जाने सोई, जिस पूरे गुर ते सोजी होई, काया गर महल मैली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतुर्दश हाथ दीवे दो साखी, सेवक पंच नाही बिचाखी, अंतर वस्त अनूप निर्मोलक, गुर मिले हर तन पाया, तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाए गुरमत पायक, आद जुगादी है भी होसी, सहसा परम चुकाया, सखत सलाम होवे दिन राती, क्यों साथ वडाई गुरमत लिव जाती, नानक राम जपो तर तारी, हर अंत सखाई पाया, मारू मैला पहला, हर तन संचो रे जन पाई, सतगुरु सेव रहो सरनाई, तस्कर चोर ना लागे ताको, तुन उपजे शब्द जगाया, तू एकंकार निरालम राजा, तू आप सवार है जन के काजा, अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थिर स्थान सुहाया, देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोक वसें

सच्चे महल निवास निरंतर आवन जान चुकाया, नामन चले न पौन उड़ावे, योगी शब्द अनाहद वावे, पंच शब्द चुनकार निरालम प्रभा।

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साची जम फासी, नानक हर प्रभ सो पो पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोर सवाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कस वट्टी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसैने केवल, गुरपुरख है पुरख मिलाया, प्रवदाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकुल निरंजन गाया, हों में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहार, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सच कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जप पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव तरिये, अकल गाये जमते क्या डरिये, जत जत देखो तत तत तुम ही, और ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कठ है देख है अपरंपर, उन गर्व ना जो नहीं जाया, सच बिन सत संतोख ना पावे, बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुंद अथा मां बिक परिया, रह अतीत गुरमतले ऊपर, हर निरपो कै कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हों मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई है, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है, गुरमत लेहो तरो पवज उतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत लेहो परम पद पाई है।

नानक हर रंग रंगाया मारू मेला पहला काम क्रोध पर हर पर निंदा लब लोभ सज हो निचिंदा क्रम का संगल तोड़ निराला हर अंतर हर रस पाया नित दामन जो चमक चंदायन देखे ऐनस ज्योत निरंतर देखे आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुरपुरे देखाया सतगुरु मिलो आपे प्रवतारे सत कर सूर दीपक गहनारे देख अदित रहो लिव लागी सब त्रिभुवन ब्रह्म सवाया अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए अनपौ पद पावे आप गवाए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजे हर जपिए अंत न पाया अंतर नाम प्राप्त हीरा हर जपते मन मन से तीरा दुकट कट पौ पंजन पाये बाहर जन्म न जाया भगत हेत गुर सब तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मिलाए हर तारे जगत सवाया जिन जप जपियो सतगुर मत वाके जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल पार कराया ये पौजल जगत शब्द गुर तरिये अंतर की दुबदा अंतर जरिये पंच बाण ले जम को मारे गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये शब्द सुरत बिन आये जाये नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पाग मिलाया निरपौ सतगुर है रखवाला भगत परापत गुरु गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजे गुरु शब्द निरंजन पाया निरपौ को सिर नाही लेखा आप अलेख कुदरत है देखा आप अतीत अजोनी संभो नानक गुरमत सो पाया अंतर की जब सतगुरु जाने सो निरपौ गुर शब्द पछाने अंतर देख निरंतर बूझे अंत न मन डोलाया निरपौ सो अब अंतर वसया एनस नाम निरंजन रसया नानक हर जब संगत पाये हर सहजे सहज मिलाया अंतर बार सो प्रभु जाने रह अलिप्त चलते कर आने ऊपर आद सर्ब तिहु लोई सच नानक अमृत रस पाया मारू मैला पहला कुदरत करने हार अपारा कीते का नाही क्यों चारा जी उपाय रिजक दे आपे सिर सिर हुक्म चलाए रहा पर पूरे किस नेड़े किस आखा दूरे गुप्त प्रगट हर कट कट देखो वर्त ताक सबाया जिसको मेले सुर समाए गुर शब्दी हर नाम ते आए अनद रूप अनूप अगोचर गुर मिले परम जाया मन तन तन ते नाम प्यारा संत सखाई चलन वारा मोह पसार नहीं संग बेली बिन हर गुर किन सुख पाया जिसको नदर करे गुर पूरा शब्द मिलाए गुरमत सूरा नानक गुर के चरण सरेवो जिन पूला मार्ग पाया संत जना हर तन जस प्यारा गुरमत पाया नाम तुम्हारा जाचक सेव करे दर हर के हर दर गए जस गाया सत गुर मिले तम महल बुलाए साची दर गए गत पत पाए साकत ठोर नाई हर मंदर जन्म मरे दुख पाया सेवो सतगुर समुंद अथाहा पावो नाम रतन तन लाहा दिखिया मल जाए अमृत सर नावो गुर सर संतोख पाया सतगुर सेवो संत न की जय आशा माए निराश रही जय संसार दुख बिना सन सेवो फिर बहुर रोग न लाया साचे पावे तिस वधियाए कौन सो दूजा तिस समझाए हर गुरु मूरत एकावर्त है नानक हर गुरु पाया वाच्य है पुस्तक वेद पुराना इक बह सुने सुनावे काना अजदर कपट कहो क्यों खुले बिन सतगुरु तत न पाया करें विपूत लगावे पस में अंतर क्रोध चंडाल सोहो में पखंड की ने जोग न पाये बिन सतगुरु अलख न पाया तीरथ वर्त नेम करें उद्याना जप

बिन क्यों सुख पाये, बिन सतगुरु परम न जाया। न्योली करम प्रियंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी, पाखंड तरम प्रीत।

नानक आत्म राम सभाया। गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोले मैला तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हुक्मे सहजे सृष्ट उपाई, कर कर वेखे अपनी वड्याई। आपे करे कराए आपे, हुक्मे रहा समाई है। माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बूझे को विचारा। आपे नजर करे सो पाए, आपे मेल मिलाई है। आपे मेले दे वड्याई, गुर प्रसादी कीमत पाई। मनमुख बहुत पुरे बिललांदी, दूजे पाए खुआई है। हौं मैं माया विचे पाई, मनमुख पूले पत गवाई। गुरमुख होवे सो नाए राचे, साचे रहा समाई है। गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया, मन सामार मन माहे समाया। आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है। सतगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए। अंतर प्यार पगति राता, सहज मते बन आई है। दुख निवारण गुर से जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता। जिसनो लाए सोई बूझे, पौ परम शरीरों जाई है। आपे गुरमुख आपे देवे, सच्चे शब्द सतगुर सेवे। जरा जम तिस जोहे न साचे, साचे स्यों बन आई है। कृष्णा अग्न जले संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू, सतगुर बूझ बुझाई है। सतगुर सेवन सेवड पागी, साचे नाम सदा लिव लागी। अंतर नाम रविया ने केवल, कृष्णा शब्द बुझाई है। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरले किने पछाणी। सच्चे शब्द रते बैरागी, आवन जान रहाई है। शब्द बुझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसे मन आए। सतगुर अपना सद ही सेवे, हौ मैं विच्चों जाई है। गुर ते बूझे ता दर सूझे, नाम विहूणा कत कत लूझे। सतगुर सेवे की वड्याई, कृष्णा फूक गवाई है। आपे आप मिले ता बूझे, ज्ञान विहूणा किछु न सूझे। गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द वजाई है। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया,

नानक दास कहे बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वर्त है सब सोई, गुरमुख गिरला बूझे कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर न कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आज सुनाए, सबना रिजक समाए आते, कीमत होर न

आपे थाप उठापे आपे सच्चा हुक्म सच्चा पासारा होरन हुक्म ना होई है। आपे लाए ले सो लागे गुरु प्रसादी जम का पौ पागे अंतर शब्द सदा सुखदाता गुरमुख बूझे कोई है। आपे मेले मेल मिलाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए हम दिन भगत करे दिन राती गुरमुख सेवा होई है। सतगुर सेव सदा सुख जाता आपे आए मिलिया सबना का।

तुझे अंग दिन नाम रवे दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजे है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरसा।

जन्म गवाया, बिन गुरु मुक्त ना होई है। काया कुसुद हो मैं मल लाई, जे सौ तो मैं ता मैल ना जाई। सब तो पै ता अच्छी हो वै, फिर मैली मूल ना होई है। पंच दूत काया संगार है, मर मर जम मैं शब्द ना विचार है। अंतर माया मोह गुबारा, जो सुपने सुध ना होई है। एक पंचा मार शब्द है लागे, सतगुर आए मिलिया वड पागे। अंतर साथ रहे रंग राते, सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे, पूरा सेवक शब्द जापे। सदा शब्द रवे कट अंतर, रसना रसता कै सच सोई है। हम मैं मारे शब्द निवारे, हर का नाम रखे उधारे। एक बिन हों होर ना जाना, सहजे होए सो होई है। बिन सतगुरु सहज किने नहीं पाया, गुरमुख बूझे सत समाया। सच्चा सेव शब्द सच राते, हों मैं शब्दे खोई है। आपे गुण

है। साचे ते पत होई है मारू मैला तीजा, जग जीवन साचा एको दाता। गुर सेवा से शब्द पछाता, एको अमर एका पत साही। जुग जुग सिरकार बनाई है सोजन निर्मल जिन आप पछाता। आपे आए मिलिया सुखदाता, रसना शब्द रसी गुण गावे। दर साचे पत पाई है गुरमुख नाम मिले वड्याई। मन मुख निंदक पत गवाई, नाम रते परमहंस बैरागी। निज कर तारी लाई है शब्द मरे सोई जन पूरा। सतगुर आख सुनाए सूरा, काया अंदर अमृत सर साचा। मन पीवे पाए सुवाई है पर पंडित अवरा समझाए। पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुर से वे नाम न पाए। पर था के सांत न आई है, एक पसम लगाए फिरे पेक तारी। बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती। परम पेक परमाई है एक ग्रे कुटुम्ब में सदा उदासी। शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते। तह पाए भगत चित लाई है, मन मुख निंदा कर कर विगुता। अंतर लोभ पहुँच है जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े। अंत गया पछताई है, सच्चे शब्द सच्ची पत होई। बिन नामे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुर को नाम न पाए। प्रभ ऐसी बंत बनाई है, एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी। एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे। भगत पाए पहु जाई है, स्नान दान करे नहीं बूझे। एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते करंगी। साचे शब्द मिलाई है आपे सिरजे दे वड्याई। आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या। मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है, सतगुर सेवे से जन साचे। मन मुख सेव न जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे। जो पावे त्यों लाई है, जुग जुग साचा एको दाता। पूरे पाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही। नदरी सहज मिलाई है हूँ मैं माया, मैल कमाया। मर मर जम मैं दूजा पाया, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई। मन देखो लिव लाई है,

सी का मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है। अवगण्यारी कंस न पावे मन की झूठी झूठ कमावे। फिर का साव न जाने मूरख बिन गुरबूझ न पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे सिगार करे फिर खत्म न पावे। गुणवंती सदा पिर रावे सदगुरु मेल मिलाई है। आपे हुक्म करे सब वेखे इकना बख्श ले तुर लेखे। हम दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है। हम मैं तात मुह रख लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई। आपे मेल है आपे कर वेखे बिन सतगुरु बूझ न पाई है। एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे अपागे। आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाई है। काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखे और धारे। सतगुरु सेवा ते सुख पाया हर के नाम समाई है। दूजे पाए फिरे देवानी माया मोह दुख माए समानी। बहुते पेक करे न पाए बिन सतगुरु सुख न पाई है। किसनो कहिए जा आप कराए जित पावे तित राह चलाए। आपे मेहरवान सुखदाता ज्यो पावे तें चलाई है। आपे करता आपे पुगता आपे संजम आपे जुगता। आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है। सेवड पागी जिन्नी एको जाता कट कट वस रहा जग जीवन दाता। एक है गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख परम पहु जाई है। गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता। जिस तू दे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है। मारू महला तीजा सत साला ही गहर गंभीर है। सब जग है तिस ही कहती रह सब कट भोग वह सदा दिन राती। आपे सुख निवासी है सच्चा साहिब सच्ची नाई। गुरु प्रसादी मन वसाई आपे आए वस्या कट अंतर टूटी जम की फांसी है। किस सेवी तै किस सलाही सतगुर सेवी शब्द सलाही। सच्चे शब्द सदा मत उत्तम अंतर कमल प्रगासी है। देही काची कागद मिकदारा बूंद पवे बिन सह कहत ना लागे बारा। कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पोजन सच आधारा। सदा तृप्त पवित्र है पावन जित कट हर नाम निवासी है। हौ तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अमदिन जागे। साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस राशी है। हर नाम चेता अवर न पूजा एको सेवी अवर न दूजा। पूरे गुर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है। प्रम प्रम जोनी फिर आया आप पूला जा खत्म पुलाया। हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे चीने शब्द अविनाशी है। काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मुह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी। डुबदे पाथर मेल ले हो तुम आपे साथ नाम अविनाशी है। ना कोई करे न करने जोगा आपे करे करावे तो होएगा। आपे बस ले सुख पाए सभी नाम निवासी है। त्यो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज वपारा। सच तन जमया कोट ना आवे अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगण्यारे नो गुण की जय आपे बस ले नाम दी जय। गुरमुख होवे सो पट पाए इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ ना होई गुर प्रसादी बूझे कोई। गुरमुख होवे सो तन पाए सभी नाम निवासी है। अनलवाओ परम फुलाई माया मोह सुध न काई। मनमुख अंधे किछु न सूझे गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हो मैं माया सूते अपना कर न समाले अंत विगूते। पर निंदा करें बहु चिंता जाले दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई। नानक नाम रते

आपे लाए ले जग जीवन दाता, खापे बख्शे दे वड्याई, गुरमत एव मन पी जय है, माया लहर शब्द निवारी, एव मन निर्मल हो मैं मारी, सहजे गुण गावे रंग राता, रसना राम रवि जय है, मेरी मेरी करत विहानी, मन मुख ना बूझे फिर आनी, जम काल करी मौत निहाल।

माया मोह मैल पतंग ना लागै, गुरमति हर नाम पी जाए, सबना विच वरतै इक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हौ मैं मारथ दा सुख पाया, नाए साचै अमृत पी जाए, किलविक दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा, सब किश आपे आप वरतै, गुरमुख तन मन पी जाए, माया अगन जले संसारे, गुरमुख निवारे शब्द विचारे, अंतर सांप सदा सुख पाया, गुरमति नाम ली जाए, इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे, जमना छोड़े बहु कर्म कमावे, सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये, हर हर रसना पी जाए, मनमुख अंतर पगत न होई, गुरमुख पगत शांत सुख होई, पवित्र पावन सदा है बाणी, गुरमत अंतर पी जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी, त्रै गुण बद्धक मुक्त निरारी, गुरमुख ज्ञान एको है जाता, अंदिन नाम रवि जाए, वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूजे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जाए, वेद बाद सब आंख वखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरमुख अमृत पी जाए, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अव

सच्चे सच्चा तख्त रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही साथ वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है, सच्चा सौदा सच वापारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोत ना आवे, बूझे कोई चारी है, सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक वड़।

गुरमत ऊंचो ऊंची पौड़ी ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है। माया मोह शब्द जलाया सच मन वस्या जा सुध पाया। सच्चे की सब सच्ची करनी हूँ मैं सिखाने वारी है। माया मोह सब आपे कीना गुरमुख विरले किन्ही चीना। गुरमुख वो वैसो सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई। गुरमत सद ही अंतर शीतल हूँ मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किस पावे सच्चे शब्दे सच सुहावे। ऐसे साचे से दर साचे नगरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सवाया। बिन गुर दुख सुख जाते नाही माया मोह दुख पारी है। साचा शब्द जिना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया। सच्चो सेवे सच त्यावे सच रते विचारी है। गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सुख सहज समाधि। हर हर करत्या मन निर्मल होआ गुर की सेव प्यारी है। से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे पाने आप मिलाए।

सतगुरु राखे से जन उभरे होर माया मोह खुआरी है। गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कुटुंब ना तिस माता एको एक रव्या सब अंतर सब ना जिया का आधारी है। हूं मैं मेरा दूजा पाया किछ ना चले तुरख।

पहला तीजा आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्ते एक प्रसन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एक हो जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहु चित विकारा फिर साचा साला ही सदही जिन गुरु का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है।

जा तुद पाना ता सच्ची कारे लाए अवगुण छोड़ गुण माए समाए गुण में एको निर्मल साचा गुर कह सबद पछाता है जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत सब देखोई एक में प्रभ एक समाना अपने रंग सदराता है काया।

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सबाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरमुख शब्द वसे मन साचा, सद से वे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सद।

इतना गुरुमुख शब्द पछाता है। पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रहे रंग राता है, काया नगर टह

दर साचे साच पछाता है मारु सो ले तीजा। आपे करता सब जिस करना जी जंक सब तेरी सरना। आपे गुप्त वर्त सब अंतर गुर कै शब्द पछाता है। हर के भगत परे पंडारा आपे

कर कृपा आप पछाता है। जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जम्मे चूके तेरी। साचे गुण गावे दिन राती, जुग जुग एक हो जाता है। माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सबाया। जो तुड पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है। पाप पुन वर्ते संसारा, हर्ष शोक सब दुख है पारा। गुरुमुख होवे सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है। कीर्तन कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोख द्वारा। पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। माया मोह हर क्यों चितना लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे। मनमुख परम पुले पेख सारी, अंतकाल पछताता है। हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किल विख काटे दुख सवाए। हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन राता है। जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हों मैं मेरा ठाक रहाए। गुण अवगुण का एको दाता, गुरुमुख वीर ली जाता है। मेरा प्रभु निर्मल अत अपारा, आपे मेले गुर शब्द विचारा। आपे बक्से सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है। मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरमत बूझे कर विचारा। हों मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है। गर काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा। गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हों मैं मार पछाता है। रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा। गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है। सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा। मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विर ले जाता है। आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए। नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एक हो जाता है। मारू महला तीजा, को सच सेवियो सृजन हारा। सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई। आपे अगम असहा है, आपे सच्चा सत वरताए। एक जन सच है आपे लाए, साचो सेवे साच कमावे। नामे सच समाहा है, तुर पगता मेले आप मिलाए। सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे। इस जन्मे का लाहा है, गुरमुख वणज करे पर आप पछाणे। एक बिन को अवर न जाने, सच्चा साव सच्चे वन जारे। पूंजी नाम विसाहा है, आपे साजे सृष्ट उपाए। विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेवे से जन साचे। काटे जम का फाहा है, पन्ने करे सवारे साजे। माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख फिरे सदा अंध कमावे। जम का जेवड़ा गल फाहा है, आपे बख्शे गुर सेवा लाए। गुरमती नाम मन वसाए, अंदिन नाम त्याए साचा। इस जग में नामो लाहा है, आपे सच्चा सच्ची नाई। गुरमुख देवे मन वसाई, जिन मन वस्या से जन सो है। तिन सिर चूका कहा है, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई। गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुण दाता। लेखा कोई न मंगे ताहा है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र किसकी सेवा। अंत न पावे अलख वेवा, जिनको नजर करे तू अपनी। गुरमुख अलख लखाहा है, पूरे सतगुर सो जी पाई। एको नाम मन वसाई, नाम जपी तै नाम त्याई। महल पाए गुण गाहा है, सेवक सेवे मन हुक्म अपारा। मन मुख हुक्म न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई। हुक्मे वे परवाहा है, गुर प्रसादी हुक्म पछाने। तावत राखे इक

खबत सलाह है से जन निर्मल निज करवा सा ताहा है। सदा भगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरु।

सच देवो सच समाहे मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन साच नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रव्या कत अंतर शब्द सच्चै ओ माहे। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहे। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रहे इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहा है। दुख सुख कर चै तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरमुख हो वै सो अलिप्तो वर्त मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तय बिन क्यों निरपो सच पाये जम काड लेगा सहा है। अफरियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेर ना आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख हो वै सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर वे

गुरमुख हो वह सो नाम बूझे काटे दुर्मत पाहा है। गुरमुख उपजे साज समावे ना मर जमे ना जूनी पावे। गुरमुख सदा रहे रंग राते अन दिन लेन दे लाहा है। गुरमुख भगत सोहे दरबारे सच्ची बाणी सब सवारे। अन दिन गुण गावे दिन राती सह छेती कर जाहा है। सतगुर पूरा सब सुनाए।

नानक जन नाम सलाहे, बिगसै सो नाम बेपरवाह है। मारू महला तीजा हर जियो सेवियो अगम अपारा, तिसदा अंत न पाये पारा वारा। गुर प्रसाद रविया कट अंतर, तित कट मत अगाहा है। सब मैं वरतै एको सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। सबना प्रतपाल करे जग जीवन, दींदा रिजिक संभाहा है। पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगत उपाया। हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर साहा पात साहा है। सच्चा सतगुर शब्द अपारा, तिस दे शब्द निस्तर है संसारा। आपे करता कर कर वेख है, दींदा सास गिराहा है। कोट मदे किसे बुझाए, गुर के शब्द रते रंग लाए। हर साला है सदा सुखदाता, हर

सतगुर पूरा सात दृढ़ाए, सच्चे शब्द सदा गुण गाए, गुणदाता वर्त है सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरमुख जाते, सब देशे वै सो जंत्रापे, अनदिन सेवै सच्ची बाणी, शब्द सच्चे ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लभ लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया तट अंतर, मन पीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभु साचा असुर संगारण, गुर के शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभु साचा सद ही साचा, फिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करें गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अम दिन गावे, निरतन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल भी छोड़े नाही, गुर के शब्द सदा साला ही, सबना सिर तू एको साहिब, सबदे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुदनो कोई न जानी, तुद आपे कथी अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे तेरे दरबारे, सबदे सेवन

वर्ते अवर न बिया गुरु प्रसादी आप पछाने कमल बिकसे बुध कहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिर्फ सलाह है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावन।

गुर कै शब्द अमृती आया, अमृती अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुका है, गुर सेवा ते सब किछ पाए, हौ मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुर कै शब्द सोहा है, गुर का शब्द अमृत है बाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसै कट अंतर, सो कट निर्मलता है, सेवक सेवे शब्द सराहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बसे शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकप तफे साला है, मेरे प्रभु साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्द का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आसाला है, तेरे गुण प्रभु तुझी माँ है, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते तक अंतर वस्या, सब दे सच सलाहा है, से जन मिले

पूरे गुर ते सोजी होई, हर रस पीने सदा त्यायन, गुरमत शील सनाहा है, अंदर रंग सदा प्यारा, गुर कै सबद हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वस्या सठ अंतर, छोड़िया माया काला है, रैयत राजे दुर्मत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक त्यायन सदा सुख पायन, नेचल राज तिनाहा है, आमन जाना रखे न कोई, जम्मन मरण तिसहते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावो, गत मुक्त तिसहते पाहा है, सच संजम

कहो मैं मोह उपजय संसारा, सब जग बिन सह नाम विसारा, बिन सतगुर सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर शब्द तुहाया, पंच शब्द मिलवा जावाया, सदा कारज सच नाम सुहेला, बिन शब्द कारज केहा है, छिन में हसे छिन में रोवे, दूजी दुर्मत कारज न होवे, संजोग विजोग करते लिख पाए, कीर्तना चले चलाहा है, जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए, हास्यों सद ही रह समाए, गुर कृपा से मिले वड्याए, हों मैं रोग ना ताहा है, रस रस खाए पिंड वधाए, एक करे गुर शब्द ना कमाए, अंतर रोग महा दुख पारी, बिस्ता माए समाहा है, वेद पढ़े पढ़ बाद वखाने, काट में ब्रह्म तिस शब्द ना पछाने, गुरमुख होवे सो तत बिलोवे, रसना हर रस ताहा है, सार वस छोड़े बाहर तावे, मन मुख अंधे साध न पावे, अन रस राती रसना फीकी, बोले हर रस मूल न ताहा है, मन मुख देही परम पकारो, दुर्मत मरे नित होए खुआरो, काम क्रोध मन दूजे लाया, सुपने सुख न ताहा है, कंचन देही शब्द पतारो, आम दिन पोग पोगे हर्षों प्यारो, महला अंदर गैर महल पाए, पाना बुझ समाहा है, आपे देवे देवनहारा, किस आगे नहीं किसे का चारा, आपे बक्ते शब्द में

सबसे मैं सच्चो सच्चा गुरुमुख सबक सुनाएदा गुरुमुख हो वह सो जी पाए हो मैं माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम ऊंची दर सच्चे हर गुण गाएदा गुरुमुख सच संजम करनी सार गुरुमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएदा गुरमुख हो वह मन खोज सुनाए सच्चे नाम सदा लिवलाए जो तिस पावे सोई करसी जो सच्चे मन पाएदा जां तिस पावे सतगुरु मिलाए जां तिस पावे ता मन वसाए अपने पाने सदा

गुरुमुख होवे सो सुख कमाए, मरण जीवन की सो जी पाए। मरण जीवन जो सम कर जाने सो मेरे प्रभ पाएंदा।

गुरमुख निर्मल मैल न लावे, नानक नाम रते विचारी, नामे नाम समाएदा मारू महला तीजा, आपे श्रेष्ठ हुकम सब साजी, आपे खाप उठाप निवाजी, आपे न्याय करे सब साचा, साचे साथ मिलाएदा, काया कोट है आकारा।

अनवस्या तक अंतर रसना नाम से आएंदा जिस अंतर पवे अंतर नहीं पाले माया मोह बद्दा जम काले जम की फांसी कब होना टूटे दूजे पाए परमाएंदा जब तब संयम होर कोई नाही जब लग गुर का शब्द ना कमाही गुर के शब्द मिलिया सच पाया सच्चे सच समाएंदा काम क्रोध सबल संसारा बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा सतगुर सेवे से सुख पावे सच्चे शब्द मिलाएंदा पौन पानी है बेसंतर माया मोह वर्ते सब अंतर जिनकी ते जात से पछाने माया मोह चुकाएंदा इक माया मोह गर्भ व्यापे हो मैं होए रहे हैं आपे जमका लेकी खबर ना पाई।

सच नाम सितलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कह शब्द पछाता सुदनो सेवे से तुझे समावे तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर की।

लख चौरासी आप उपाए, मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाए, बिन भगती विस्तारित वासा, विस्तारित कृपाए दा, कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाए, बिन कर्मा क्यों पाया जाए, आपे करे कराए करता, ज्यो पावे तिमे चलाए दा, सिमरत सासत अंत न जाने, मूरख अंधा तप न पछाने, आपे करे कराए करता, आपे परम पुलाए दा, सब किस आपे आप कराए, आपे सिर सिर संदे लाए, आपे थाप उठा पे वेख है, गुरमुख आप बुझाए दा, सच्चा साहिब गहर गंभीरा, सदा सलाही तामन तीरा, अदम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाए दा, आप निराल मोह

जुग छत्ती कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आख वखाने, तू आपे कीमत पाएंदा, ओंकार सब सृष्ट उपाय, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेद करे सब साचा, आपे पन कराएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे स्यों चितलाएंदा, बाजे बाजे तुन आकारा, आप वजाए वजावन हारा,

सहसा मूल नष्ट कह विकारा, गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए, सच्चे सच समाएदा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाएदा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटनहारा, हर कै नाम तन मन शीतल होवा, सहजे सह समाएदा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वा पारा, कूर बोल दुख पाएदा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाएदा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाएदा, अनेक जतन करे इंद्री वसना होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुरु

को पाएगा। सतगुर सेवे सहज आनंदा, हृदय आए उठा गोविंदा, सहजे भगत करे दिन राती, आपे भगत कराएगा। सतगुर ते बिछड़े तिन्नी दुख पाया, हम दिन मारिये दुख सबाया, मथे काले महल न पावे, दुखी वित दुख पाएगा। सतगुर सेवे सेवड पागी, सहज पाए सच्ची लिव लागी, सचो सच कमावे सदी, सच्चे मेल मिलाएगा। जिसनो सच्चा देश हो पाए, अंतर साज परम चुकाए, सच सच्चे का आपे दाता, जिस देवे सो सच पाएगा। आपे करता सबना का सोई, जिसनो आप बुझाए बुझे कोई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मिलाएगा। हों मैं कर दिया जन्म गवाया, आगे मुह न चूके माया, अगे जम काल लेखा लेवे, जो तिल कानी पीड़ाएगा। पूरे पाक गुर सेवा होई, नजर करे ता सेवे कोई, जम काल किस नेड़ ना आवे, महल सच्चे सुख पाएगा। तिन सुख पाया जो तुद पाए, पूरे पाक गुर सेवा लाए, तेरे हाथ है सब वड्याई, जिस देवे सो पाएगा। अंदर प्रदास गुरु ते पाए, नाम पदार्थ मन वसाए।

मन ने सो मिले तो दुआए, जिस पाना पावे सो तुझे समाए, पाने विच वड्डी वड्याई पाना किसे कराए दा, जात पावे ता गुरु मिलाए।

पाए गुर कै शब्द सच चित लाए जिसनो सच देव सोई सच पाए सच्चे सच मिलाएंदा नाम विसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नामे मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएंदा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाए सदा

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम ते आइंदा, नावे नो लोचे जेती सब आई, नाव तिना मिले तुर पुरब कमाई, जिन्नी नाव पाया सेवट पागी, गुर कै शब्द मिलाएंदा, काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रभ करे विचारा, सच्चा न्याओ सच्चो वापारा, निचल वासा पाएंदा, अंतर कर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, इस साथ निभ है साला है सच्चे, हर सच्चे

जिन शब्द है सब अंधेरा, गुरमुख किस बुझाएगा। एक चित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजे पाए, ए वेला सिर हाथ न आवे, पद किस है पछताएगा। गुर के शब्द पवित्र शरीरा, किस विच वसै सच गुणी गहीरा, सचो सच वेखे सब थाई, सच सुन मन वसाएगा। हों मैं गणत गुर शब्द निवारे, हर जियो हृदय रखो उधारे, गुर के शब्द सदा साला है, मिल साचे सुख पाएगा। सोचे ते जिस आप चिताए, गुर के शब्द वसै मन आए, आपे वेखे आपे बूझे, आपे आप समाएगा। जिन मन विच वठ पाई सोई जाने, गुर के शब्दे आप पछाणे, आप पछाणे सोई जन निर्मल।

यह शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम फुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पादा गुर सेविया न जाए, मन मुख फूले मोए बिल्लाए, जिनको नजर होवे गुर केरी, हर जियो आप मिलाएगा, काया कोट पके हट नाले, गुरमुख ले वह वस समाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएगा,

वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले, नाम न चेते बद्दा जमकाले, दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पुलाएंदा, गुरमुख एक स्यों लिवलाए, त्रिविद मनसा मने समाए, साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएंदा, जो तुर राते से हुन राते, गुर प्रसादी सहजे माते, सतगुरु सेव सदा प्रभ पाया, आपे आप मिलाएंदा, माया मोह परम न पाए, दूजे पाए लगा दुख पाए, सूहा रंग दिन थोड़े होवे, किस जान दे बिलम न लाएंदा, इहो मन पै पाए रंगाए, इत रंग साचे माहे समाए, पूरे पाग को इहो रंग पाए, गुरमती रंग चढ़ाएंदा, मनमुख बहुत करे अभिमान।

अंदर आप लुकाया, गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभ सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरे ठाकुर ए बणत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला हे सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, शब्दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएंदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सकै तिसनो, गुर शब्दी मेलाया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, आन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए, गुर कै शब्दे आप गवाए, आन दिन सदा हर पगती राते, इस जग में लाहा पाया, तेरे गुण कहां मैं कहन न जाई, अंत न पारा, कीमत नहीं पाई, आपे दया करे सुखदाता, गुण में गुणी समाया, इस जग में मोह है पसारा, मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुरु पाए, हौ मैं मैल शब्द जलाए, मन निर्मल ज्ञान रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई, कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू आपे सहज समाया, नाम अमोलक अगम अपारा, ना को होआ तो लनहारा, आपे तोले तोल तोलाए, गुर शब्दी मेल तोलाया, सेवक सेवे करे अरदास, तू आपे मेल बहाले पास, सबना जिया का सुखदाता, पूरे कर्म ते आया, जत सत संजम जे सच कमावे, यो मन निर्मल जे हर गुण गावे, इस बिख में अमृत प्राप्त होवे।

मिलाया पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सो चितलाया हऊ मैं विच सब जले शरीरा कर्म होवे पेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जो नी परमा।

सुधारे गुर के शब्द मरे मन मारे हौ मैं जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई अंतर जोत शब्द सुख वस्या ज्योति जोत मिलाया पंच दूत चित में विकारा माया मोह का इहो पसारा सतगुर सेवे ता मुक्त होवे पंच दूत वस आया बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुबे वारो वारा सतगुर पेटे सच दृढ़ाए सच नाम मन पाया साचा दर साचा दरबारा सच्चे सेवे शब्द प्यारा सच्ची तुन सच्चे गुण गावा सच्चे माए समाया करे अंदर को कर पाए गुर के शब्दे सह सुवाए उथे सोग विजोग ना व्यापे।

दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत न होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई, सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया, काया बिरख पंखी विचवासा, अमृत चुगे गुर सब

जे सोवै गुरमुख नाम समाय समावै नानक नाम ते आई है भगता मुख अमृत है बाणी गुरमुख हर नाम आख वखाणी हर हर करत सदा मन बिगसे हर चरणी मन लाई है हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही सतगुरु ते समझ पड़ी मन माही हो दयाल कृपा कर हर जियो सतगुरु की सेवा लाई है जिन सतगुरु जाता।

सतगुर मन वसिया लिव लाई, आप मिलिया जग जीवन दाता। नानक अंक समाई है मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्वे रव रहा कटवासी, तिस बिन अवर न कोई।

ज्यों कमल रहे विच पानी है, विच हो मैं सेवा थाए न पाए, जन्म मरे फिर आवे जाए, सो तप पूरा साई सेवा, जो हर मेरे मन पानी है, हो क्या गुण तेरे आखा स्वामी, तू सर्व जिया का अंतरजामी, हो मांगो दान तुझे पह करते, हर अंदिन नाम वखानी है, किसी जोर अंकार बोलन का, किसी जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तर अवरना काई, तू करते राख मैं निवाणी है, निमाणे मान

हर हर नाम जिन्ही सदा ते आया, तिन्ही गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक।

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन मह बांधी, सो प्रभ राख है पाई हे, जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मैं थाप

जन्म मरण की जोन न पवया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई है, मीत हमारा सोई स्वामी। थानंतर अंतर जामी, सिमर सिमर पूरन परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तन ताहा, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक न देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मंड उदाहरण हारा, ऊच अथा अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जनत सहते आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा की ने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुन, साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है। जय जय काल जपो जगदीश है, बल बल जाई प्रभ अपने ईस है, तिस बिन दूजा अवर न दीस है, एका जगत सवाई है। सत सत सत प्रभ जा

पीतर जित उतरे पूख प्यासा है सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत्संगे तो तन फिर आनंद उलासा है तन अंधी फिर चपल सियाना।

तन कछु ना समझे चंचल काचे बहुर बहुर फिर ही संग मांगे ओ बात जाने कर हासाए आई आ गया फिरों बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया।

जम फासा है, मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मनमुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाए।

जाचें सिद्ध साधिक बनवासी, जाचें जति सती सुखवासी, इक दातार सगल है जाचक, दे दान सृष्टि जाहे, करहें पगत अर रंग अपारा, खिन मैं थाप उथापनहारा, पारो तोल बेअंत स्वामी।

सुरत शब्द रिद अंतर जागी अम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीवे अमर पया अविनाशी थी वे ना को आवे ना को जावे गुरदूर।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे, इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुर गोपाल गुर गोविंदा, गुर दयाल सदा बख्शिंदा, गुर सासत सिमरत खट कर्मा, गुर पवित्र स्थाना है, गुर सिमरत सब किल विखनास है, गुर सिमरत जम संग न फासे, गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमाना है, गुर का सेवक नरक न जा।

सतगुर पेट हर जस मुख पणी है, कल कलेश मिटाए सतगुर हर दरगे देवे माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को बिघन न पगति, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले न जो है माई, सत संतोख दिया गुरपुर है, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माए समाणी, आप सुनी तै आप वखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किछ करे सो आपन पाने, साधु तूर जाचे जन तेरे नानक।

है, दूजी अवर न जापस काई, सगल तुम्हारी तारणा, आप चितारे अपना किया, आपे आप प्रवथिया, आप उपाय रचुन पसारा, आपे कट कट सारणा, एक उपाय वड दरबारी, एक उदासी एक करबारी, एक पूखे एक त्रिपत अघाए, सब सह तेरा पारणा, आपे सत सत सत साचा, ओत पोत भगतन संगराचा, आपे गुप्त आपे है प्रगट, अपना आप पसारणा, सदा सदा सद होवन हारा, ऊंचा अगम अथा

मोह सोग सब परम मिटाए, एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसें बो देवा।

सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनो लाए ले सो सेवक जिस वड पाग मथाएना गुर की महिमा बेद न जाने तुच्छ मात सुन सुन वखाने पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना जां की सोए सुनी मन जीवे हृदय वसे ता ठंडा थीवे गुरमुखों अलाए ता सोबा पाए तिस जम के पंथ न पायना संतन की शरणाई पड़िया।

चरण तोय सुख पायेना, बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संतें संग राखो, इहो नाम दान दे।

सिद्धैत सब सिमरै अगनत ना जाई जस गना सिमरै पश पंखी सब पूता सिमरै वन पर्वत अवधूता लता बलि साख सब सिमरै रब रहया स्वामी सब मना सिमरै थूल सूखम सब जनता सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे सगल पवन।

प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेहरवाना। हर दाता जी जंत पे खारी, जन बांचे जा चंगना। मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो। दीर्घ रोग मिटे हर

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतिपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल थल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट भंडार नाही रत्न।

एको एक रविया सब ठाई तिस बिन दूजा कोई नाही आद मद अंत प्रभ रविया त्रिष्ण बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर कर्ता गुर सद बख्शंद गुर जप जाप जपत फल पाया।

आन मंगन ने किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हरबाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हों।

जाई अगम अगोचर बेअंत अतोला है ना ही किछ आहारा कीमत कोई न जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सुज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया।

आपे सूरा अमर चलाया, आपे शिव वरतायन अंतर, आपे शीतल ठार गड़ा, जिसे निवाजे गुरमुख साजे, नाम वसे तिस अनहद वाजे, तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसे न आवे जम नेड़ा, कीमत कागज कही न जाई, कहो नानक बेअंत गुसाई, आद मद अंत प्रभ सोई।

मोहन माधव कृष्ण मुरारे, जगदीशर हर जियो असर संगारे, जग जीवन अविनाशी ठाकुर, कट कट वासी है संगा, तरणी तर ईश नरसिंह नारायण,

खाओ अविनाशी अवगत अगोचर सब किछ तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ कूरम आ गया औतरासी केशव चलत करे निराले कीता लोड़े सो होएगा निराहारी निर्वैर समाया तार खेल चतुर पुज कहाया।

बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सत्संगा पीत पीतंबर त्रिभवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुखपणी सारंग तार भगवान बीठला मैं गणत ना आवे सरबंगा नेह कंटक नेह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल।

छपा में तुद लेप नहीं एक तिल रंगा एक जी गुण कमन बखाने सहस फनी शेख अंत न जाने नवतन नाम जप दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा ओट गही जगत पित सरनाया।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफतरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फान।

जिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा, जिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार जाए, तिस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, हों बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभु विसरे नाही, आठ पैर हर हर को त्याई।

नमस्कार सतगुर प्रसाद। चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी। तन मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना। सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड देश आज सवारे। सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना। जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही। साध संग पज अचुत स्वामी, दरगह शोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध। सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मेरे साधु स्वामी रावणा। सासत सिमरत वेद।

कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने मेरे साधु गोविंद त्यावना तेरी कीमत कहना जाई अचरज रूप वड्डी वड्याई।

पहला विण गाहक गुण वेचिए तो गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख।

गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा, हर का नाम मन वस्या गुरु शब्द विचारा, सच संजम मत ऊतमा हर लगा प्यारा, सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा। श्लोक महला तीजा, केदारा रागा विच जानिए पाई सब दे करे प्यार, सत्संगत च्यों मिल दो रहे सच्चे तरे प्यार, विच्चों मल कटे अपनी कुला का करे उधार, गुणा की रास संग रहे अब गुण कढ़े विडार, नानक मिलिया सो जानिए गुरु ना छोड़े अपना, दूजे ना तरे प्यार। महला चौथा, सागर देखो डर मरो पै तेरे डर ना है, गुर के शब्द संतोखिया नानक बिकसा नाए। महला चौथा, चढ़ बोए थे चाल सो सागर लहरी दे, थाक न सच्चे बोए थे जे गुर तीरक दे, तित दर जाए उतारिया गुर दिसे सावधान, नानक नदरी पाई है दरगे चले मान। पौड़ी, ने कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई, सच्चे तख्त बैठा न्याओ कर सत्संगत मेल मिलाई, सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यो बन आई, एथे सुखदाता मन वसे अंत होए सिखाई, हर स्यो प्रीत उपजी गुरसो जी पाई। श्लोक महला पहला, पूली पूली मैं फिरी पादर कह ना कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए, सतगुर साचा मन वसे साजन उत ही ठाए, नानक मन तृप्तासी है।

बेकार कमाए। नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी। माया वेख ना पुल तू मन मुख मूर्खा, चल दिया नाल ना चले सब झूठ दर्ब लखा। अज्ञानी अंध ना बूझे सिर ऊपर जम खड़ग कलखा, गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस चखा।

है जे चित लगे सच पौड़ी, हर का नाम अमोल है। क्यों कीमत की जय, आपे सृष्ट सब साजियन आपे वर्ती जय। गुरुमुख सदा सलाही है सच कीमत की जय, गुरु शब्दी कमल विकासिया।

है मनमाए समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए ते आना, जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्हें जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा कर कर पीखिया लेओ, दरगे लेखा मंगी है किस किस उत्तर देओ, पिखिया नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल, देखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकाल, नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल। मैला तीजा, जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोय, ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिस जेवड़ अवर ना कोय, तिस सरनाई छूटी है लेखा मंगे न कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए, नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वड्याई दे, सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी, सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे, अंधे आपना पछाणनी दूजे पच जावे, अत क्रोध स्यों लूज दे अगे पिछे दुख पावे, हर जियो अंकार ना पावे।

नानक जे इव मारिये गुरसबदी विचार इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी दोवे तरफा उपाय उन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा। होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्य पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा। आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजे सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगे सीजे। श्लोक महला पहला।

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी मनमुख काल व्यापदा मोय माया लागे।

जो हर लिव जागे सब तेरी तुद छड़ावनी सब तुदै लागे। श्लोक महला पहला। सर्वे जोय अगच्छमी दुख कनेरो आत कालर लादस सर लागणो।

नानक मेलन नाम पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नव निध नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसै है कै पादर हीड अत डाहपन दुख

सच्चे बन जा रहा जिन हर तन पल्ले हर कृपा ते हर पाए जा आप हर कल्ले श्लोक महला तीजा मन मुख वापार है सार ना जाननी।

मने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए, नानक एवे जानिए सब किछ तिसैर जाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामे तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही। बिन कर्मा किछु ना पाये जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम्मे मरे गुर सब छुटाही, आप करे किस आखिए दूजा को नाही। श्लोक मैला तीजा, इस जग में संति तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए, सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए, इत तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए, जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए, मन मुख जगत निर तन है माया नो बिलाए, अंदिन फिर दा सदा रहे पुख न कदे जाए, सांत ना कदे आवई ने सुख वसे मन आए, सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए, नानक विण सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए, सदा सदा सुख में रहे सच्चे माए समाए। मैला तीजा, जिन उपाय मेदनी सोई सार करे, एको सिमरो पाए रहो तिस बिन अवरना कोए, खाना शब्द चंगियाया जित खादे सदा तृप्त होए, पैनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला मैला कदे न होए, सहजे सच तन खटिया थोड़ा कदे न होए, देही नो शब्द सिगार है जित सदा सदा सुख होए, नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखा ले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापे, हर हर नाम ते आई है हो मैं अज्ञान गवापे, अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे, जिन चाखिया से निरपो पे से हर रस त्रापे, हर कृपा तार पियाया फिर काल न व्यापे। श्लोक मैला तीजा, लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, गुण न विहाजे कोए, गुण का गाहक नानका विरला कोई होए, गुर प्रसादी गुण पायन जिसनो नदर करे। महला तीजा, गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार, नानक हुकम मन्ने सुख पाये गुर सब जी विचार। पौड़ी अंदर राजा तक

सब कोए पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर सच नाम आधार सोग ना मोए जर नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाणे जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं तै की नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पतरी वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल आहे।

अंदर सुख ना होवई मन मुख जन्म खुआर। नानक नाम रते से उबरे गुर कै हेत अपार पौड़ी। आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म न बूझे खसम का सोई नर कच्चा। जित पावे तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा, सबना का साहिब एक है गुर सबदी रचा। गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जचा, जो नानक आप नचाएंदा तिभी को नचा सुध।

देख कपड़ भोग डरावने जिचर फिरी न देख महला पंजवा उठी जालू कंतड़े हो पसी तो दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो था।

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैंडा हबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग। पौड़ी। तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन, तुद सिरजा सब संसार तू नायक सगल पौन। तेरी कुदरत कोई न जाने मेरे ठाकुर सगल रौन, तुद अपड़ कोई न सके तू अब नासी जग उधरण।

होर तू पाए न लभई अब नासे श्रेष्ठ करण दखणे महला पंजवा। जे तू वत्सै अंगने हब तरत सुहावी होए हिकस कंत बाहरी मैंडी बात न पुछे को।

आपे सतवंता, जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। जिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देव गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किच वस ना जनता। दखने महला पंजवा कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा सच जान कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यों जुम।

जिस मेलै सतगुर आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डड़ा त्रिन छाया।

इन माया मोहनी मोइया नित फिरे परमाइया हाठा दो मैं की त्यों शिव सकत वरताइया शिव अगे शक्ति हारया एव हर पाइया एक विचों ही तुझ रखिया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माए समाइया दखने

कौड़ी। जिस जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौकुंडी जापै। जो नर उसकी सरणी पर तिस कंबै पापै, जन्म जन्म की मल उतरै गुर धूड़ी नापै। जिन हर बाणा मन

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन अपना। जित डाढ़ी तृप्तावे अरदास सुनी दातार प्रभ डाढ़ी को महल बुलावे। प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाढ़ी।

मन तन अत गुलाल, नानक बिन लावै आलू दिया जिते होर ख्याल पवड़ी। हर जियो जा तू मेरा मित्र है, ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा। गुर भौजन पार लंघाया जिता पावाड़ा, गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा। सब इंद्रियां वस कर दित्ती ओ सतवंता साड़ा, जित लाइयन तित लगदिया नै खिंजो ताड़ा। जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा।

पौड़ी। बिन कर्मा हर जियो न पाईए, बिन सतगुर मनवा न लगे। धर्म तीरा कर अंधरे, यो पापी मूल न तगे। अह कर करे सो अह कर पाए, एक घड़ी मोत ना।

लाए हब मरण पछाणन दो कोए नानक तिन्ना खाक जिना यकीना हित स्यों। महला पंजवा जान वसंदो मंज पछाणु को हे कुड़ो तैतन पड़दा नाहे नानक जय गुरु भेटया। महला पंजवा।

नानक से अखड़िया बयान जिनी दिसन दो मापिरी पौड़ी जिन जन गुरमुख सेवया तिन सब सुख पाई ओ आप तरिया कुटुंब स्यों सब जगत तराई उन हर नामा धन संचया सब तिखा बुझाई उन छड़े लालच दुनी के अंतर निवलाई ओस सदा सदा घर आनंद है हर सखा सहाई उन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुभाई होआ ओही अल जग में गुरु ज्ञान जपाई पूरब लिखिया पाया हर स्यों बनियाई दखनी महला पंजवा सच सुहावा काढ़िया कूड़ा कूड़ी सोए नानक विरले जानिया जिन सच पल्ले होए महला पंजवा सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सा सुतड़ी सो सौ डिठ तै सुपने हो खनिया महला पंजवा सज्जन सच परख मुख अलावन थोतरा

मस्त सब लोक सिदासी, काजी शेख मसाय का सब दे उठ जासी। पीर पैगंबर औलिए को थिर न रहा से, रोजा बाग निवाज कते विभिन्न बुझे सब जासी। लख चौरासी मेजनी सब आवे जासी, नेचल सच खुदाए एक खुदाए बंदा।

सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दखने महला पंजवा नानक कचड़िया सो तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया न जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजली।

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी जानिया कौन तुदनो तोलै बन्नन गरन समरथ है ओपत सब परलै करण कारण समरथ है घट घट सब बोलै रिजक समाहे सब सै।

राम उदक दे जन पिया तुम बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते पया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म पया उदास। राम नाम रस चा

सुनने सुन मिलया समदर्शी पवन रूप हो जावेंगे। बहर हम काहे आवेंगे आवन जाना हुक्म तिसै का हुक्म बुझ समावेंगे। रहाओ जब चूके पंच धात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे। दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ध्यावेंगे। जित हम लाए तित ही लागे तैसे कर्म कमावेंगे। हर जी कृपा करे जो अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे। जीवत मरो मरो पुन जीवो पुनरप जन्म न होई। कहो कबीर जो नाम समाने सुन।

जीड़े ममता जालिया पिंड वना हम बै चिंता जाल तन जालिया बैरा जीड़े जे मन मृतक होए वना हम बै सतगुर बिन बैराग न हो।

चार मुकत चार सिद्ध मिलकै दूलै प्रभु की शरण पर्यो। मुकत भयो चौहो जुग जान्यो, जस कीरत माथे छत्र धर्यो। राजा राम जपत को न करयो, गुरु उपदेश साध की संगत। भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ। शंख चक्र माला तिलक विराजत, देख प्रताप जम डर्यो। निर्भव भय राम बल गर्जत, जन्म मरण संताप हिर्यो। अम्बरीक को दियो अभय पद, राज भविकन अधिक करयो। नवनिध ठाकुर दई सुदामै, धुरु अटल अज हूं न टर्यो। भगत हेत मार्यो हर नाखस, नरसिंह रूप होय देत हर्यो। नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरियो पसुआ जो सोयो, मनुख जन्म है हारियो राव। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिवें, भटकत चाल्यो।

चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध नव निध कर तलता कै हर हर हर न जपस रसना खबर सब छाड़ बचन रचना रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरना है। सहज समाज उपाध रहत हो बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म।

कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बानिया साधन सब रस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभानी सासो हागन नारे। नव घर थाप मैल घर ऊंचो निज घर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम निस्बास रंग रावे। नाने प्रियो प्रियो चवे बबीहा को कल सबद सुहावे। तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम आपने मन तन रवत रवन्ने। घड़ी ना बिसरे क्यों घड़ी बिसारी हो बलहारी हो जीवा गुण गाए। ना कोई मेरा हो किसके रा हर बिन रहन न जाए। ओट गई हर चरण निवासे भय पवित्र शरीरा। नानक दृष्ट दीरग सुपावे गुर सब दी मन तीरा। बरसे अमृत धार बूंद सुहावनी साजन मिले सहज सुपाए। हर स्यों प्रीत बनी हर मंदिर आवे जा प्रभु पावे। धन उबी गुण सारी घर घर कंत रवे सुहागण हो क्यों कंत विसारी। उन्नव घन छाए बरस सुभाए मंतन प्रेम सुखावे। नानक बरसे अमृत बानी कर कृपा घर आवे। केत

नानक जेठ जाने तिस जैसे कर्म मिले गुण गहली। आषाढ़ भला सूरज गगन तपे, धरती दुख सह सोख अगन पक्ष।

सावन सर्स मना घन वर्ष ऋतु आए, मैं मन तन सौ पावे फिर परदेश सिधाए, फिर धरनी आवे मरिए हावे दामन चमक डराए, सेज इकेली खरी दुहेली मरण पया दुखमाए, हर दिन नींद भूख को कैसी कापड़ तन न सुखावे, नानक सा सोहागन चंती फिर कै अंक समावे, बादों परम भूली पर जो बन पछतानी, जल थल नीर भरे बरस रुते रंग मानी, बरसे निज काली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते, प्रिय प्रिय चवे बबीहा बोले भुयंगम फिर डसंते, मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है, मानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रभ तै ही जाइए, असुन आओ फिरा साधन झूर मुई, सामिली है प्रभु मिले दूजे पाए हुई, झूठ विभूति तापिर मोती को कह कहां से फुले, आगे काम पिछे रुत जाडा देश चलत मन डोले, दै दिस साख हरी हरियावल सहज पचे सो मीठा, नानक सुन मिलो प्यारे सतगुर पे बसीठा, कतन किरत पया जो प्रभु पाया, दीपक सहज बल तत जलाया, दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो, धन ओ मा है सरसी, अवगुण मारी मरे न सीजै गुण मारी तामरसी, नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा, नानक मिलो कबड़ दर खोलो एक घड़ी खतमासा, मंगल माओ भला हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवे मैं फिर नेचल पावे, नेचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सबाया, ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने सब पाने का पाया, गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे, नानक साधन ना प्यारी अब भक्ति तिर आगे, भूख तुखार पड़े वर्ण तृण रस सुख है, आवत की नाही मंतन वसे मुखे, मंतन रव रहा जग जीवन गुर सब धी रंग मानी, अंडल जीरज सेतज उत्भुज गट गट जोत समानी, दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो, नानक रंग रवै रस रसिया हर्षो प्रीत स्नेहो, माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया, प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके सुर पावा सरनावा, गंग जमुन तै बेनी संगम सात समुन्द समावा, पुण्य दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता, नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता, फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया, अनदिन रस भया आप गवाया, मन मोह चुकाया जा तिस पाया, कर कृपा घर आओ बहुते वेच करे फिर बाजो, मैली दान खाओ हार डोर रस पाट पटंबर तिर लोड़ी सिंगारी, नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी, बेदस मारुति छिट्टी वार भले घड़ी मुरत पर

राखो खेती हर बुरहे की, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। राम सास दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख

सच संभालिया एनिस देख बिचारिया, दावत पंच रहे घर जानिया, काम क्रोध बिख मारिया। अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करमा, नानक हो मैं मार पति ने तारा चढ़िया लम्मा। गुरमुख जाग रहे चूकी अवमानी राम, अनगिन पोर पया साच समानी राम। साच समानी गुरमुख मन पानी, गुरमुख साबत जागे, साच नाम अमृत गुरु जिया, हर चरणी लिव लागे। प्रगटी जोत जोत मैं जाता, मन मुख परम भुलानी। नानक पोर पया मन मान्या, जागत रहन विहानी। अवगुण विसरिया गुणी घर किया राम, एको रव रया अवर न दिया राम। रव रया सोई अवर न कोई, मन ही ते मन मान्या। जिन जल था त्रिभुवन घट घट थापया, सो कब गुरमुख जानिया। करण कारण समरथ अपारा, त्रिपद मेट समाई। नानक अवगुण गुण समाने, ऐसी गुरमत पाई। आवन जान रहे चूका भोला राम, हो मैं मार मिले साचा चोला राम। हो मैं गुर खोई प्रगट होई, चूके सोग संतापे। ज्योति अंदर ज्योत समानी, आप पछाता आपे। तेई अड़ै घर सबद पतिनी, सावरड़ै तिर पानी। नानक सतगुर मेल मिलाई, चूकी कान लोकानी। सुखारी महला पहला, भोला बड़ा भुली भुल भुल कछो तानी। फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जानी, फिर छोड़ी सुती अवगन मुती। किस दन विदन राते, काम क्रोध अहंकार विगुती। हो मैं लगी ताते, उडर हंस चलिया फुरमाया, बस मैं बस

जमनाती कल घूंघट कैसा मटकी फोड़ निरारी, नानक आपै आप पछाणै गुरमुख तत विचारी। तुखारी महला पहला। मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले, गुर अलख लखाया अवर न दूजा पाले। गुर अलख लखाया जा तिन पाया जा प्रभ कृपा तारी, जग जीवन दाता पुरुष विदाता सहज मिले बनवारी। नगर करे तू तारे तरिये सच देवो दीन दयाला, प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला। भरपुर तार रहे अत्यारे।

चढ़ सवाया अपरम्पर आपे था पोथा पे किस भाव सो हो वै नानक मीरा ही रह बेदया गुण कह हार परो वै गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया चूका आवन जानो सच साच पछाता साच है राता साच मिले मन पावे साचे ऊपर अवर न दिसे साचे साच समावे मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे सच दर खोज ले साचा गुरथानो मनमुख न पाई है गुरमुख ज्ञानो देव सजदानो सो परवानो सजदाता वडदाना अमर अजूनी अस्थिर जाप साचा महल सिराना दो तू चापक लेख न लिखिए प्रगति ज्योत मुरारी नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी सुखारी महला पहला ए मन मेरे आ तू समझ अतीत आने आराम ए मन मेरे आ छड़ अवगुण गुणी समान आराम बहु साध लुबाने किरत कमाने विछड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर करिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला मन राम नहीं जाता साज प्रभाता अवगत।

हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम, क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है, तिस दिन रह न जाए हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती, फिर दिन प्यास न जाए अपनी कृपा करो हर प्यारे, हर हर नाम सब सारिया गुर के शब्द मिलिया मैं प्रीतम, हर सतगुर वित्तो वारिया जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रयो प्रयो सत्य नित चवा राम, प्रयो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे, शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम प्यावे। दया दान मंगत जन दीजे मैं प्रीतम देहो मिलाए, अन दिन गुरु गोपाल त्याई हम सतगुरु विट्टो कुमाए, हम पात्र गुरु नाव बिख पव जल तारिय राम, गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारिय राम, हम मूड मुगद किछ मिट नहीं पाई तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए, दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए, गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम, काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों साथ गिरास विसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारी है, सतगुर आगे शीश टेक दियो जे सतगुर साचे भावे, आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे, सुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा, जो तुम त्याए जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ तिन तरिया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी हर कृपा कर तरणी तरा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा, तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा, तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया, तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित कवे, जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया, तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा, सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित इक अरा दिया, तिनका जन्म सफल हो सब किया करते जिन गुरबचनी सच पाखिया, ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे, सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला, हमरे हाथ किचना है जा तू मेले ता हो आए मिला, जिनको तू हर मेले स्वामी सब तिन का लेखा छुटक गया, तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया, नानक दयाल होआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला, तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला, सुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ, जिनको तुर हर लिखिया स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या, तिनके पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु बचनी हर जापिया,
तन तन तेज जन जिन हर नाम जपिया तिन देखे हो पया सनाथ तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ तू जल थल मई अल भरपूर सब ऊपर साच धनी जिन जपिया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी जिन जपिया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार ओए हलत पलत जन पे सुहेले हर राख लिए रखन हार हर संत संगत जन सुनो पाई गुरमुख हर सेवा सफल बनी तू जल सल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी तू थान सनम तर हर एको एक रव्या वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चवया तू थान सनंतर हर एको एक रव्या तेरी भगत पंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके हर गुण हृदय टिके तिसके जिस अंतर पाव पावनी होई बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे तेरी भगत पंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले तुखारी महला चौथा नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श पया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन में बिनसे हर पाया प्रभ अविनाशी हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किलविख नाश गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ठ टोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए ले सब छुटक गया द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुर पिछे पई जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर।

गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही, सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता, सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया, देही नगर कोट पंच चोर बटवारे, तिनका छाओ थो गवाया, कीर्तन पुराण नित पुन होवे, गुर बचन नानक हर भगत लही, मिल आए नगर महाजना, गुर सतगुर ओट गही, सुखारी संत मैला पंजवा इको अंकार। सतगुर प्रसाद कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना, एहो मन पीना ज्यो जल मीना, लागा रंग मुरारा कीमत कही न जाई ठाकुर, तेरा महल अपारा सगल गुणा के दाते स्वामी, बिनो सुनो एक दीना, देहो दर्श नानक बलिहारी जीड़ा बल बल कीना, एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे, खनिए वंजा दर्शन तेरे, दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे, निमक दृष्ट पेख जीवा, अमृत नाम सुनी जय तेरा, कृपा करे ता पीवा, आस प्यासी पिरके ताई, ज्यो चात्रिक बूंदे रे, कहो नानक जीड़ा बलिहारी, देहो दर्श प्रभ मेरे, तू साचा साहिब साओ अमिता, तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता, प्राण सुख दाता गुरमुख जाता, सगल रंग बन आए सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फुरमाए जाको कृपा करी जगदीसर, तिन साध संग मन जिता, कहो नानक जीड़ा बलिहारी, जियो पिंड तौ दिता, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु टाक लिया मोह पापी पर्दा, ठाक नहारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते, अविनाशी अवगत स्वामी पूरन पुरख विदाते, पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का, नानक दास ता कह बलिहारी, मिले नाम हर निंका।

मेरे मन राम नाम नित गाविए रे। अगम अगोचर न जाई हर लख्या गुरपूरा मिले लखाविए रे। रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिवलाविए रे। सबको भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पाविए रे। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम त्याविए रे। जिसनो नाम दे मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छडाविए रे। हर नाम अरादे से तन जन कई है, तिन मस्तक भाग सुर लिख पाविए रे। तिन देखे मेरा मन बिकसे, ज्यों सुत मिल मात गल लाविए रे। हम बारक हर पिता प्रभ मेरे, मौको देहो मती जित हर पाविए रे। ज्यों बछरा देख गऊ सुख माने, त्यों नानक हर गल लाविए रे। किदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद मेरे मन हर हर गुण कहो रे। सतगुरु के चरण तोय तोय पूजो, इन विद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखे रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत कीजे हर गोष्ठ साधु स्यों गोष्ठ। हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमो रे। अंतर का अभिमान जोर तू किछ किछ किछ जानता, इहो दूर करो आपन गौरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की कूर कर हरे। किदारा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद माई संत संग जागी, प्रे रंग देखे जपती नाम निधानी। रहाओ दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिस्तरी त्यास बिडानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी। देख समोदर रहस मन उपजो, नानक प्रिय अमृत बानी। किदारा महला पंजवा कर कीजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ। राख हो कृपाल रहाओ, अनिक जतन गवन करो। खट कर्म जुगत ध्यान करो, उपाव सगल कर हारियो। नह नह हुते बिकराल, शरण बंदन करुणा पते। पाव हरण हर हर हर हरे, एक तू ही दीन दयाल। प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे प्रम मोह सागर। लग संतना पग पाल, किदारा महला पंजवा कर चौथा इको अंकार। सतगुर प्रसाद सरनी आयो नाथ निधान, नाम प्रीत लागी मन प्रीतर। मांगन कौ हर दान रहाओ, सुखदाई पूरन परमेश्वर। कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी। हर गुण रसन बखान, गोपाल दयाल गोविंद दमोदर। निर्मल कथा ज्ञान, नानक को हर कै रंग रागो। चरण कमल संग त्यान, किदारा महला पंजवा। हर के दर्शन को मन चाहो, कर कृपा सत्संग मिलावो। तुम देवो अपनो नाओ रहाओ, करो सेवा सतपुरुष प्यारे। जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई। कवन अनूप ते रोठाओ, सर्व प्रतपाले सगल संभाले। सगलिया तेरी छाओ, नानक के प्रभ पुरख विधाते। कट कट तुझे दिखाओ, किदारा महला पंजवा।

फूले कपट तपट बुध तृष्णा जीवों पेख दर सारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संतें संग उधारी किदारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपाओ रहाओ काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो तंपो मोह कटियो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेण होए मन मेरा अहं बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वडपागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात।

महामद मोहत काम क्रोध के खात कर गए लिहो दास नानक को प्रभ जियो होए साथ केदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपक बिखिया रस ओगवत नह निभत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात सरन समरथ अटत अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बाचत मिले लिखत तुरमात किदारा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब एह प्रीत मां परबल सही आन बिखै जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना टेव एह परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी किदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते ले मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं दिखे बन में होर हर सकत सरन समरथ नानक हान नहीं निहोर किदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल उचार दिन रैन पे कलमलहान रहाओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल मूरत हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान किदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ व्यापे संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रो आप राख्यो न उपजतो बेकार जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार किदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत जीवन रूप विसार जीवे ते कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुखमली गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली राव गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली गह पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे कोट सांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे रेन जन की लगी मस्तक अनक तीरथ सुचे चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजे शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं।

विदाता, मार्ग प्रभु का हर किया संतन संग जाता, संतन संग जाता पुरुष विदाता, कट कट नजर निहालिया, जो सरनी आवे सर्व सुख पावे, तिल नहीं पन्ने कालिया, हर गुण निद गाए सहज सुभाए, प्रेम महारस माता, नानक दास तेरी शरणाई, तू पूरन पुरुष विदाता, हर प्रेम भगत जन बेदिया, से आन कत जाही, मीन बिछोहा ना सहे, जल बिन मर पाही, हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है, चात्रिक बूंद प्यासिया, कब रैन बिहावे चकवी सुख पावे, सूरज किरण परगासिया, हर दर्श मन लागा दिन सवागा, अन दिन हर गुण गाही, नानक दास कहे बेनंती, कत हर बिन प्राण टिकाही, सास बिना ज्यों देहुरी कत तोबा पावे, दर्श बिहूना साध जन खिन टिकना आवे, हर बिन जो रहना नरक सो कहना, चरण कमल मन बेदिया, हर रसक बैरागी नाम लिव लागी, कतो न जाए निखेदिया, हर क्यों जाए मिलना साध संग रहना, सो सुख अंक ना मावे, हो कृपाल नानक के स्वामी, हर चरण संग समावे, खोजत खोजत प्रभ मिले, हर करुणा तारे, निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख विचारे, नहीं दोख विचारे पूरन सुख सारे, पावन बिरद बखानिया, भगत वचल सुन अंचलो गया, कट कट पूर समानिया, सुख सागरो पाया सहज सुभाया, जन्म मरण दुख हारे, कर गए लीने नानक दास अपने, राम नाम उरहारे।

दौ विवर्जत तजो मान अभिमाना। लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कही है ते तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन्ही परम पद पाया। तीर्थ व्रत नेम सुच संजम सदा रहने कामा। कृष्णा अर माया परम चूका चितवत आत्म रामा। जे मंदर दीपक परगासिया।

बन गया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी राव। साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी, साची बस के पार चलाए पहुँचे जाए पंडारी। आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी, आपे देह दिस आप चलावे नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गोन पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संतो निधि खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फिरावो, मन मतवार मेर सर पाठी अमृत तार चो।

आई। जेते कट अमृत सभी मैं पावे तिसे पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे तावत बर्ज रहाई। त्रिपुटी छूटे दसवा दर फूले तामन खीवा पाई। अबे पद पूर ताप तहना से कह कबीर बिचारी। उबट चलनते ए मद पाया जैसे खोंद फुमारी। काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं एक कह जानी। फूटी आँखें

राम न जपो कवन प्रम पूले, तुम ते काल न दूरे, अनक जतन कर एहो तन राखो, रह अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे, क्या को करे परानी, जा तिस पावे सतगुरु पेटे, एको नाम बखानी, बलुआ के करुआ में बसे।

राव लालच झूठ विकार महामद ए बिद औद बिहान कह कबीर अंत की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग न कछ ले जाए। राव देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटुंब मिल हंस इकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारस जाए। राग किदारा बाणी रविदास जीओ की इको अंकार सतगुर प्रसाद। खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बालनी कह देख किस जात ते के पदे अमरियो राम भगत विशेख रहाओ। स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुबत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना करें रविदास।

विडानी करे कराए जाने आप नानक देखै थाप उथाप इको अंकार सतगुर प्रसाद राग पैरो महला पहला कर दूजा गुर कै शब्द तरे मुन केते इंद्रादिक ब्रह्माद तरे सनक सनंदन तपसी जन केते गुर प्रसादी पार परे पव जल बिन शब्द क्यों तरिए नाम बिना जग रोग व्यापिया दुबदा डुब डुब मरिए रहाओ गुरु देवा गुर अलख वे

मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस बियोगी मन समझे गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर पुरलीना सात शब्द निस्तारा खैरो महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो सात शब्द बिन कब होना छूटत बिरसा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना इन विद तर तू तारी बैरे करन अकल भई होछी शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिवलागी पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे सुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुरु मेल मिलाए जब लग शब्द भेद नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कबू न जानस एक को दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची मन अंधे सिर तंदा काल विकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंधुले शब्द सुरत नहीं पाई शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंधलो तंद कमाई खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहूने शब्द विचार राम रस चाख्या नानक साच पतीने पैरों महला पहला गुर के संग रह दिन राती राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन पावे आप मार अपरंपर राता गुर की कार कमावे रहाओ अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरख आदेशो कट कट अंतर सर्व निरंतर रव रहा सच वेशो सात रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई निर्मल नाम अमृत रस चाख्या शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरमुख नाम वडाई सगले दुख मिटे गुर सेवा नानक नाम सखाई पैरों महला पहला हृदय नाम सर्व तन तारण गुर प्रसादी पाईए अमर पदार्थ ते किरतार्थ सहज ध्यान लिवलाईए मन रे राम भगत चितलाईए गुरमुख राम नाम जप हृदय सहज खेती कर जाइए रहाओ परम पेद पाओ कभू न छूटत आवत जात न जानी बिन हर नाम को मुक्त न पावस डूब मुए बिन पानी तंदा करत सगली पत खोवस परम न मिटत गवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंद पसारा अकुल निरंजन स्यों मन मानिया मन ही ते मन मुआ अंतर बाहर एक को जानिया नानक अवर न दुआ पैरों महला पहला जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त न पावत मुक्त नाम गुरमुख लह राम नाम बिन बिसे जग जन्मा
बिक खावे बिक बोली बोले बिन नावे नेफल मर प्रवना राव पुस्तक पाठ व्याकरण वखाने संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल शिखा सूत तोती तीरथ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत न आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पखम लगाई बस्तर छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत के बांधे पेख पया जेते जी जंत जल थल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

कम दिन देखो ब्राह्मण होए, जात का गर्व न कर मूर्ख गावारा। इस गर्व से चले बहुत विकार आ रहा, चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, माटी एक सगल संसारा।

सो जागे जिस सतगुर मिले, पंच दूत ओह वसगत करे, सो जागे जो तत विचारे, आप मरे अवरा नहीं मारे, सो जागे जो एको जाने।

कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा बूझो परम ना फूलो कोए।

कसाई मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई पंत नानक करे क्या कोए जिसनो आप मिला वै सोए पैरों महला तीजा सो मुन जे मन की दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म विचारे इस मन को कोई खोजो भाई मन खोजत नाम नौनिद पा।

चार हुक्म बुझ समाना। कर्म होवे गुर कृपा करे, यह मन जागे इस मन की दुविधा मरे। मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में वसे अतीत अनुरागी। कहत नानक जो जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ। पैरों महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा। पव जल पार उतारन हारा, गुर प्रसादी हर नाम समाल। सद ही निभ है तेरे नाल, रहाओ नाम।

जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया, नानक ने चल साचा एको, ना ओ मरे न जाया। पैरों में लाती जा, मन मुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझे रोग गवावे, गुर सबदी विचारा। हर जियो सत्संगत में लाए, नानक तिसनो देव दयाई। जो राम नाम चितलाए रहाओ, ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा, गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवे। जिन हर राख्या उधारा, जिन हर का नाम ना गुरमुख जाता।

0: लाए, जो इच्छे सोई फल पावे, गुरबाणी सुख पाए।
1: पैरों मैला तीजा, दुख विच जम्मे दुख मरे, दुख विच कार कमाए, गर्भ जो नी विच कदे ना निकले, बिस्ता माए समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया, पूरे गुर की सेवना कीनी, हर का नाम न पाया राव। गुर का शब्द सब रोग गवाए, जिसनो हर जियो लाए, नामे नाम मिले वडियाई, जिसनो मन वसाए। सतगुर पोते ता फल पाए, सच करनी सुख सार, से जन निर्मल जो हर लागे, हर नामे तरह प्यार। इनकी रेण मिले ता मस्तक लाई, जिन सतगुर पूरा त्याया, नानक तिनकी रेण पूरे पाग पाई है, जिनी राम नाम चितलाया। पैरों महला तीजा, शब्द विचारे सोजन साचा, जिनके हृदय साचा सोई, साची भगत करे दिन राती, तां तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई, दिन सतगुर सेवे भगत न पाये, पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव। मन मुख मूल गवावे।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते। हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत पी तृप्ता से रहाओ। आपके पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

का दाता। अवगुण शब्द जलाए जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम वसाए कर दर मेल सतगुरु दिखाया, रंग सोरलिया माने जो कुछ कहे सो पला कर माने।

गुरु प्रसाद परम पद पाया, सब इच पुजावन हार राव, सब मैं एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ अंग दिन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक है, होर थे सुख न पाए, सतगुरु जिनी न सेवया दाता, से अंत गए पछताए, सतगुरु सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होए, ज्योति जोत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुरु की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्द पवजल करना रहाओ, देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा भूख अत बहुती, पौकत फिरे दरबार, गुर के शब्द मरे फिर जीवे, तिनको मुक्त द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राख्या उदार, जो तिस भावे तिवे चलावे, करना किसु न जाई, नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वड्याई, पैरों महला तीजा, हो मैं माया मोह खुआया, दुख खट्टे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारे, बिन विवेक परमाए, मन मुख त्रिग जीवन सहसार, राम नाम

मार्ग पाए। आपके गुरु मुख देव दे आए, नानक नाम समाए पैरों महला तीजा। मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाके जम जाला। सतगुरु करे मेरी प्रतपाला, हर सुखदाता मेरे नाला। गुरु उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासना के बालक गम न करे। रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो ले उबारे। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम न छोड़ा गुरु दिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकरे बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया। हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार। किन मैं पयान रूप लिख्या थम उपार, हरनाथ से नखी विदारिया प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कार सवारे, प्रहलाद जन के इच्छी कुले उदारे। गुर के शब्द हो मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे। पैरों महला तीजा, आपे दैंत लाए दिते संत जना को। आपे राखा सोई जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख न होई। जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री। तर्पण किछु न जाने शब्द मेल मिलाया रहाओ। अन दिन पगत करे दिन राती, दुबदा सब देखोई। सदा निर्मल है जो सच राते, सच वस्या मन सोई। मूरख दुबदा पने मूर

कृपा मेलो सत्संगत टूट गई माया जमजाली रहाओ। गुरुमुख सेवा काल जिन काली तिस तरिय सब सची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली विच काया नगर लद्दा हर पाली। हम बारिक हर पिता तत्पाली जन नानक तारो नगर निहाली। पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सबना माहे तुझते बाहर कोई ना है। हर सुखदाता मेरे मन जाप।

जिसको तुम हर राखिया भावे, किसके नेड़े कोई न जावे, तू जल थल मैयल सब ते भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा।

हर बाहर जो कुछ करे सोई पल होसी, हर क्या वो अंग दिन नाम मुरार, हर जो कुछ करे सो आते आते वो पूछ ना किसे करे विचार, नानक सो प्रभु सदा त्याय है जिन मेलिया सतगुरु कृपा कार, पैरों महला चौथा ए साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत हुए हमारी, तिनका दर्श देख मन बिगसे, किन किन किन कहो हो बलिहारी, हर हृदय जप नाम मुरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनिहारी रहो, तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम, जिन हृदय वस्या बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत हुए हमारी, जिन ऐसा सतगुरु साधना पाया, ते हर दरगे का डे मारी, ते नर निंदक सोग न पावे, तिन नक काटे सुरजन हारी, हर आप बुलावे आप बोले हर आप

जाग अचिंता जा कहां प्रभु कुंवर संता कर सुख वसिया बार सुख पाया कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया पैरों महला पंजवा वर्त ना रहो ना

जेसो लोच लोच खावाया साकत हर हर चीतना आया संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ पात्र को बो नीर पवाया मैं पी गए अदक सुकाया खट शास्त्र मूर्खे सुनाया जैसे दैदिस पवन चुलाया दिन कण खलहान जैसे दान पाया क्यों साकत ते को

तन मैं पारणा तन तन मेरे नारायणा, नानक बोले अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जानी। पैरों महला पंजवा आगे दे पाछे नारायण, मद भाग हर प्रेम रसायन। प्रभु हमारे शास्त्र सौन, सुख सहज आनंद गृह पौन। रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे, प्रभु सिमर सिमर अमृत पीवे। जन्म जन्म के दुख निवारे, अनहद शब्द बजे दरबारे। कर कृपा प्रभु लिए मिलाए, नानक प्रभु शरणागत आए। पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आ

आओ पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पै ने काम राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार नानक दास एहो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार पैरों महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल हर जन राखे पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ अपना

ठाकुर छोड़ दासी को सिमरें मन मुख अंध अज्ञाना हर की पगत करे तिन निंदे निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन तन सब प्रभु का साकत कहते मेरा अहं बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पल जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप कहे शरणाई गुरुमुख नानक जगत कराया पैरो महला पंजवा बन में पेख्यो तृण में पेख्यो गृह पेख्यो उदासाए दंड तार जट तार पेख्यो वर्त नेम तीर्थाए संत संग पेख्यो मन माए पूब प्याल सर्व में पूरन रस मंगल गुण गाए रहाओ जोग पेख

पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिक संचय नित डरता फिरे है निकट अर तेज न पाया बिन सतगुरु सब मोहि माया नेड़े नेड़े सबको कहे गुरमुख तेज बिरला कोल है रहाओ निकट न देखे पर गृह जाए गर्भ हिरे मिथ्या कर खाए पई ठगोरी हर संग न जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया।

जिस तू राख कुछ कौन मार है, सब तुझ ही अंतर सकल संसार है। कोट उपाव चितवत है प्राणी, सोहो वै जे करे चोज विदानी। राखो राखो कृपा तार, तेरी शरण तेरे दरबार राव। जिनसे व्या निरपो सुख दाता।

जन नानक अपर न साचे कोय पैरों मैला पंजवा। तौ करिए जे होवे बाहर तौ करिए जे विसरे नर हर तौ करिए जे दूजा पाए क्या करिए जा रहा समाए। माया मोह करे कड़पतिया बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ।

तौ करिए जे किछ होए सिंघाणे, तौ करिए जे फूल रंजाणे, गुर कहया जो होए सब प्रभु ते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभु तू है ठाकुर सबको तेरा, जो पावे त्यों करे निवेरा, दुतिया नासत इक रहा समाए, राखो पैज नानक शरणाए, पहरों मेला पंजवा, बिन बाजे कह

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मेला पंजवा, हूँ मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गए।

रोग बंद रहन रति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटहे न जावे। पार ब्रह्म जिसकी दया, वहाँ पकड़ रोगों कद लया। टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया। पैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पांजे। चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी।

मन मानिया नानक भगवंता पैरो महला पंजवा बाप हमारा सद चरण जीवी भाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा अविनाशी कुटुंब हमारा निज करवासी हम सुख पाया ता सबै सुहेले।

नानक उदरे नाम पुने चार, हवर कर्म लोके पतियार, पैरो महला पंजवा, नमस्कार ता को लख बार, गुरु मन दी जय ता को वार, सिमरन ता कै मिटे संताप, होय आनंद न व्याप।

जा को सतगुरु जी ओ नाम, जा को पेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रभु पाए, ताकी रेन बिरला को पाए। हैरो महला पंजवा, चितवत पाप ना आलक आवे, बेसुआ भजत किसने शरमावे। सारो दिन मजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर पर। माया लग पूलो संसार, आप पुलाया।

पूरन होत न कार्य माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया, पैरो मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विच जाए, राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

जिस लड़ लाए ले सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभु सभी साथ, पैरों महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुरु पूरे तीनों दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला अपर

स्वाओ नाम न विसरे संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निज पाई गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई तनवंते सेई प्रदान नानक जा कै नाम निधान पैरों मैला पंजवा तू मेरा पिता।

अग रंग रसमाने कट कट अंतर तुम्हें समाने तुमरी कृपा ते जपिए नाओ साध संग तुमरे गुण गाओ तुमरी दया ते होए दर्द विनाश तुमरी माया ते कमल विलास हौं बलिहार जाऊं गुरुदेव सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव दया करो ठाकुर प्रभु मेरे गुण गावे नानक।

नाम तिसर नाही सदा सुख होए कर कृपा जा को मिले सोए रहाओ जा के कर्तव्य लते न जाए जा का परवासा सब कट माए

सिर पाप सा साचा सोए, जिसकी ओट तिसे की आशा, दुख सुख हमरा किसी पासा, राख लीनो सब जनता पर्दा, नानक किसकी उस्त करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चिताया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, विकला का सब

मान मूर मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौन से जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरों महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल तहां का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों मैला पंजवा रोग कवन जा राखे आप किस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे किस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे नित ना आवे ता कै जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल के क्या प्रगटाया आपे मार आप जीवा ले अपने भगत को सदा प्रतपाले।

हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ। अहंग बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम तिराए हर हर, हर

0: कोई भगत जपे नाम जाप मन पर दास गुरते मत लई। कहो नानक ताकि पूरी पई।
1: पैरों महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख

नानक को गुरु कहे दयाल पैरों मैला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास तिसे प्राप्त जिस

खगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कथा है। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे, बंधन काट हर संग मिलाए रहो।

नानक सब किछ प्रभ ते होए। पैरों मैला पंजवा मन तन राता राम रंग चरणे, सर्व मनोरथ पूरन करने, आठ पहर गावत पक...

सो पतवंता जी आप पछाने, गुरु प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रहते आया, टूटे बंधन पूरन आशा, हर के चरण रिद माय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभ की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरों महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नाश, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किस चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बद्ध है, हर सिमरत गर्भ जोन न रुद्ध है, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग।

आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिये नाम कै रंग, गुण गावे नानक सात संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किस जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जनतन, पैरो मैला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पय बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिन माहे, पार ब्रह्म वस्या मनया।

सतगुर अपने सुनी अरदास, कारज आया सगला रास, मन तन अंतर प्रभु ते आया, गुर पूरे डर सगल चुकाया, सब ते वड समरथ गुरदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव रहाओ, जाका किया सब किछ होए, तिसका अमर नामे तै कोए, पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप, सफल मूरत गुर तिस

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुतरंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित अनेक

नानक सेव अपार देव तटह खटे बर्त पूजा गवन पवन जात्र करन सगल फल पुनी पैरों अष्टपदिया महला पहला कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। आत्म मह राम, राम मह आत्म चीनस गुर बिचारा अमृत बाण।

तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन वस्या, मनसा मने समाई, हर जियो कृपा करू मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन, जन मांगे गुरु।

सुरत न पाए, मन मुख मरे तिन किछु न सूजे, दुर्मत अज्ञान अंधारा, पव जल पार न पावे कभी, डूब मोए बिन गुर सिर पारा, साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए, गुर की वाणी शब्द पछाती, साच रहे लिवलाए, तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल, गुर के शब्द विचारे, नानक तिन

कहो नानक तत्तै तत मिलाया पैरों महला पंजवा कोट बिशन कीने अवतार कोट ब्रह्मंड जाके तर्मसाल कोट महेश उपाय।

राम राजा नौनिद मेरे संपहेत कलत तन तेरे रहाओ आवत संग ना जात।

पहचाना। उलट जात कुल दो विसारी, सुन सहज मैं बुनत हमारी, हमरा चगरा रहा न को। पंडित मुला छाड़े दो रहाओ, बुन बुन आ

कह कबीर जिस उदर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे।

क्यों लीजे गड बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। रहाओ 5-25 मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे।

मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ,

एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखावंत जल सेती काज, जैसी मूड़।

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी, कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए, कबहु न तू टस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए।

राव। हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए, मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिख खाए, ज्यो बेसुआ के परे अखारा, कापर पहर करे सिंगारा, पूरे ताल निहाले सास, वाके गले जम का है फांस, जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना, कहत नाम दियो इहो विचार, इन विद संतो उतरो पार, संडा मर कह जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे, राम कह कर ताल बजावे, चटिया सब बिगारे, राम नामा जप वो करे,

पर फड चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हूं मैं सुरत विसार, हूं मैं मार विचार मन, गुण विच गुण लै सार रहाओ, कर्म पेड़ साखा हरी, धर्म फुल फल ज्ञान।

एक त्यावो मूड मना, पार उतर जाए एक खेना रहाओ, सिमरत शास्त्र करें बखियान, नादी बेदी पढ़े पुराण, पाखंड दृष्ट मन कपट का।

तौ पव जल के तू तसबंद बसंत मैला पैला सगल पवन तेरी माया मोह मैं अवर नदी सह सर्व तो हो तू सुरनाथा देवा देव हर नाम मिले गुरचरण सेव मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल गुरमुख राम नाम गुण गाए तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ बिन साध ना पाये हर का संग बिन गुर मैल मलीन अंग बिन हर नाम ना सुध

गुर संग दिखायो राम राय, मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन, गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दुहागण नाहे पेओ, ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ, गुर नाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत न पाओ होए, बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए, मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए, गुर

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा, गुर प्रसाद को पा।

सालग्राम विप पूज मनावो सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो दया करो दयाला।

तीजा राते साथ हर नाम निहाला दया करो प्रभु दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोए ज्यों पावे त्यों राखे सोए गुरु गोपाल मेरे मन पाए रह न सकूं दर्शन देखे।

सब समाल दर्शा चे पत्थरों कर जाए नानक नाम बड़ाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मनते होए एक को वेख है और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनो एक दिखाया मेरा प्रभ मौलिया सद बसंत ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद राव गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभ साचे लगे प्यार आप छोड़ होए दासत।

जे हर जीव भावे सदा सुख शरीर पाने चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए नानक नाम वसै मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुरु भाए सफल्यो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुभाए सच पल लागे सतगुरु भाए रहाओ आपे नेड़े आपे दूर गुर कै शब्द वेखे सद हजूर छाव कणी फूली बन राय गुरमुख बिगते सह सुभाए अन दिन कीर्तन करे दिन रात सतगुर गवाई विच्चों झूठ परात परपंच वेख रहा विस्माद गुरमुख पाये नाम प्रसाद आपे करता सब रख भोग जो किछ करे सोई पर होग वड्डा दाता तिल ना तमाए नानक मिलिए शब्द कमाए बसंत महला तीजा पूरे पाग सचकार कमावे एक पोचे तै फिर जोन ना आवे सफल जन्म इस जग में आया सच नाम सहज समाया गुरमुख कार करो लिव लाए हर नाम सेवो विच्चों आप गवाए रहाओ तिस जन की है साची बाणी गुर कै सब जग माए समाणी चहु जुग पसरी साची सोए नाम रता जन प्रगट हो।

एको करता अवर्ण कोए, गुर शब्दी में लावा होए, जिन सच से व्या तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया, बसंत महला तीजा, भगत करें जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज धूर, हर खेती सद रहे लिबलाए, पूरे सतगुरु दिया बुझाए, दासा का दास बिरला कोई होए, उत्तम पदवी पावे सोए रहाओ, एको सेवो अवर न कोए, जित सेवे सदा सुख होए, ना ओ मरे न आवे जाए, तिस बिन अवर सेवी क्यों माए, से जन साचे जिनी साच पछाणिया, आप मार सहजे नाम समाणिया, गुरमुख नाम प्राप्त होए, मन निर्मल निर्मल सच होए, जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान, साच शब्द प्रभ एक स्ञान, हर रस चाखे ता सुध होए, नानक नाम रते सच

जीवत मरे मर मरण सवार है, गुरु कै शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच पोजन पवित्र शरीरा, मन निर्मल सद गुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साथ समाए, साचा सेवो साथ पछाने, गुरु कै शब्द हर दर निशाने।

दारखा चैसा छोबा होए, निज करवा सा पावे सोए, आप अपुल सच्चा सच सोए, और सब पूले दूजे पत्थोए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई, माया मोह बहुत दुख पाई, मनमुख अंधे ठौर न पाई, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माई समाई, हुकम मने सो जन प्रवान, गुर के शब्द नाम निशान, रहाओ साच रते जिना तुर लिख पा।

पल्ले पाए सो बुझाए जिस आप बुझाए सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता के जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप बसे।

मन शांत ना होए, बहु अभिमान अपनी पख होए, सेवड पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर मैं आणिया, कर मैं वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निद

देता जापी आदमंत गुण आस विचारी मेरी माए हर जप हर कह लगो पाए रहाओ गुरु प्रसाद लागे नाम स्वाद काहे जन्म गवावो वैरवाद गुर कृपा की नी चूका अभिमान।

नस्पत मौली चढ़िया बसंत, हे मन मौलिया सतगुरु संग, तुम साथ से आवो मुग्ध मना, ता सुख पावो मेरे मना रहाओ, इत मन मौलिय पया आनंद, अमृत फल पाया नाम गोविंद, एको एक सब आख बखाने, हुकम बूझे ता एको जाने, कहत नानक हो मैं कह न कोए, आखन वेखन सब साहिब ते होए, बसंत महला तीजा, सब जुग तेरे कीते होए, सतगुर पे तै मत बुद्ध होए, हर जियो आपे लहो मिलाए, गुर कह शब्द सच नाम समाए रहाओ, मन बसंत हरे सब लोए, फले फुलिये राम नाम सुख होए, सदा बसंत गुर शब्द विचारे, राम नाम राखे उदारे, मन बसंत तन मन हरिया होए, नानक यो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए, बसंत महला तीजा, तिन बसंत जो हर गुण गाए, पूरे पाग हर पगत कराए, इस मन को बसंत की लगे न।

ए मन छूटा गुरु लिया छाए, नानक माया मो शब्द जलाए। बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए, ए जी जंत फूले हर चितलाए। इन विद ए मन हरिया होए, हर हर नाम जपे दिन राती। गुरमुख हो मैं कद्दे तोए रहाओ, सतगुर पाणी शब्द सुनाए। ए जग हरिया सतगुर पाए।

तूर्तिना की अकुलीय पाए, सत्संगत मेल मिलाए, आप कराए करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख सद।

मेरे सब आलस दुख पंज प्रभ पाया। गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ, मन मुख फिर हो मैं मोए। काल दैत संगारे जमपुर गए, गुरमुख हर हर हर निव लागे। जन्म मरण दो दुख पागे, भगत जना को हर कृपा धारी। गुरु नानक तुखा मिलिया बनवारी, बसंत हिंडोल मैला चौथा। कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी घर मंदिर एक लुकानी, सतगुरु मिले त खोजिए मिल ज्योति जोत समानी। माधो साधु जन देओ मिलाए, देखत दर्श पाप सब नासे। पवित्र परम पद पाए राव, पंच चोर मिल लागे नगरिया। राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे। तन साबत रास उबरिया, तखंड परम उपाव कर थाके। हृदय अंतर माया।

साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अदम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बन छे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृप छे, जन्म जन्म के किल विख मल परया, मिल संगत कर प्रभ हंसे, रहाओ तुमरा जन जात अल जाता।

हम किए पतत पवीचे बसंत ही डोल मैला चौथा। मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे जो बारिक रसक पर्यो थन माता थन का दे बिलल बिली दे। गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

जन जप्यो नाम निरंजन नरहर, उपदेश गुरु हर प्री दे, जन्म जन्म की हौ मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नी दे। हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर पावे सुन बिनो बिनंती, जन नानक शरण पवी दे। बसंत हिंडोल मेला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, दिल कर नहीं वाता पाई है, गुर अंकत शब्द दा।

मम आधा ना हर रसे स्वाद। सेवक लागो चरण सेव, आद पुरुष अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान। बसंत महला पंजवा। तुम बरदाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे, दीने सगले पोजन खान, मोहे निर्गुण एक गुण ना जान।

टेक सर्व कला प्रभु तुम पर बीन, अंत न पावे जलह मीन। अगम अगम ऊंचे ते ऊंच, हम थोरे तुम बहुत मूच। जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से पनी। जिन तू सेव्या सुखी से, संत शरण नानक।

गाए गुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल है सोए जिस आरादे जम किछ ना कहे जिसकी सेवा सब किछ लहे राम राम।

नाम जप्यो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उधारे, सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभ तेरी शरण, जी जंत तेरे आधार, कर कृपा प्रभ लेह निस्तार।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत पत नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत पछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख

जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रखवाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप। खसम त्याई इक मन इक भाए गुर पूरे की सदा शरणाई साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दुसंतर रहे ताए किर्त ओना का मिटस नाहे ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतन आप अखंड पूरन जाको प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए नानक जी वह हर चरण ध्याए। बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर्षित आवे बिन सत गुरु दी सह बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाओ।

संगत प्रभु कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मही अल रव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नव निद एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल प्रगास, बसंत महला पंजवा।

नानक प्रभ कृपा भई बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने कर थाप सांत सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर हर मंत्र रहाओ सोग संताप कटे प्रभ आप।

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले इक रहे सूख कथूले।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। इन बिद पासा तालो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती। अंत काल न लागे पीर रहाओ, कर्म तर्म तुम चौपड़ साजो। सत करो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो। ऐसी खेल हर प्यारी, उठ इस नाम।

कर जाते। हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया। जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया।

है भाणा कहो नानक कह कया द्वारे रख ले वो मुग्ध अजान बसंत हिंडोल मैला पंजवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म।

क्या जानो या पीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महला।

के गाए बसंत महला पहला अष्टपदिया कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

सतगुरु मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल हो मैं कड्डे धोए, सदा मुक्त बंध न सके कोए, सदा नाम बखाने और न कोए, मन हर के पाने।

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह से पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए।

किसै न भावो, नानक हो मैं शब्द जलाया, सतगुरु साचा दर्श दिखाया, बसंत महला पहला, चंचल चीत न पावे पारा, आवत जात न लागे बारा, दुख कणो मरिए करतारा, बिन प्रीतम को करे न सारा, सब उत्तम किस आखो ही ना, हर पगती सच नाम पतीना, रहाओ औखद कर था।

व्यापे कट कट रव रहा प्रभ जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे हित चीता बसंत महला पहला इक तुकिया मत पसम अंधूले।

गुण नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजा खेल हो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार, मन मुख पर मैं मज गुबार, मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे, रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाए, लख चौरासी जंत उपाए, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए, सगली पूले नहीं शब्द अचार, सो समझे जिस गुर करतार, गुर के चाक

तू अकल निरंजन परम हीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुरु प्रीत।

आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मिलावे नानक गुरमुख सहज मिलाए जो जल जल है समावे। बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुकिया इको अंकार सतगुर प्रसाद सो साखी।

गन का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक, विप्र सुदा में दाल दुपंज, रे मन तू भी पज गोविंद, बदक उदार्यो खम प्रहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट धार, बिदर उधार।

बिन नरक पाहे। भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड। गोविंद पजो मेरे सदा मीत, साथ शब्द कर सदा प्रीत।

मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, पीठ मीत को सखाना है। आप बीज आपे ही खाए, जाके कीने होत विकार।

हर का नाम से आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तय पाई है ए रुत सुहाई, वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजै लखी सब छाई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न पाई, पंजे बदे मां बली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रे नाम से आयदा फिर पाए न मोआ, जिस ते उपजिया नाम का सोई फिर होआ, कितो

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगता की कबीर जी कर पहला इकोंकार सतगुर प्रसाद मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

सहदेव सब मद माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग रहा, जागे सुख देओ अर अकूर।

बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता, निद्रा बिन नर पैसोवे, बिन बासन खीर बिलोवे, बिन अस्थन गऊ लवेरी, पैडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बा

रहाओ। सनक सनंदन शिव सुकाद नाभि कमल जाने ब्रह्माद, सब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर चले सार। तू अथाओ मोय था नाहे प्रभु दीना नाथ दुख कहो

चलो बन जा रहा हाथ चार, पूंजी हिरानी बनज टूट, दैदिस तांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता परम पाज, बसंत हिंडोल कर दू।

बैठ पाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा।

जिन सकल विकल प्रम काटे मोर, रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुरु का शब्द काटे कोट कर्म, बसंत बाणी नाम देव जी के इको अंकार। सतगुरु प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे, चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे, तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे, चरण कमल मेरे हीरे बसे, रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे, तैसे संत जना राम नाम ना छाडे, गंगा गया गोदावरी

लटके त्रुटे टोहाकती सर सोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम देव रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे।

कह रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जून काम। बसंत कबीर जियो इको ओंकार। सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल, तेरी पूंछट ऊपर चमक बाल। इस घर में है सो

मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ। इन विद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी जिस मन माने अभिमान।

उठत बैठत हर गुण गावे गुर किंचित कृपाधारी। नानक जिन को नजर भई है तिनकी तै सवारी। सारंग महला चौथा हर हर अमृत नाम देहो प्यारे। जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया तिनके काज सवारे रहाओ। जो जन दीन भय गुर आ गए तिनके दुख निवारे। अन दिन भगत करे गुर आ गए गुर के शब्द सवारे। हृदय नाम अमृत रस रस।

सांस वसै मन आए, गुर कृपाल पै तव पाया, हर चरणी चित लाए, मत परदास पई हर ध्याया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाध लगे।

मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो वो जन ऊपर, जन देवो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी। हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी। पुरख है पुरख मिलिया सुख पाया, सब चूकी आवन जानी।

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनित अनित अनित गुण गावत सुख नारद ब्रह्मा।

वाजे पंच शब्द वद पाग मथोरा। तिन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए। तिन जन के हर मार कदे पंच चोरा। हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो। मन बचन कर्म हर

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुरु सो जन हर हर।

अंतर प्यास चात्रिक जो जल की सफल दर्शन कद पाओ रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रतपालक भगत वत्सल हर नाओ जाको कोई

सब आपद जय गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महा प्यान उद्यानद जहां कीर्तन साध संगत

पाए। जो जो शरण पर्यो करणानिद ते पवे तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो सहसा गुरहे गवाए। जो चाहत सोई हर कियो मन बांचत फल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए।

अवर सब फूले प्रमत ना जानिया, एक सुदाखर जा कह हृदय वस्या, इन वेदें तत पछानिया रहाओ, परवृत मार्ग जेता किस हो।

जगदीशें खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक किस पयो प्राप्त जा कै लेख मथामा सारंग महला पंजवा हम दिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लई रहो आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभव नासी अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो खटवासी गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे।

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निद मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर, जो गोपाल री जायो रहाओ, संते चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक संत

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई। दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर मन ना रहे बहुविध उमकाई रहाओ। चितवन चितवो

राय राव अनेक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म गुलवाई गर्भ जोन छोड़ जो निक्षो तव लागो अनठाही करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही।

तो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक किन जन बलिहारी, जो अलक रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछरत होत मृतका, गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा।

मन कहां लुबाइए आन कहो, कीत ऊत प्रभु सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगामन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाए, रोग सोग तेरे मिटे।

लाए मात पिता पाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संके पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे। रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे। जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांचे नित नानक प्रभु मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम से आए एक पलक सुख साथ समागम कोट बैकुंठ पाए।

मोहन कायावो करो दरिया, मान करो अभिमाने बोलो, फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही, परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिनस लख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई, तो नानक हर संग मिरिया, सारंग महला पन्नवा, अब क्या सोचो सोच बिसारी, करना सा सोई कर रहया, देह नाव बलिहारी।

प्रमतो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सारंग महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर चेका गुर दयाल पै सुखदाई अंधुले मानक देखा।

जो अल कमला लो भांगे, गुण निधान मनमोहन लाल ने सुखदाई सर्वांग, गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो, मिलो सखा गल लागे। सार महला पंजवा, अब मोरो ठाकुर शिव मन माना, साध कृपाल दया।

मेरे मन शीत आए प्रिय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को, रजन सबाई जंगा रहाओ, हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा, ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा, प्रयो अपना गुर बसर दीना, पोगो पोग निसंगा, निरपो पै नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा, सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी, बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे, देहा प्रिय अंक समानी, रहाओ सूटर ते गुर की सुहागन, हर पायो सुगुर सुजा।

जन नानक के प्रपुरुष विदाते, मेरे ठाकुर अजय अतोला। सारंग महला पंजवा, रसना राम कहत गुण सोहं, एक निमख उपाय।

गुर मिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताती बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिसरे करी न बिसरे, सद संगे जत जाया, हौ बल बल बल बल चरण कमल को, बल बल गुर दर्शाया, कहो नानक काहू परवाह, जो सुख सागर में पाया, सारंग महला पंजवा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुलियो कर्म पयो।

और द्वितीय आकाश विराते नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुरकर तारे मेरे माथे सौ नानक मैं अतुल सुख पा।

कोट लाख राज सुख पाए, एक निमक पेट दृष्टाना, जो कहो मुखों सेवक एह बैसी है, सुख नानक अंक।

न्यायी, जैसे मात पिताई, किस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसरना कब हूँ जाई। कहो नानक।

भक्ति की जय। सुखदाता प्रभु ध्याय ये रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुष जे सेवो तो लाज लोन हो जाये। एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मिल मत बुद पाये।

तब अरोग जब तुम संग बसतो सुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को थाप्यो थापन हारे नाम न विसरे तब जीवन पाये बिनती नानक हे सारे सारंग मेला पंजवा मन ते पै पौ दूर परायो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुन गायो रहाओ गुर बचनात कमात कृपा ते बहुर न कथु धायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे।

कहो नानक सास बिचारो सारंग महला पंजवा बिन प्रभ रह न जाय करी सर्व सुख ताहू कै पूरन जा कै सुख है हरी राव मंगल रूप प्राण जीवन तन सिमरत अनद घना वट समरथ सदा सद संगे गुण रसना कवन भना थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन कहन हारे कहू नानक तिल पवन

अपने पै मान अपने पै ताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुरु।

मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतुराई मिथ्या पोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संते की सारान मांगन मांगो हुए अचिंता मिल नानक के हर प्राण सारंग महला पंजवा अपनी इतनी कछु न सारी अनेक काज अनेक तावरता उर्जियो आन जंजारी रहाओ ज्योस चार के दिशे संगी पूहा नाही जह भारी तिन स्यों राज मात हित लायो।

कोट जोद ओआ की बात न पुछिए, ता दरगे भी मान्यो रहाओ। कवन मूल प्राणी का कहिए, कवन रूप दृष्टानियों।

आओ। आप महाजन आपे पंचा आप सेवक के काम आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पत राखी सेवक की आपकी ओ बंदान आद जुगाद से।

जन का संग पाई है वड भागी, नानक संतन कह कुर्बान। सारंग महला पंजवा, करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिकी तुम तारे, सुमत संग तुम

कहो नानक जिन जगत ठगाना, सो माया हर जन ठागे। सारंग महला पंजवा, अब जन ऊपर को ना पुकारे, पुकारन को जो

संताप मित्र सत्र पेख समत विचार्यो सगल संबाखन जाप तपत बुझी शीतल आघाने सुन अनहद विषम पै विषमाद अनद भया नानक मन साचा पूरन पूरे नाद सारंग महला पंजवा।

अन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक है एकंकार सबते ऊंचे ठाकुर।

आशत फल पाओ सहु नानक लाभ लहा ले चालो सुख से ती कर जाओ सारंग महला पंजवा ठाकुर तुम शरण आई आया उतर गए।

समाए अनद अनद गुण गाया बाँ पकड़ कडली ने अपने गृह अंधकूप से माया कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

तै हरणी मन बांछत चितवत नानक दास तेख जीवा प्रभ चरणी सारंग महला पंजवा सीते हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाय।

सच तन बन जो सच तन संचो कबू न आवो हारे खास खर्चत किछ निखुटत नाही अगनत परे पनारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग महला पंजवा प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बिचारा कवन मूल ते मानव करया।

आवे राम शरण वडपागी, एकस बिन किछ होर न जाने, अवर उपाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अरादे हर हर, साध संग सुख पाया, अनद विनोद अकप कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकि उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरिये, जोरा ते प्रभ।

जियो प्राण आधार तेरा, तूने थावे थाओ सास सास समाल हर हर, नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ, उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन, पाये सुख विश्राम। सोदत सोदत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक इक राम नाम बिन, अवर सगल बिद उरी, सारंग महला पंजवा, साचे सतगुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नाते, चरण कमल बलिहार।

गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाये, सगल कटा आधार नानक वाहो वाहो कहो ताको, जाता अंत न पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई, निकट बसे सब ने रह रहाओ। बंधन तोर राम लिवलाई, संत संग बन आई।

आठ पहर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवा, जीवन कौ गनिये हर पेखा, करो कृपा प्रीतम मनमोहन, और परम की रेखा रहाओ। कहत सुनत किछ शांत ना उपजत, बिन विश्वास क्या देखा। प्रभु त्याग आन जो चाहत, ताके मुख लागे का लेखा। जाके रास सर्व सुख स्वामी, आन न मानत देखा। नानक दर्श मगन मन मोहयो, पूरन अर्थ विशेखा। सारंग महला पंजवा, सिमरन राम को इक नाम, कलमल दगद हो है खिन अंतर। कोट दान स्नान रहाओ, आन जंजार बिरथा श्रम कालत, बिन हर फोकट ज्ञान। जन्म मरण संकट ते छूटे, जगदीश भजन सुख ज्ञान। तेरी शरण पूरन सुख सागर, कर कृपा देवो दान। सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे, बिन जाए अभिमान। सारंग महला पंजवा, तूरत सोई जे

मन तन राम को व्यवहार, प्रेम भगत गुण गावत गी दे, होहत न संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी, एहो साध को आचार, चरण कमल अस्थित हृदय अंतर, पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती, कृपा अपनी धार, नाम निधान उचरो नित रसना, नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजमा, हर के नाम हीन मत थोरी, सिमरत नाहीं श्री कर ठाकुर, मिलत अंध दुख कोरी।

करना है। जप तप संयम कर्म सुख साधन तुलना कछु ऐला है। चरण कमल नानक मन भेद्यो चरण संग समाए। सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सूखा सिमर।

दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करो कृपा गोपाल बीठले।

हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख भंजन तेरे संत की रावार।

पीवत अम्यो मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद। सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरह।

पूरन होत न कथो बातें अंत प्रतिहार रहाओ। शांत सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार आप पर का कछ न जाने।

महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल हुए।

गाओ, कर मस्तक तारियो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम ते आए, अब चल नीव

अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म अपार जीतियो, बौड़ जोन ना पाए, पय कृपाल दयाल गोविंद, पया साधु संग, हर चरण रास।

जानो द्वितीया पाओ सब लूहराओ त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार, कर कृपा प्रभु संत राखे, चरण कमल आधार, कर जोर नानक।

सेवक पै दूर करन कलमल दोख जारे, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी, रहाओ प्रीत लाए हर त्याए गुण गो

कास्यो न्यो लगाई जो दिसे सो सगल विनाशे ज्यो बादर की चाही तज अभिमान शरण संतन गयो मुक्त हो है छिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही सारंग महला नावा कहां नर अपनो जन्म गवावे।

कटे न कीमत पाई, बिन नावे सब कोई निर्धन, सतगुरु बूझ बुझाई, प्रीतम प्राण पै सुन सजनी, दूत मोए बिख खाई, जब की उपजी तब की तैसी, रंगुल भई मन भाई, सहज समाद सदा लिव हर्ष्यों, जीवा हर गुण गाई, गुर के शब्द रता बैरागी, निज कर ताड़ी लाई, सुद रस नाम

कोट कल्प के दुख विनाशन सात दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी, अनपो विसर गए प्रभ जाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पो

सिंच भई सुबर सर गुरमत साच ने आला मन रत नाम रते में केवल आप जुगा दयाला मोहन मोय लिया मन मोरा बदे पाग लिव लागी साच विचार किल विक दुखाते मन निर्मल अनरागी गैर गंभीर सागर रत्नागर अवर नहीं अन पूजा शब्द विचार परम पौपंजन अवर न जान्या दूजा मनुआ मार निर्मल पद चीनिया हर रस रते अधिकाई एक बिन मैं अवर न जाना सतगुरु बूझ बुझाई अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुबर भरे नाही चित डोले।

हर रविया सब आत्म राम मुरारी सेवक सेव रहे सच राते जोते रहे मन भाने दुबदा मेल न पावे जग झूठी गुण अवगुण ना पछाने आपे मेल ले अकथ।

जन्म जन्म के किलविक पौ पंजन गुरुमुख एको डीठा रहाओ कोट कोटंतर के पाप विनाशन हर साचा मन भाया हर बिन अवर

आवागौन निवार सच राते, साच शब्द मन भाया, सतगुर सेव सदा सुख पाईए, जिन विच्चों आप गवाया, साचे शब्द सहज तुन उपजे, मन साचे लिव लाई, अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई, एक समय सब जग तो वरते, विरला एक पछाणे, शब्द मरे ता सब किछ सूजे, अंधन एको जाने, जिसनो नजर करे सोई जन बूझे, होर कहना कठिन न जाई, नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिवलाई, सारंग महला तीजा, मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नजर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर ले जानी, रहाओ, हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करें पाई दूजे, बिन शब्द बहुरानिया, हर नाम नामे सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल

आई मुक्त पए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख पए कृपाला तिन पव सागर तरिया हम नानी नी

अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान अंजन।

अनक महेश बैस ध्यान सरे अनक पुरुष अंसा अवतार अनक इंद्र उबे दरबार अनक

दाता कट कट पूरन है अलपाता कट कट पूरन कर विस्थिरन जल तरंग ज्यों रचन किया हब रस माने भोग कटाने।

करें मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड़ कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बदे मारिए परमे परमाया मनमुख जन्म गवाया।

पौड़ी नाय मन दुर्मत गई मत प्रगति आया नाव मन हो मैं गई सब रोग गवाया नाय मन नाम उपजे सहजे सुख पाया नाय मन सांप उपजे हर मन वसाया नानक नाम रतन है गुरमुख हर त्याया श्लोक महला पहला और शरीक होवे कोई तेरा तिस अगै तुद आखा तुद अगै तुदे सलाही मैं अंधे नाउ सुजाता जेता आखन साही सबदी पाख्या पाए सुबाई नानक बहुता एहो आखन सब तेरी वड्याई महला।

साहिब शब्द ना ऊचरे माया मोह पसारी अंतर लालच परम है परमे गावारी नानक नाम न चेतई जुए बाजी हारी। श्लोक महला पहला। लक्ष्य प्रीत होवे लख जीवन क्या खुशियां क्या चाओ विछड़िया विष होए विछ

जो उस इच्छे सो फल पाए, ता नानक कहिए मूरत पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुर शब्दी मिलिया। सतगुर के पाने जो चले हर से तीर लिया, जमकाल जो न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया, श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीरथ ज्ञान ध्यान स्नान, दया देवता चिमा जप माली के।

द्वादशी पंचवश गत्तर राखे तो नानक मन माने। ऐसा वर्त रही जय पांडे और बहुत सिख त्यागी जय पौड़ी। सूपत राजे रंग राय संचय दिख माया कर कर हेत बधाए दे पर दर्ब चुराया। पुत्र कलत्र न विश्व है बहु प्रीत लगाया देख दिया ही माया तो गई पछताए पछताया जमदर बदे मा

इकना नाद ना वेद ना गी रस रस तस ना जानंत इकना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खारे जे दिन गुण गर्भ कर।

नानक जो देवै तुसें ना जाननी। मनमुख दुख पाई श्लोक महला तीजा। पर पर पंडित मुनि थके दे संतर पल थके तेख तारी। दूजे पाए ना कदे ना।

नानक किसनो आखिए सब वरते आप सचियार महला तीजा हर गुरमुख तिनी अराध्या जिन कर्म प्राप्त होए नानक हों बलिहारी तिनको जिन हर मन वस्या

नानक बिन बूझे किने न पायो, फिर फिर आवे जाए महला तीजा। मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम, सर से सज्जन संत प्यारे। जो तुर मिले ना बिछड़े कबहू, ये आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया, सगले दुख निवारे। हर सुख दाता सदा।

वही नाम वसे मन आए, बिन नामे जे होर खाना चित रोग लगे तन खाए। नानक रख सब सलाहना आपे ले मिलाए महला तीजा, जिया अंदर जियो सब।

लोभ लहर सुद मत गई, सच न लगे प्यार। गुरुमुख जिना शब्द मन वसे, दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल ले, आपे बख्शनहार। महला चौथा नानक जिस

हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे खाए, हर किसे त्यागो संत जनो जो अंते ले चलाए। हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिना गुरमुख नाम आराध्या तिना दुख पुख ले जाए। जन नानक तृप्त है गाए गुण, हर दर्शन देहो सुवाए पौड़ी, गुरपूरे की दात नित देवे चढ़े सवाइया, तुस देवे आप दया।

आप छोड़ सरनाए पवे मन ले रजाए। गुरुमुख जम डंड ना लगे हों मैं विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिया जे सच रहे लिवलाए महला तीजा। दात जोत सब

हर के संत सदा सिर पूजो, जो हर नाम जपात, जिनको कृपा करत है गोविंद, के सत्संग मिलात, मात पिता बनता सुख संपत, अंत न चलत संगात, कहत कबीर राम पद।

हर का नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर क्या गया, जग को तप ही आया, दिष्टा कीत पे उत ही ते, उत ही मैं समाया।

मानस का तल तब मैं सासे सास दे काया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूट से साचे नाए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हर नाए।

तीन बुदबुदा कैसा यो संसारा जिस ते हुआ तिसे समाना चूक गया पासारा मलार महला तीजा जिन्नी हुकम

मेरा हर प्रभ अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए गुरु प्रसादी बुझिया सब जयकार कमाए, नानक नाम चलाए तू हर हर दर शोभा पाए, मलार मैला पी जा गुरमुख कोई गिरना बूझे जिसनो

समाले गुरमत सत्संगत ना बिछड़े अंधन नाम समाले सबना करता एक तू नित कर देखे विचार एक गुरमुख आप मिलाया बख्शे पगत पंडार तू आपे सब किस जानदा किस आगे करी पुकार हर हर नाम अमृत है नगरी ताया जाए हम दे हर हर उचरे गुर के सह सुवाए नानक नाम निधान है नामे ही चितलाए मल्हार महला की जाए गुर सावाही सदा सुख दाता।

एक को एक बसे मन स्वामी, दूजा और न कोई, एक को नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया, जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा, गण गंधर्व नामी सब उदरे, गुर का शब्द विचार, हों मैं मार सब मन वसाया।

दात शब्द सुख अंतर सदा निगह तेरे आल राव। मन मुखता खंड कदे न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए। ए वेला सुर हाथ नाव अंदिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे न बूझे विस्ता मय समाए। गुरमुख नाम रते सेव दुरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्याए।

एक बिन मैं और ना जाना सतगुरु दिया बुझाई मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता गुर के शब्द।

सत रहा समाए, नानक नाम बिना कोई किछ नाही, नामे देव बदाए, मल्हार महला तीजा, हो मैं दिख मन मोया लद्या, अजगर पारी, गरुड़ शब्द मुख पाया, हो मैं दिख हर मारी, मन रे हो मैं मोह दुख पारी, यो पाव जल जग

इहो हुकुम कर सृष्ट उपाय। गुर प्रसादी बूजो भाई, सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहां गुणा की पंड उतारे, अंदिन एको नाम वखाणे।

कृपा होए। अनदिन हर गुण गावे सोए, शास्त्र वेद की फिर कूक न होए। मलार मैला तीजा प्रम प्रम जोन मन मुख परमाई, जम काल मारे नित पत गवाई। सतगुरु सेवा जम की काम चुकाई, हर प्रभु मिलिया महल कर पाई। प्राणी गुरमुख नाम ध्याए, जन्म पदार्थ दुविधा खोया। कौडी बदले जाए रहाओ, कर कृपा गुरमुख लगे प्यारे। अंतर पग

हौ जीवा सदा हर के गुण गाई। गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ। माया मोह अज्ञान दुवार, मनमुख मोहे मुक्त गवार। हम दिन तंदा तर्क निहाए, मरमर जम में मिले सजाए। गुरमुख राम नाम ले लाई, पूरे लालच ना लपताई। जो कुछ हो वह सह सुवाए, हर रस पी वह रसन रसाए। कोट मदे किसे बुझाई।

रसना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर वह, गुर शब्दी अस्थिर कर गह, मेरे मन काहे रोष करी जाए, लाहा कलयुग राम नाम है, गुरमत अंदन हृदय रवि जाए, रहाओ बाबी हाँ खिन खिन दिल लाए, बिन फिर देखे नींद न पाए, यो विछोड़ा सहा न जाए, सतगुरु मिले का मिले सुमाए, नाम ही दिन से दुख पाए, तृष्णा जलिया पू

हर हर प्रभ कृपा धारी, नैनी हर हर लागी तारी, सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो। जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ, जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर, तिसके कुल लागी गारी, हर तिसके कुल प्रसूत ना करियो, तिस विधवा कर महकारी, हर हर आन मिलावो गुर साधु, जिस एनस हर

मिले बनवारी मल्हार महला चौथा गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उद्दम तूर साधु की ताई किलविक मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई तीरथ असठ मज्जन नाई सत संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जहर नवी तपे पागी रथियाणी केदार था प्यो महसारी काशी कृष्ण चरावत गाऊ मिल हर जन शोभा पाई जितने तीरथ देवी थाते सब कितने लोचे तूर साधु की ताई हर का संत मिले।

साधु तूर दे हर पार लंगाई। मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना, जिस हर हर कृपा करे किसकी भूख दुख सब उतरे। जो हर गुण हर उचरे जप मन हर हर हर निस्तरे। गुर के बचने करण सुन ध्यावे भव सागर पार करे रहाओ।

जन के हम हाथ बुझाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे हर जन को हर पूख लगानी जन तृप्त जा हर गुण विचरे हर का जन हर जल पानी ना हर विसरत फूट मरे जिन ए प्रीत लाई सो जाने तो जाने जिस मन धरे जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की पूख करे।

हर गन हर कार लावे, सतगुर हर हर नाम दिलावे। हर बोलो गुर के सुख मेरे भाई, हर पौजल जगत करावे रहाओ। जो गुर को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभु भावे। हर की सेवा सतगुर पूजो, कर कृपा आप करावे। कर्म पूले अज्ञानी अंधुले, कम कम फूल तोड़ावे। निर्जीव पूजे मरा सुरेवे, सब दुखी काल गवावे। ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहिए, हर हर कथा सुनावे। उस गुर को छादन पूजन पाठ, पतंबर बहुबुदे सतकर मुख संचो। किस पुन की फिर कोट नावे, सतगुर देव प्रतख हर मुहूर्त। जो अमृत वचन सुनावे, नानक पाग पले तुस जन के। जो हर चरणी चित लावे, मल्हार महला।

उत्तरी जो गुरमत राम रस्थांत रहाओ हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया लह जाए प्रांत जो जल दूध पिन पिन का दे क्यों हंसना क्यों देही ते चुन का दे साधु हो मैं तात जिनके प्रीत नानी हर हृदय ते कपटी नर नित कपट कमात तिनको क्या कोई देख वाले वो आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन में आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत करी त्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अंदिन अंध भया।

किन संगत हर मेलो करमया, किनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया, जो अनगिन हृदय नाम दिया है, सब जान तिना का सफल भया, वो आप करे सृष्ट सरकारी, सब कुल भी पार पया, तुझ आपे आप उपाया सब जग।

गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, तृष्णा भूख न जाई, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हूं मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिसते उपजे तिसे न सेते, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहाओ, मन मुख जन्म भया है बिरथा, आवत जात ल जाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हो मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मदन, लोभ लहर दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

ए मंदर कर अपनाए, जो ग्रह लाल रंगी ओ आया, तो मैं सब सुख पाए, संत सवा ओट गुर पूरे, फिर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक संत रंगीला पाया, फिर दुख ना लागे आए, मनहार महला पंजवा, खीर आधार बारक जब होता, बिन खीर रह न जाए, सार संभाल माता मुख नीरे, तब हो तृप्त अघाई, हम बारक पिता प्रभ दाता, फूले बारक अनेक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ, चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अग्न कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे, अनद सहज तब खेले, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, इस बारक भूख कैसी, नवनिध नाम निधान गृह तेरे, मन बांचे सो लैसी, पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, मोहि हृदय बसे नित चरना, मनार महला पंजवा, सगल विधि जुर आहर करया, सजियो सगल अंदेशा, कार्य सगल अरंभियो करका, ठाकुर का भरोसा, सुनिए बाजे बाज सुहावी, पोर पया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सुहलावी रहाओ, मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संता जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो, पगत करो निर पाए, जब प्रेम आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया, मीत साजन मेरे पहे सुहेले, प्रभु पूरा गुरु मिलाया, सखी सहेली पहे अनंदा, गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुख दाता, छोड़ न जाई दूरे, मलार महला पंजवा, राज ते कीट कीट ते सुरपत कर, दोख जठर को परते, कृपा निध छोड़ आम को पूजे, आत्म का सी हरते, हर बिसरते दुख दुख मरते, अनेक बार प्रमे बहुजोनी, एक न काहू।

बिरसा तखत हम करते शिव ग्रंथ असुर सुर जेते काल अगन में जरते नानक शरण चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हौं एक खिन तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोह

कृपाल पै बड़पागी महा सुख पाया बर न पाको रेन नानक जन पागी मल्हार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जे कर लाल बसाई रहाओ मोहे अवगन प्रभ सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करो बराबर जो प्रे संगराती एहो मैं कीटी ठाई तई निमाणी शर्म इकता की गुरु सब गुरु पुरुष सुखदाई एक निमख में मेरा सब

तत शोभा तले अचारे मल्हार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम ध्याए दुख दर्द बिन सह पव सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाओ दुश्मन हते दोखी सब व्यापे हर शरणाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवित सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निधान नानक मन वस्या बहुर दुख ना थिया मल्हार महला पंजवा प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजे दयाल अनुग्रह तारे रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आशा संत जना तह करो बेनंती मन दर्शन की प्यासा बिछड़त मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजे नाम आधार जीवन तन नानक प्रभ मेरे कृपा की जय मल्हार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यो बने आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निद पाई उदोत पयो पूरन पावी को पेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल विनाशे पार ब्रह्म लिवलाई करो संसार कथन पै सागर हर नानक चरण ध्याई मल्हार महला पंजवा तन हर बरस सगल जग छाया तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाओ मिटे कलेश त्रिसं सब बूजी पार ब्रह्म ध्याया साध संग जन्म मरण निवारे बहुर न कतु धाया मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिव लाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मल्हार महला पंजवा बिचरत क्यों जीवे ओए जीवन चितें उलास आस मिलवे।

मर जाही। मन तन रव रहा जगदीशर देखत सवाह जूरे, नानक रव रहो सब अंतर सर्व रहा पर पूरे। मल्हार महला पंजवा, हर कै भजन कौन कौन न तारे, खग तन मीन तन मृग तन ब्राहा, तन साधु संग उदारे रहाओ। देव कुल दैत कुल जख किन्नर नर सागर उतरे पारे, जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे। काम क्रोध महा बिख्या रस इनते पै निरारे, दीन दयाल जपे करुणा में नानक सद बलिहारे। मलार महला पंजवा, आज मैं बैस्यो हर हाट, नाम रास सांझी कर जनस्यो, जाऊ न जम के काट रहा।

तीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जीवे दास तेरे, नानक प्रभ शरणाई। मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, पार अनग्रो स्वामी मेरे, नाम महारस पी जय। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभ को भगत बछल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने, अपनो जस वरतायो रहाओ। जय जयकार कीनो सब जग में, दया जीवन में पायो, कंठ लाए अपनो दास राख्यो, ताती वाओ न लायो। अंगीकार कियो मेरे स्वामी, प्रम को मेट सुखायो, महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मल्हार महला पंजवा, चौप दे कर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। गुरुमुख दीसे ब्रह्म प्रसार, गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार, गुरुमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो, सास गिरास अपना खसम त्याय।

गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जाको कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम ना पाई। मनार महला पंजवा, गुर के चरण हृदय वसाए, कर कृपा प्रभ आत मिलाए, अपने सेवक को लय प्रभ लाए, ताकि कीमत कही न जाए। कर कृपा पूरन सुख दाते, तुमरी कृपा ते तू चित आवे, आठ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा भाना।

ज्ञान, सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले किसका बोलाया, मलार महला पंजवा, गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगे पाये मान, ब्रह्म को दुख दर्द सब जाए, साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ, सत गुर जेवड़

सो मन निर्मल जो गुर संग राची, गुर पूरा पाए वडवाग, काम क्रोध लोभ मनते त्याग, कर कृपा गुर चरण निवास, नानक की प्रभु सत अरदास, राग मलार में

गुरमन आर प्रेद आर स्यों रंग किया की नोरी सगल सिंगार तजोरी सगल विकार ताव तो अस्थिर थी आ रहा ऐसे रे मन पाए के आप गवाए के कर साधन स्यों संग बाजे बजे मृदंग अनाहद कोकिलरी राम नाम बोले मधुर बैन अक्सोहिया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रिय अमोग तैसे ही संग संत बने

नानक प्रयो प्रीतम किया मलार महला पंजवा मन कने प्रमय बने उमक तरस पाले प्रभ मिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो वेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिर तर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विषम विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण दुआरे मल्हार महला पंजवा बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल भाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग तन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ के संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल सात जना के चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

पार उतार मल्हार महला पहला अष्टपदिया कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद चकवी।

लाई। शात्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेर बिलप करे बिल लाई। कम हर कोर दसो दिस बरस बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजै जल ही ते सुख दुख पूर्व कमाई। खिन तिल रह ना सके पल जल बिन मरण जीवन तिस ताई। तन वाडी तिर देश निवासी सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

अपना काशवारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

अमर अनाथ सर्व सिरमोरा काल विकाल परम पै खंजन कागद कोत इहो जग है बपरो रंगन चेन चतुराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म मरे खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर तरवर सरपन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मन तन हेम पे सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंग अंग नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुरु मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुर अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे सारिंग सरद सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रमाओ त्रैस्यो प्रीत न उल्टे कबहू जो ते पावे साई नींद गई हो मैं तन फाकी सच मत हृदय समाई रूखी बिरखी उदो पूखा पीवा नाम सुवाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन

सतगुर प्रसाद। अखली ऊंडी जल पर नाल डूगर ऊचो गढ़ पाताल, सागर शीतल गुर शब्द विचार, मार्ग मुक्ता हो मैं मार। मैं अंधुले नावे की जोत, नाम आधार चला गुर के पै पेत रहाओ। सतगुर शब्दी

जुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालन हार, जित कर वसे तू है बिद जाने, बीजो महल न जाते, सतगुरु बाजों

एक शब्द राचे सत समाए, चौदिस हुकम वर्ते प्रभु तेरा, चौदिस नाम पतालंग, सब में शब्द वर्ते प्रभु साचा, कर्म मिले बयालंग, जामन मरणा दिसे सिर उबो, खुदया निद्रा कालंग, नानक नाम मिले मन भावे, साची नदर रसालंग, मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार न जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने, तू कैसे आ

मन मेरे हर हर नाम शीतलाए, सतगुर ते हर पाए साचा, हर स्यों रह समाए रहाओ। सतगुर ते ज्ञान उपजै ता ए संसा जाए, सतगुर ते हर बुझिए गर्भ जोनी न पाए।

द्वार मुक्त कदे ना हो वही नौ पायन मोख द्वार बिन सतगुर बंधन ना तुत ही नाम न लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित।

है। हर सिंह रह समाये मल्हार महला तीजा अष्टपदी कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हर हर कृपा करे गुरु की कार लाए दुख पल्लर हर नाम बसाए साची गत साचे चित लाए गुरु की बाणी शब्द सुनाए मन मेरे हर हर सेव निधान गुरु कृपा ते हर तन पाई है।

चित कट ना मैं नाम निवास, हों मैं भगत करे सब कोए, ना मन पीजे ना सुखोए, कह कह कहन आप जनाए, बिरथी भगत सब जन्म गवाए, से भगत सतगुरु मन भाए।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरे। गोपाल गुण निध सदा संगे सर्व गुण जगदीशरे। मन मोह लीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महापतित तुम तारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्श प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है बिन आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तव प्रसादी।

पाया बिनवंत नानक शरण तिनकी जिन्नी हर हर ध्याया। वार मलार की महला पहला राणी कैलाश तथा मालदे की तुन इको अंकार सतगुरु प्रसाद। श्लोक महला तीजा गुर मिले मन रहस्य ज्यो उठे तरण सिगार शब्द से हरियावली सर करे सबर ताल अंदर रचे सच रंग ज्यो मंजी ठे लाल कमल विग से सच मन।

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर शब्द न

गुरु नानक का सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर तरत बिछोड़ चंगो आताणिया गिण थम्मा गगन रहाए सब निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज विलाणिया तीरथ तरम विचार नावन पुरबाणिया तुझ सर अवर न कोए के आख वखाणिया सच्चे तख्त निवास होर आवन जाणिया। श्लोक महला पहला नानक सावन जेवस है चहो उमाहा होए नागा मिर्गा मच्छियां रसियां करतन होए। महला पहला नानक सावन जेवस है चहो विछोड़ा होए गाई पुत्ता निर्धना पंथी चाकर होए पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म बड़ा कहाए अंत न पाया ना तिस बाप न माए किंतु जाया ना तिस रूप न रेख वर्ण सबाया ना तिस पुख प्यास रज्जा ताया गुर में आप समो

का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्ण महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तंग दै लाए आप छपाया।

फैलाए झड़ी। नानक पाने चले कंत के, सो माने सदा रली महला तीजा। क्या उठ उठ देखो बपले, इसमें गए हाथ किसना।

करे नानक नगरी बाहरी सब करण पलाह करे पौड़ी सो हर सदा सरे भी है जिस तर्क न लागे वार आदाने आकाश

गुरमुख पद सों लेखा निबड़े बक्से सिर पंडार ओथे हाथ ना पड़े फूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली हो।

आए सच्चे सुनिया कन दे तीरक देवे सह सुवाए इंद्र नो फुरमाया बुठा छ बरलाए अन तन उपजे बहु कणा कीमत कह न जाए नानक नाम सलाए तू सबना जिया देदारी समाए जित खावे सुख उपजे फिर दुख न लागे आए पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लह मिलाए दूजे दूजी तरफ है पूर मिले ना मिले।

लिवलाए, जो जल में कमल अलिपत है, ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने, जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं, जो हर के अंक

सच्चा साहिब मन वसे सा मन चिंदिया फल पाए। नानक तिनका आखिया आप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार। हर अमृत पीवे सवा रंग राते होमे तृष्णा मार। अमृत हर का नाम है वरसे कृपा धार। नानक गुरमुख नजरी आया हर आत्म राम मुरार। पौड़ी अतुल क्यों तोलिए बिन तोले पाया ना जाए। गुर के शब्द विचारिये गुण में रह समाए। अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए। जिसकी कीमत ना पवे कहना किछु ना जाए। हौ बलिहारी गुर अपने जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए। जगत मुसे अमृत लुटिए मन मुख बूझ न पाए। बिन नामे नाल न चलसी जासी जन्म गवाए। गुरमति जागे तिन्नी कर रखिया दूता का किस न वसाए। श्लोक महला तीजा। बाबी हा ना बिललाए ना तरसाए इहो मन खसम का हुक्म मन। नानक हुक्म मने तिख उतरे चले चवगल वन। महला तीजा। बाबी हा जल में तेरा वास है जल ही माए फिराहे। जल की सार न जानही का तू कूकन पाहे। जल फल चहु दिसवर्षदा खाली को ठाव नाहे। एते जल वर्ष दे तिख मरे पाग तिना के नाहे। नानक गुरमुख तिन सोजी पई जिन वस्या मन माहे। पौड़ी नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया गुरमुख नाम पियाए।

नील अनिल अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद पुख तिहाया, दुनिया कै सिर काल दूजा भाया, रखे रखन हार जिन शब्द बुझाया। श्लोक महला तीजा, इहो जल सब कै वसवा, वरसे पाए सुवाए, से बिरखा हरि आवले, जो गुरुमुख रहे।

सब में एक वर्तदा। फिर सिर करे विचार, गुरमुख आप विचारी है, लगे सच प्यार, नानक किसनो आखी है, आपे देवनहार। श्लोक महला तीजा, बाबी हां इहो जगत है, मत को परम पुलाए, इहो बाबी हां पशु है, किसनो बूझण नाहे। अमृत हर का नाम है, जित पीते तिख जाए, नानक गुरमुख जिन पिया, तिन बहुर न लागी आए। महला तीजा, मल्हार शीतल राग है, हर त्याय सा

नानक एहो जगत सब जल है, जल ही ते सब कोए, गुरु प्रसादी को विरला बूझे, सो जन मुक्त सदा होए। पौड़ी सच्चा वे परवाह इको तू धनी, तू सब किच आपे आप दूजे किस गणी, मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुदमणि, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी, सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी, मनमुख मोह गुबार ज्यो पुल्ला मंजवणी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जाने, महल देख अरदास पाए, अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए, खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए, बाबी हा क्या बपुड़ा, जगते की तिख जाए महला तीजा, बाबी हा किन्नी रहन बोलिया, सहजे सच सुभाए, यो जल मेरा जियो है, जल बिन रह न जाए, गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए, नानक जिस बिन चसा ना जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए। पौड़ी खंड पताल अस

कोई इक राजे खान मलूक कहे कहावे कोई इक सवा सदावे संत धन दूजे पट खोई इक दाते इक मंगते सगना सिर सोई विणना में बाजारिया पिहावल होई कूड़ निखुटे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा बाबी हा गुणवंती महल पाया औ गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कै काल। महला तीजा बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी आपे जगत।

अवगण यार जिस बच्चे सो पाए सी गुर सबदी विचार। श्लोक महला पंजवा रात न विहावी सापता जिना विसरै नाओ राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मखन नानक जो प्रभु पाणिया सच्चे दर सोहन पौड़ी। सच्चा सतगुर सेव सच समा लिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे कालिया कोई न सके जमताल सच्चा रखवा लिया गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया मन मुख बिन नावे कूड़ियार फिरे बेतालिया पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया सबो वर्ते सच सच्चे सबग निहालिया नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा बाबी है हुकुम पछाणिया गुर कै सह सुवाए मेघ वर्षे दया कर गुड़ी छे बदलाए। बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए नानक सोसा लाई है जे दिन दा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है कित पीते तिख जाए दूजे पाए परम्या अमृत जल पल्ले ना पाए। नदर करे जे अपनी ता सतगुरु मिले सुवाए नानक सतगुरु ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी। एक मन खंड बैसे जाए सदना दे वही एक पाला टक्कर पान शीतल जल हे वही एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही एक जटा बिकट विकराल कुल कर खो वही एक मगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही एक अगन जला में अंग आप विगो वही गिनना में तन छार क्या कह रो वही सोहन खसम द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा बाबी हा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार मेघे नो फुरमान होआ वर्षो कृपा तार हौ तिन कै बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार। महला तीजा बाबी हा इव तेरी तिखा न उतरे जे सो करें पुकार नदरी सतगुरु पाईए नदरी उपजे प्यार नानक साहिब मन वसे विच्चों जाए विकार पौड़ी। एक जैनी उजड़ पाए तुरों खुआया तिन मुख ना ही नाम ना तीरथ नाया हथी सिर खुहाए ना पद कराया कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया तिन जात ना पक्ष ना कर्म जन्म गवाया मन जूठे वे जात जूठा खाया बिन शब्द आचार ना

गुरमुख शब्द समा लिए, सच्चे के गुण गाओ, नानक नाम रते जन निर्मले, सहजे सच समाओ पौड़ी, पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया, पूरे ज्ञान त्यान मैल चुकाया, हर हर तीर्थ जान मनुआ नाया, शब्द मरे मन मार तन जने दी माया, डर सच्चे सच्चे आर सच्चा आया, पूछ ना सके कोई जा खसने भाया, नानक सच सलाहे लिखिया पाया, श्लोक महला पहला, कुल्हा देन दे बावले, लेन दे वडे निलज, चूहा खड न मावई, तिकल बन्ने छज, देन दुआई से मरे, जिनको देन से जाहे, नानक हुकम न जा कई, किथे जाए समाहे, फसल आहारी एक नाम, सामनी सच नाम, मैं महदूद लिखाया, खसने के दर जाए, दुनिया के दर के तड़े, केते आवे जाहे, केते मंगे मंगते, केते मंग मंग जाहे, महला पहला, सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे, पंच सै दाना खाए, डके फूके खीरे उड़ावे, सहे गया पछताए, अंधी फूक मोई देवानी, खसम मिटी फिर भानी, अब गुल्ला चिड़ी का चुगन, गैन चढ़ी बिल लाए, खसने पावे ओहा चंगी, जे करे खुदाए खुदाए, सत्ता शिव मारे सह मिर्या, सब पिछे पे खाए, होए सताना पुरे न मावे, साहे गया पछताए, अंधा किसनो बुक सुनावे, खसमे मूल न भावे, अक्षों प्रीत करे अक्सिद्धा, अकबाली बैठाए, खसमे पावे ओहो चंगा, जे करे खुदाए

मरना जिन तू रखे तिन नेड़ ना आवे तिन पौ सागर तरना पौरी अगम अगोचर तू तनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते।

गुर कै सबद सलाहिए अंतर प्रेम प्यार विन प्रीति पगत न हो विन सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुझ सेव दे एक ताड़ी करे पुकार

दिन काल छिजै काया होए पराल वर्तन वर्तिया सर्व जंजाल पुलिया चुप गया तपताल अंधा चक चक।

नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाती पौड़ी अमृत नाम सदा सुख दाता अंते हुए सफाई बाज गुरु जगत बोराना।

मूरख पुख न जाए, दूजे सबको लग विगुता, बिन सतगुर बूझ न पाए, सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिसनो कृपा करे रजाए। श्लोक महला पहला, शरण करम दो नानका, जे तन पल्ले पाए, सो तन मित्र न कांडिया, जित सिर चोटा खाए। जिनके पल्ले तन वसे, तिनका नाव फकीर, जिनके हृदय तू वसे, ते नर गुणी गहीर। महला पहला।

जानिए कौजल तारण हार शब्द पछानिए चोर जार जुआर पीड़े खानिए निंदक लाए तबार मिले हरवानिए गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा नाव फकीर है पातशाहो मूर्ख पंडित नाओ अंधे का नाव पारखू एवं करे गुआओ इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला हरना बाजा कैसकदारा एना तरिया।

मैं समाया एक पगवा वेश कर परम दे बिन सतगुरु किने न पाया देश दिशंतर पर थके तुद अंदर आप लुकाया गुर का शब्द रतन है कर चानन आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमति सच समाया आवागोन बजारिया बाजार जिनी रचाया एक फिर सच्चा सलामा जिन मन सच्चा भाया श्लोक महला पहला नानक माया।

है मन भाया पाल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चलिया नचसी सतगुर बोलत बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे प्रहाड़ अंदिन पक्षी फासा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला।

मंडल लिव लाए अकथ कथा विचारिये मनसा मन समाये उलित कमल अमृत भरिया यो मन कथो न जाए अजप्पा जाप ना विसरे आज जुगाद समाये सब सखिया पंचे मिले गुरमुख निज करवास सबद खोज एवं कर लह।

कम करीन तू दरियाओ खुदाया, एक चीज मुझे दे और जहर चीज न भाया, पुराब खाम पूजे हिकमत खुदाया।

सो कराश्री सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचे कालकुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डावणा जिन विश्व संसार राचीले जाके कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सारखा ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जाचे दांगिया।

सारंग राव सुरसरी सलल कृत बारुणी रे संत जन तर्क नहीं पानन सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनन तर तार अपवित्र तरमानिय रे जैसे कागरा करत विचारंग भगत पगौत लिखिए तेह ऊपरे पूजिए कर नमस्कार मेरी जात कुट बांदला टोल टोवंता नितै बनारसी आस पासा अब बिक्र प्रधान तेह करें।

पूरे लोक प्रसिद्ध कबीरा, जाके कुटुंब के तेज सब टोटो अंत फिरे, अजो बनारसी आस पासा, आचार सहत विप्र

ओम बलबल बलबल सात जना को मिल संगत पार उतरिया रहाओ। हर हर कृपा करो प्रभु अपनी, हम सात जना पग परया, तन तन साध जिन हर प्रभु जानिया, मिल साधु पत उधरिया। मनुआ चले चले बहु बहु विद, मिल साधु वस वत करिया, जो जल तंत पसारियो बगत ग्रस, मीना वसगत खरिया। हर के संत संत पालनी के, मिल संत जना मल रहिया, हो मैं दुर्ग गया सबनी कर, जो साबन का पर करिया। मस्तक लीलात लिखिया तुर ठाकुर, गुर सत गुर चरण उर धरिया, सब दालद दुख पंज प्रभ पाया।

किल बिख दैन पए खिन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूरख मुग्ध

शोभा जिन उतारियो हर रस कृसाक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना में हर हर ते जन उत्तम जनक जनाक तिन हर हृदय बास बसानी छूट गई मुस्की मुस्काक तुमरे जन तुम ही प्रभ किए हर राख ले हो आपन अपनाक जन नानक के सखा हर भाई मात पिता बंधक हर साक कानड़ा महला चौथा मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वक्त माया गढ़वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाओ मिथ्या परम परम

राम रविया कट अंतर। अब फिर राम रविया रंग प्रीत, हर के संत संत जननी के, जिन मिलिया मन रंग रंगीत, हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत, हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत, हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक पतित पुनीत, कानड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम जगन्नाथ, कूमन केर परे बिख बिखिया, सतगुर काढ़ लिए दे हाथ, रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर, तुम राख ले हो हम पापी पाथ, काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, काष्ट लो तरे संग साथ, तुम वड पुरख बड अगम अगोचर, हम टूट रहे पाई नहीं हाथ, तू परे परे अपरंपर स्वामी, तू आपन जाने आप जगन्नाथ, अदृष्ट अगोचर नाम ते आए, सत्संगत मिल साधु पात, हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जप्यो अकथ कथकात, हमरे प्रभ जगदीश गुसाई, हम राख ले हो जगन्नाथ, जन नानक दास दासन को प्रभ करो कृपा।

गुण गावे गुरमत हो बलबले हो बलबले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिन को हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करे जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सत संगत मिल पज राम बड हो पाग मथाम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित तर अनदो अनद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुर सतगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे तज राम राम राम सब शिष्ट तार हर तुम कृपा

महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु गुरु संत जना खोल खोल कप

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो सुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाइए हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यो पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यो पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार बरन चार आस

साधु सुख पावे जप हर हर नाम निधान। उस्तत करें प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला।

जा को सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पन्नवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जतने।

कल युग में पाया जिन नाओ कानड़ा महला पंजवा कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना अनेक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बसना रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर द्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत में मन पर बोदा कृष्ण ना बूझी बहु रंग माया नाम लेत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पहे दयाल कहो नानक कहो।

अनेक स्वांग का छे पेख तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार। कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जत सुनत उमायो, रहाओ मने प्रगास पेख प्रभ की शोभा, जत कत पेखो आयो, सब ते परे परे ते ऊंचा, गहर गंभीर अथायो, ओत पोत मिलियो भगतन को, जन स्यों परदा लायो, गुरु प्रसाद गावे गुण नानक, सहज समाज समायो। कानड़ा महला पंजवा, संतन पह आप उदाहरण आयो, रहाओ दर्शन पेटक होत पुनीता, हर हर मंत्र दृढ़ायो, कांटे रोग पे मन निर्मल।

नानक लिप्त नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते साथ संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौजल।

सहज समाया कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आप वो

महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए सगल त्याग तरन आयो नानक लेहो मिलाए कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रहाओ आनंदा सुख सहज मूरत।

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन गुण कही है, अंत नहीं कछ पार है। लाख लाख लाख कई कोरे को है ऐसो विचार है। विषम विषम विषम ही भई है, लाल गुलाल रंगार है। कहो नानक संतन रस आई है।

ऊंच नीच सब पेक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ काट काट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण मने प्रगास पयो प्रमनास्यो मंत्र दियो गुरकान करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नानक जस गावे मांगन को हरदान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन को कई केत ऐसो जन बिरलो है।

कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भये ते संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माय रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनेक पाप की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं छोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही शरणाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभु पै कृपाला, मगन पय हिय रे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, होरे काज बुरु कै फेरो, रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कत्तेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो।

पयो परगास अनद उजियारा तय समाद समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जपती।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाये।

अंध कोर सागर नहीं मरसन, कानड़ा महला पंजवा, कोकत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ, अहंग मत अनरत कुमित हित प्रीतम, तेखत परमत लाख गरिया, अनित व्यवहार अचार विधहीनत, मम मद मात कोप जरिया, करुण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उदर शरण परिया, कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता, हर बिसरते ही आन रहाओ, गोविंद त्याग आन लागे, अमृतो डार पूम पागे, दिखे रस्यों आस्कत मूड़े काहे सुखमान, काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खान, पतित पावन सरने आयो उदर नानक जान, कानड़ा महला पंजवा, अविलोको राम को मुखार बिंद, खोजत खोजत रतन पायो।

साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा मेला पंजवा कर पंजवा इको अंकार।

था पूजा जे हर पावास। माटी की ए पुत्री जोरी क्या ए कर्म कमास। प्रभ बा पकड़ जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास। अवर ओट में कोई न सूजे इक हर की ओट में आस। क्या दीन करे अरदास जो सब कट प्रभु ने।

जगत उदाहरण नाम प्रह तेरे, नवनिद नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नैनो देख साब दर तेरे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरने रे, बाँचो तूर पवित्र करे रे, अरसत मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किछ संग न चाले।

बरना साकू एक तुले रह, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर के रह। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अर नंगा पूजा चार करत मेलंगा चकर करम तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापै चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव। जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सौ जन उदरे जिसे उदारों आप बिनस जाए।

मोही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकि शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिल्यो नाम आधार दुर्लभ जन्म सफल नानक पव उतार पार। कानड़ा महला पंजवा कर यारवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सहज सुभाए आपने आए कछु ना जानो कछु दिखाए प्रभ मिल्यो सुख बाले पोले रहाओ। संजोग मिलाए साध संगाए कथु ना जाए करें बसाए गुण निधान प्रगट्यो ए चोले चरण लुभाए आन सजाए थान सनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले।

पायो अनेक उक चतुराई जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निध जन नानक संत रे नाई कानड़ा महला पन्नवा माई सिमरत राम राम राम।

मूड़ मूड़ बवरई जत जात जात जात सदा सदा सदा सदा काल है। मान मान मान त्याग मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन पजन पजन पजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदिया।

मन गुरमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर कूमन केर कुलावे गो। पाप विकार मनूर सब भारे, विख दुत्तर करे।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो। नानक पाणे अपने ज्यो पावे तिवे चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो। जो जो जपे सोई गत पावे, ज्यो त्रू प्रहलाद समावे गो। रहाओ।

मिल सतगुरु नाम से आवै गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावै गो। ज्यो लोहा तरयो संग काष्ट लग, शब्द गुरु हर पावै गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवै गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावै गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावै गो। खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुरु उपदेश समावै गो। भगत जना को सदा निव रही है।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो सुख जनक पगी।

मार्ग पंथ ते आवे गो। सतगुरु बचन बचन है सतगुर पादर मुक्त जनावे गो। शासन सास सास बल पाई है ने शासन नाम ते आवे गो। गुर प्रसादी हो मैं बूझे तो गुरमत नाम समावे गो। सत गुरु दाता

गोब नगर में सबला गुरखिन में मार कडा रे गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगरी।

सतगुर महापुरख है पारस, जो लागे सो फल पावै गो। ज्यो गुरु उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुर बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीत अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर शरण शरण मन पाई।

ऊपर फिर उल्टो तिसह लगावे गो। हर हर हर हर हर सर सेवे तिन दरगे मान दिवावे गो। गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो। गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचे नाम दियावे गो। हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो। साकत नर सत

लग संगत नाम से आवे गो, नानक राख राख प्रभ मेरे, सत संगत राख समावे गो। छक्का पहला।

बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित पजय नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए, सत्संग पाये हर से आये, बहुर दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर्श सहज।

गोविंद गाये नित ध्याय परवान सोई आया जप ताप संजम हर हर निरंजन गोविंद तन संग चाले बिनवंत नानक कर दया दीजै हर रतन बांधो पाले मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मिले परमा।

गोविंद गोविंद गुरमत ध्याये सादर गए पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया नाम पौड़ी। तू आपे ही

सतसंगत सतगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर गुण बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लोगिया। श्लोक महला चौथा। हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय हौमे ममता नाप होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अंदिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वरसदा हर जेवड अवरना कोए जो हर प्रभ पावे सो थिए जो हर प्रभ करे सो होए कीमत किने न पाया बेअंत प्रभु हर सोए नानक गुरमुख हर सा लाहिया तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाते सब मंग मंगना सेवक ठाकर सब तू है तू है गुरमति हर चंग चंगना सब कहो मुखो रिखी केस हरे जित पावे सब फल फलना। श्लोक महला चौथा। हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान जो इच्छे तो

रंग परंग सिस्त सब साजी, बहु बहु विद पांक उपावणी, सब तेरी जोत ज्योति विच वरते, गुरमती सुदै लावणी, जिन हो है दयाल तिन सतगुर मेले, मुख गुरमुख हर समझावणी, सब बोलो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख भुख सब ले जावणी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उर्धार, विच संगत हर प्रभु वरतदा, बुज्जो शब्द विचार, मन हर हर नाम से आया, दिखौ मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम ना चेत्यो, तिन जुए जन्म सभार, गुर तुठे हर

पहला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल जुग करनी सार मत गुरु मत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसे एकंकार जिन गुरमुख सुन हर मन्या जन नानक तिन जयकार पौड़ी राम नाम वखर है उत्तम हर नायक पुरखा मारा हर खेल किया।

सब चवो मुखो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा। हमरी जेबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपे ए आणिया हर तुम बड अगम।

गुरु सतगुरु मेल दयाल, गुरु सेवा हर हम पाया, हर हुआ हर कृपाल। सब आशा मन सा विसरी, मन क्यू का आल जंजाल। गुरु तुखे नाम दृढ़ाया, हम किए शब्द निहाल। जन नानक अतुट तन पाया, हर नामा हर तन माल। पौड़ी हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सब ऊपर वडे वडौना। जो त्यावे हर अपरंपर, हर हर हर त्याए हरे ते होना। जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना। तुम जैसे हर पुरख जाने, मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना। सब त्यावो आद सते, जुगाद सते, प्रतक सते, सदा सदा सते। जन नानक दास दसोना। श्लोक महला चौथा। हमरे हर जग जीवना, हर जप्यो हर गुरु मंत्र। हर अगम अगोचर अगम हर, हर मिलिया आए अचिंत। हर आपे कट कट वर्तदा, हर आपे आप बेअंत। हर आपे सब रस भोगदा, हर आपे कवला कंत। हर आपे पिखिया पाईदा, सब सिस्त उपाई जी जंत। हर देवो दान दयाल प्रभ, हर मांगे हर जन संत। जन नानक के प्रभ आए मिल, हम गावे हर गुण चंत। महला चौथा। हर प्रभ सज्जन नाम, हर मैं मन तन नाम शरीर। सब आशा गुरमुख पूरिया, जन नानक सुन हर तीर। पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है, हर पुरख निरंजन मौला। जो जपदे हर हर दिन सुरात, तिन सेवे चरण नित कौला। नित सार संभाले सब जी जंत, हर वक्त है निकट सब जौला। सो बुझे जिस आप बुझाए सी, जिस सतगुरु पुरख प्रभ कौला। सब गावो गुण गोविंद हरे, गोविंद हरे, गोविंद हरे। गुण गावत गुणी समौला। श्लोक महला चौथा। सुतिया हर प्रभ चेत मन, हर सहज समाज समाए। जन

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड़ पागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर सब दी गोविंद गजिया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वाहन जिना सतगुरु मन्या जन नानक वड पागल हन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किछ वखर होए सो वरनी है तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चटसाल है जिस हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सत गुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सत गुरु भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पैनायन जिन हर मन वस्याए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन भाए। मैला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिनको सदा सदा जिना सतगुर मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम दियाया गुरमती तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुर बचन से आया जिना अगम हर ते ठाकुर सेवक रल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत विशेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम है सब खेल कियो रंग रीत हर निकट वसे जग जीवना परगास कियो गुरमीत हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत जन नानक नाम ते आया गुर बचन जप्यो मन चीत। महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसै वड पाग गुरपुरे देखा लिया नानक हर लिवलाग। पौड़ी तन तन सुहावी सफल करी।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाने तिन विटों नानक वारिया जो जप दे हर निर्वाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुरुदे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले।

पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायन एक ना मेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरु बचन सभा गै लीता, दुख दालद सबो लह गया जानाओ गुरु हर दीता। सब सेवो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो, जिन जगत उपाय सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हों मैं रोग है परम फूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग बजाए मिल सतगुरु।

बिन नहीं कोई, कट कट अंतर रव रहा, जप्यो जन कोई, सगल जपो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरुमुख मिले से सज्जना, हर प्रभ पाया रंग, जन नानक नाम सलाए तू, लुड लुड दर गए।

रामा राम राम मैं अंक न पाया, हम बार कृत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राय।

जन को कृपा करो मधुसूदन, हर देवो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा, गुर के पग सिमरो दिन राति मन हर हर हर बसिया, हर हर हर कीरत जग सारी सस चंदन जग ससिया, हर जन हर हर हर निवलाई सब साकत खोज पया, ज्यो किरत संजोग चलियो नर निंदक पग नागन छो जलिया, जन के

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन से, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतत सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुखों में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल नावाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नाथ थई, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुड थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन।

हर सेवा से काल जोए न साके, चरनी आए पवे हर जाने, जा को राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पहकाने, ताको कोई अपर न साके, जाकी भगत मेरा प्रभ माने, हर के चोज विदान देख जन, जो खोटा खरा इक निमक पछाने, ताते जन को अनंद भया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछताने, तुम हर दासे समरथ स्वामी, इक मांगो तुझ पासो हर दाने, जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मोहे हर चराने।

अलम करंद चरण कमल स्यों मन फेर फेर री जय रहाओ। आन जला स्यों काज न कछुए हर बूंद चातक पौ दी जय। बिन मिलबे नाही संतोखा।

सफल सफल सफल दर्शने परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिए हीरे हीर विदाई।

सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी जोग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सत्संगी कल्याण महला।

योग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तट देते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहां करो तर्क त्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे।

गोविंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवा। मन तन जापिए भगवान गुरु पूरे सो प्रसन्न भये, सदा सुख कल्याण रहाओ सर्व कार्य सिद्ध भये। गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे, नाथिया दुख काल कर कृपा प्रभु मेरिया, करो दिन रहन सेव। नानक दास शरणागत।

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ साध संग जपनि संग जम काल तिसना खावनो मुक्त जुगत अनेक सुख हर भगत लवे ना लावनो प्रभ दर्श लुबद दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदिया इको अंकार सतगुरु प्रसाद रामा राम रामो।

जय। हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दी जय। राम नाम तुल और ना।

हम निर्गुणी मनूर अत सीखे मेरे सतगुर पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछे नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के

जन हर भगवान दिखी जय साकत सूत बहु गुरजी भरिया क्यों कर तान तनी जय संत सूत किस मिकते नाही साकत संग न की जय सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवि जय अंतर रतन जवे हर मानक गुर कृपा ते ली जय मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

कृपा कृपा कर साध मिलावो जग सम्मन को थम दीजे बसदा तले तले सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अप उत्तम हो वो सब शिष्ट चरण तल दी जय गुरमुख जोत

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर न पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड धर्म राय का दी जय। सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छीजे। अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पूजे ना तोल तुली जय। तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू

मन तन अर्थ करो सब आगे रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ करोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म देव देव है आत्म रस लागे पूज करी जय।

जो पीप पलाश खाई ली जाए सब नर में प्राणी उत्तम होवे राम नाम में बास बसी जाए निर्मल निर्मल कर्म बहु कीने नित साखा हरी जड़ी जाए परम फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया बेकार बास जगदी।

ज्यो सूरज किरण रविया सर्ब ठाई, सब पट पट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, ज्यो चकवी देख सूरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख काढ़े अमृत पी जय। साकत स्वान कहिए बहु लोभी, बहु दुर्मत मैल भरी जय। आपन स्वाय करें बहु बाता, तिना का विसाहु क्या की जय। साधु साध शरण मिल संगत, जित हर अस्ताड कदी जय। पर उपकार बोले बहु गुनिया, मुख संत भगत हर दी जय। तू अगम दयाल दया पत दाता, सब दया तार रख ली जय। सर्व जी जग जीवन एको, नानक प्रतपाल करी जय। कल्याण महला चौथा, रामा हम दासन दास करी जय। जब लग सास हुए मन अंतर, साधु तूर कवि जय रहाओ। शंकर नारद शेख नाग मुन, पूर साधु की लोची जय। पवन पवन पवित्र हो है सब, जय साधु चरण धरी जय। तज लाज अहंकार सब तजिए, मेरे साधु संग रही जय। कर्म राय की कान चुकावे, दिख दुबदा काड कटी जय। परम सुखे बहु उबसुक कही है, मिल साधु संग हरी जय। आते बिलम पल टिल न की जय, जय साधु चरण लगी जय। राम नाम कीर्तन रतन वथ, हर साधु पास रखी जय। जो बचन गुर सत सत कर माने, इस आज्ञा पाठ करी जय। संतो सुनो सुनो जन।

जेवद भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जय सब माया मोह बिकम जग तरिए सहजे हर रस पी जय माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै पची जय अज्ञान अंधेर महा पंच बिखरा अहंकार पार लग ली जय नानक राम रम रम रम रम रामे ते गप की जय सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए राम नामे रले मिली जय छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज करवाती विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पत पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मन्ने सब कोए बिन नाव में पत कब होना होए अवर सियाण तो सगली पाज जय बख्शे तै पूरा काज रहाओ नाओ तेरा तान नाओ दीवान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे मान।

ना ही मुख मासा। सतगुरु मिले निरंजन पाया, तेरे नाम है निवासा। औदू सहजे तत विचार, जाते फिर ना आवो सहसार। रहाओ जाके कर्म नाही, धर्म नाही, नाही सुचमाला। शिव ज्योत कन्नो बुद्ध पाई, सतगुरु रखवाला। जाके बरत नाही, नेम नाही, नाही बकबाई।

सुर्ख समझाई संत को परम संत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला कांसा कहया दर परवान दिख अमृत दो संतर जान क्या कही है सर्वे रहा समाए जो किछ वर्त

परवान ताको समझावन जाइए जे को भूला होई आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाव पर भाते सब त्याइए छोड़ो दुनी परीता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तत्पर शब्द निवारिया मगर उठा साबास जा तू राखे राख ले साबत हो वै रास ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत दे लगो पग तेरे रहाओ मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार कट कट एक वखाणी है कहो न देखिया जाए फोटो पूठो रालिए बिन नावे पच जाए जा तू मिले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाए प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा गलफाही सिर मारे तंदा आशा आवे मनसा जाए पुरजी ताणी किछ ना बसाए जागस जीवन जागन हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो न बूझे अंग न सूझे ओंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर

छोड़ न पावे जब लग दूजी राई एन इस जिया देख संभाले सुख दुख पूर्व कमाई कर्महीन सच पीखिया मांगे नानक मिले वडाई प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया अधिक बको तेरी लिव रहिया फूल चूक तेरे दरबार नाम बिना कैसे आचार ऐसे झूठ मुठे संसारा निंदक निंदे मुझे प्यारा रहाओ जिस निंदे सोई बिद जाने गुर के सबदे दर निशाने कारण नाम अंतर्गत जाने जिसनो नगर करे सोई बिद जाने मैं मैलो उजल सच कोए उत्तम आख ना ऊंचा होए मनमुख फूल महा बिकाए गुरमुख होए सोरा चैनाए अंधो बोलो मुग्ध गवार हीनो नीच बुरो बुरियार नीदन को तन नाम प्यार यो तनसार होर बिख्याचार उस तक निंदा शब्द विचार जो देवे तिसको जयकार तू बक्से जात पत होए नानक कहे कहा वै सोए अरवाती महला पहला खाया मैल वधाया पेंदे कर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान बाबा ऐसा बिखन जाल मन वासिया बिबल चाग सहज परगासिया रहाओ बिख खाना बिख बोलना

पहला गीत नाद हरख चतुराई रह सुरंग सुरमाइश पाई तैन खां चीत न पाई साथ सहज सुख नाम वसाई क्या जाना क्या करे कहावे नाम बिना तन किसना सुखावे रहाओ जोग विनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोविंदा कीरत करम कार निज संदा अंतर्गव तो राज रविंदा।

कुमारी त्रिपुट तरंग तट बिचारी अकथो कथो क्या मैं जोर भगत करी कराहे मोर अंतर वसै चूके मैं मोर किस से भी दूजा नहीं होर गुर का शब्द महारस मीठा ऐसा अमृत अंतर दीठा जिन चाख्या पूरा पद होए नानक प्राप्यो तन सुख होए परवाती महला पहला अंतर देख शब्द मन मानिया और न रामजन हारा एनस जिया देख संभाले तिस ही की सरकारा मेरा प्रभु रांग कणो अत रूड़ो दीन दयाल प्रीतम मनमोहन अत रस लाल सगूड़ो रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना सो विधि जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल बिगासे सस्कर सूर समाया काल बिंदु से मन सामन मारी गुर प्रसाद प्रभु पाया अति रस रंग चलू ले राती दूजा रंग ना कोई नानक रसम रसाए राते रब रहया प्रभु सोई परवाती महला पहला बारे में रावल खप जावे चहो छह में सन्यासी योगी का पड़िया सिर खूथे बिन शब्द गल फासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हथ हस्त मैं पीछिया जाची एक पाए लिवलागी रहा ब्राह्मण वाद पड़े कर क्रिया करनी कर्म कराए बिन बूझे किस सूझे नाही मन मुख विच्छड़ दुख पाए शब्द मिले से सूचा चारी साची दरगे माने हम दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म कर्म सुख संजम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुर मिले मिलाया दुख पराशत काल नसे परवाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर की रत कर तारी कहां करे बपुरा जन बरते गुरमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना रहाओ गुर उपदेश साथ सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रत्न पदार्थ खोजत गुरमुख लही है चीने ज्ञान त्यान तम साचो एक शब्द लिवलावे निरालंब निरहार नहीं केवल निरपौता लीलावे सायर सपत करे जल निर्मल उल्टी नाम चरावे बाहर जातो ठाक रहावे गुरमुख से समावे सो गिर ही सो दास उदासी जिन गुरमुख आत पछानिया नानक कहे अवर नहीं दूजा सात शब्द मन मानिया राग परवाती महला तीजा चौपदे इको अंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख बिरला कोई बूझे शब्दे रहा समाय नाम रते सदा सुख पावे साथ रहे लिवलाई हर हर नाम जपो जन भाई गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे हम दिन हर रस रहा अघाई रहा हम दिन पगत करो दिन राती इस जुग का लोहा भाई सवा जन निर्मल मैल न लागे सच नाम सितलाई सुख सिगार सतगुरु दिखाया नाम वड्डी वड्याई अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे सदा हर सेवो भाई आपे करता जिसनो देवे तिस वसे मन आई नानक नाम ते आए सदा तू सतगुरु दिया दिखाई परवाती महला तीजा
निर्गुणी आरे को बख्श ले स्वामी, आपे लहो मिलाई, तू बेअंत तेरा अंत न पाया, सब दे देहो बुझाई, हर जियो तुद विट्टों बल जाई, तन मन अर्पी तुद आगे रातो, सदा रहा शरणाई रहाओ, अपने पाने विच सदा रख स्वामी, हर नामो दे वड्याई, पूरे गुरते पाना जापे, हम दिन सह समाई, तेरे पाने पगत जे तुद भावे, आपे बख्श मिलाई, तेरे पाने सदा सुख पाया, गुर कृष्णा अग्न बुझाई, जो तू करे सो होवे करते, अवर न करना जाई, नानक नावे जेवड़ अवर न दाता, पूरे गुरते पाई, सरबाती महला तीजा, गुरमुख हर साल आया जिन्ना, तीन साल आहे हर जाता, विच्चों परम गया है दूजा, गुर कै शब्द पछाता, हर जियो तू मेरा इक सोई, तुद जपी तुद ऐसा लाही, गत मत तुझते होई रहाओ, गुरमुख सालान से साध पायन,

ना तो हुआ न होगे। हर जी ओसना तेरी सरनाई, ज्यो पावे त्यों राखो मेरे स्वामी, ए तेरी वड्याई रहाओ। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिनकी करें प्रतपाल, आप कृपा कर राखो हर जियो, कोई ना सके जमकाल। तेरी सरनाई सच्ची हर जियो, ना हो कटे न जाए, जो हर छोड़ दूजे पाए लागे, ओ जम्मे ते मर जाए। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिना दुख पूख किछ नाहि, नानक नाम सलाहे सदा तू, सच्चे शब्द समाए। परवाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा ते आओ, जब लग जी प्राण। गुर शब्दी मन निर्मल होआ, चूका मन अभिमान। सफल जन्म तिस प्राणी केरा, हर के नाम समान। मेरे मन गुर की सिख सुनी जाए, हर का नाम सदा सुख दाता।

होई गुर के शब्द कमल पर गासिया सौ में दुर्मत खोई सब नाम एक को सच वरते विरला बूझे कोई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वस्या विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुर अपनी विटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु न सेविया बिरथा जन्म गवाया नजर करे ता सतगुरु मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग से आया प्रभाती महला तीजा आपे पांत बनाए बहुरंगी शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेख करे कराए सर्व जियानो रिजक दिया कली काल में रव्या राम कट कट पूर रहा प्रभे को गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा गुप्ता नाम वर्ते विच पल जुग कट कट हर पर पूर रहा नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया जो गुर शरणाई पग पया इंद्री पंच पंचे वस आने खिमा संतोष गुरमत पावे सो तन तन हर जनवड पूरा जो कह बैराग हर गुण गावे गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे कर आचार बहु संतोष संचय जो किछ करे सो नरक परे एक को शब्द एक को प्रभु वर्ते सब एक स्ते उत्पत्तल है नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाए पूरा पाग हो गए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाए रहा अमृत नाम कोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नजर करे गुर के चरण मन माए वसाए दुख अनेरा अंदरों जाए आपे फाचा ले मिलाए गुर की बाणी सो लाए प्यार एथे ओथे एव आधार आपे देवे सृजनहार सच्चा ननाए अपना भाणा सोई तगत सुगड़ सुजाना नानक तिसके सब कुर्बाना प्रभाती महला चौथा विपास एक ओंकार सतगुरु प्रसाद रसक रसक गुण गावे गुरमत लिव उन मन नाम लगान अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुर्बान हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम रिद अंतर भायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम बखान कित विद क्यों पाई है प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान सत संगत में हर हर वस्या मिल संगत हर गुण जान वड्डे पाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक को गुर कृपा भारी हर नाम दियो खिन दान प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरमुखर बोले सब रैन संभाले हर गाल हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करें प्रभु हर पाल मेरा मन साधु तूर गवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुरमीठा गुर पद कारे हम बाल रहाओ साकत को दिन रैन अंधारी मोय फाते माया जाल खिन पल हर प्रभ हृदय नवस्यो ऋण बादे बहु विदबाल सत्संगत मिल मत बुध पाई हों छूटे ममता जाल हर नामा हर मीठ लगाना गुर की ये शब्द निहाल हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल
दिख पौ जल डुबदे काड लियो प्रभ गुरु नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा धारी गुण गाए रस प्रतीक दावत सुनत बहु पे मुक्ते जिना गुरमुख खिन हर पीक मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस जीक रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक उजल टीक हर जन शोभा सब जग ऊपर ज्यो विच उडवा सस पीक जिन हर हृदय नाम नौस्यो तिन सब कारज फीक जैसे सिगार करे देह मानुख नाम बिना नकटे नकीक कट कट रुनैया रमत राम राय सब वर्ते सब मैं एक जन नानक को हर कृपा धारी गुरु बचन ते आयो करी नीक। प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभधारी मुख हर हर नाम हम कहे पतित पावन हर नाम ध्यायो सब किल बिख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ काया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगट्यो कर मंदर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उद्याने ते साकत मूड मुहे जो मृग ना भी बसे बास बचना प्रम प्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर करयो हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभु वडपा सतगुरु बचन सुखाने हीरे हर तारी हर प्रभु कृपा मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा हर हर दान दियो गुरु पूरे हर नामा मन तन बसा रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जप शोभा गुरमुख करपफा हलत पलत जन पै सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनपौ हर हर हर लिव लागी हर उर्धार्यो गुर निमखफा कोट कोट के दोख सब जन के हर दूर किए एक पलफा तुमरे जन तुम ही ते जाने तब जान्यो जन से मुखा हर हर आप करयो हर जन में जन नानक हर प्रभ इकफा। प्रभाती महला चौथा। गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जपबा तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा दिख दुख दे बां दे कडबा जप मन राम नाम अर भांबा उपजंप उपाय ना पाये कतहु गुरपूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हौ मैं बिख्या नित लोभ लुवाने उत कलत मोह लुभबा तिन पग संत न सेवे कबहु ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम सरनवा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा। सत्ता पहला। प्रभाती विपास करताल महला चौथा। इको अंकार सतगुरु प्रसाद। जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ अठ न जान
सुन मन गुरुमुख पावे मान, जप मन परमेश्वर प्रधान, खिन खोवे पाप कुटान, मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार। सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रच जोत निवाजिया, सेजा तरत बर्तन को पानी, निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते, हरख सोगते रह निरारा, का तू पावे प्राण पते रहाओ। काचड़ पोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटंग सगल बनाए, रिजक समाहे जल थल मीत, सोहर सेवो नीता नीत। कहां सखाई जय कोई न होवे, कोट अपराध इक खिन में धोवे, बात करे नहीं पछोतावे, एक का बक्स फिर बहुर ना बुलावे।

गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मुरार। करवाती महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा। नाम तेरा जन के पंडार, गुण गावे प्रभ दर्श प्यार। तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छुड़ाई रहाओ। जो जन राता प्रभ के रंग, तिन सुख पाया प्रभ के संग। जिस रस लाया सोई जाने, पेक पेक मन में हैराने। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा के हृदय वस्या प्रभ सोए। सोई नेचर आवे न जाए, हम दिन प्रभ के हर गुण गाए। ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार। कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा। करवाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद। हाथ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कलमल जाहे। इस गुर की हम चरनी पाहे, सुमत देवो संत प्यारे। सिमरो नाम मोहि निस्तारे, राव जिन गुर कहया मार्ग सीधा। सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कै सदा बल जाइए। हर सिमरन जिस गुर ते पाइए, बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया। जिस प्रसाद मोह नहीं माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया। तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया, महामुक्ते किया ज्ञानी। गुर पूरे की अटक तवानी, पार ब्रह्म नानक गुरुदेव। वडे पाग पाये हर सेव, करवाती महला पंजवा। सगले दुख मिटे सुख दिए, अपना नाम जपाया। कर कृपा अपनी सेवा लाए, सगला दुर्त मिटाया। हम बारिक शरण प्रभ दयाल, अवगण काट किए प्रभ अपने। राख लिए मेरे गुरु गोपाल, राव पाप पाप बिन से किन भीतर। तय कृपाल गुसाई, सास सास पार गम आरादी। अपने सतगुरु के बल जाई, अगम अगोचर बेअंत स्वामी। ताका अंत ना पाये, लाहा खाट होइए तनवंता। अपना प्रभु ध्याइए, आठ पैर पार ब्रह्म त्याई। सदा सदा गुण गाया, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ। पार ब्रह्म गुर पाया, करवाती महला पंजवा। सिमरत नाम किल बिकसग नासे, सच नाम गुर दीनी रासे। प्रभ की दरगे शोभा वंते, सेवक सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे भाई, सगले रोग दोष सब बिनसे।

कलेश जो तिस पावे सो फल होस तिस गुर को हो सब बल जाई जिस प्रसाद हर नाम दियाई ऐसा गुर पाए वडवागी जिस मिलते राम लिवलागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल घटा के अंतर जामी आठ पहर अपनी लिवलाए जन नानक प्रभु।

गुर पूरा पाये वड पागी, दर्शन को जाये पुरबान रहाओ। चिलगुठ में तो शब्द संतोख, नाम आराधन हो आजोग, साध संग हो आप्रगास, चरण कमल मन माय निवास। जिनकी आकिन लिया राख, प्रभ पूरा अनाथ का नाथ। जिसे निवाजे कृपा धार, पूरन कर्मता के आचार। गुण गावे नित नित नित नवे, लख चौरासी जोर न भवे। इहा उहा चरण पुजारे, मुख उजल साचे दरबारे। जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, कोट मदे को विरला दास। जल तल मैयल

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पहल तुरपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भई आस, सर्व कल्याण सुख मन बूठे।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिन सुजाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु ना जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

सेवा सुरत शब्द विचार, जप तप संयम हो मैं मार, जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख मेटा हारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आगे राख्या, नानक कहे महारस चाख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किस सोजी नाही, पर में पूला बूड मरे, अंधा परया पर कोवे, अंतर की मल कदे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, ज्यो बाजी गर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर अवगुण मोही रहाओ, माया तंदा तावनी, दुर्मत्कार विकार।

बाद ओ परम पूले मरो न कोई सतगुरु से सदा सुखोई दिन सतगुरु मुक्त किने न पाई आवे जाए मरे मर जाई तो शरीर है त्रै गुण तात किसनो व्यापे शोक संता।

क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जन्म एजादे मती ब्रज व्यास पराया तिनका जग अठारे काए चिरतना चले चलाया गणत न गनी हुकम पछाना बोली पाए सुवाए जो किस वर्त तुरे सवाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलपत लेप कदे न लागे सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चिते नाही दुख लागे पछताई आपे करे कराए करता जिन ए रचना रचिए हर अभिमान ना

गुर का शब्द कर्म है सार, हर जस कर्म धर्म पत पूजा, काम क्रोध अग्नि में पूजा, हर रस चाख्या तो मन पीजा, प्रणवत नानक अवर न दूजा, प्रभाती महला पहला, राम नाम जप

कण शीतल गुरु बूझ बुझाई, प्रभ निवाजे किन कीमत पाई, कहो नानक गुरु बूझ बुझाई, नाम बिना गत किने न पाई, प्रभाती महला पहला, एक तुर बख्श लय गुरु पूरे, सच्ची बनत बनाई, हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई, झूठी गुरमति चतुराई, बिन सत बार न लागे काई, रहाओ मन मुख को दुख दर्द व्यापस, मन मुख दुख न जाई, सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल ले शरणाई, मन मुख ते अब पगत न होवस, हौ मैं पचे दीवाने, इहो मनु आखिन ऊब प्याली, जब लग शब्द न जाने, भूख प्यासा जग पया, तृप्त नहीं बिन सतगुर पाए, सहज सहज मिले सुख पाए।

परख खजा में पाया। जात वर्ण से पै अतीता ममता लोभ चुकाया। नाम रते तीर्थ से निर्मल दुखों में न चुकाया। नानक तुम के चरण पखाले।

ज्ञान रतन प्रगट होए, मन मुख मूल ना जाननी, मानस हर मंदर ना होए, हर मंदर हर जियो साजिया, रखिया हुकुम सवार, तुर लेख लिखिया सो कमावना, कोई ना मेकनहार, सबद चीन सुख पाया, सच्चै नाए प्यार, हर मंदर सब देशो होना, कंचन तोट अपार, हर मंदर एहो जगत है, गुरबिन कोरंतार, दूजा पाओ कर पूज दे,

पवित्र पावन सृजन निर्मल हर के नाम समाए, हर मंदिर हर का हाथ है रखिया शब्द सवार। इस विच सौदा एक नाम गुरमुख लैन सवार, हर मंदिर में मन लोहत है मोहया दूजे भाई। पारस पे कंचन भया कीमत कही ना जाए, हर मंदिर में हर वसे सर्व निरंतर सोए। नानक गुरमुख बन जिए सच्चा सौदा होए, प्रभाती महला की जा तय पाए जागे सृजन जागरण करें। होमे मेल उतार सदा जागे कर अपना राखे, पंच तस्कर का डैमार। मन मेरे गुरमुख नाम ध्याए, जित मार्ग हर पाए मन से ही कर्म कमाए। रहाओ गुरमुख शैल तुम उपजे दुखों में विच्चों जाए। हर नामा हर मन वसे सहजे हर गुण गाए, गुरमति मुख सोने हर राख्या उधार। ऐसे ओके सुख गणा जप हर हर उतरे पार। होमे विच जागरण ना हो वही हर पगत न पवई थाए। मन मुख दर टोई ना लहे पाए दूजे कर्म कमाए। त्रिग खाना त्रिग पहनना जिना दूजे पाए प्यार। दुष्टा के कीड़े दुष्टा राते मर जम्मे होए।

तरह सुहोग विपास प्रभा की मैला पंजवा अष्टपदिया इको अंकार। सतगुरु प्रसाद मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता उर्ज

में काला अंतर कपट फिरे बेताला वर्मी मारी साथ न मुआ प्रभ सब कुछ जाने जिन तू किया कुंवर काप गेरी के बस्तरा अपदा का मारिया देते नस्ता देश छोड़ पर देश है।

ता गांडा। जब तब संजम नाम समा लिया, अपने ठाकुर नगर निहा लिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई। जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल, जन्म जन्म के मिटे विताल। होम जग उर्द तप पूजा, कोट तीर्थ स्नान करीजा, चरण कमल निमख हृदय धारे, गोविंद जपते।

सर्व कला प्रीतम भरपूर मात पिता हर प्रीतम नेरा मीत साजन भरवासा तेरा कर गह लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विपास करवा की बाणी भगत कबीर जी की।

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काशी अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया

रतन लाल नामा साथ समायला करभासी अकुल पुरख इक चलते उपाया कट कट अंतर ब्रह्म

हृद अंतर कर तलकाती। ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद चिरामंग, क्रूर दिष्ट रता निस्वादंग रहाओ। नित प्रत स्नान शरीरं, दो तोती कर्म मुख खीरं। हृदय चुरी संध्यानी, पर दर्भ हिरन की बानी। सिल्पू जस चक्र गणेशं, निस्जाग से पगत परवेशं। पग नाचुस चित अकर्मं, एलं पट नाच अधर्मं। मृग आसन तुलसी माला, कर उजल तिलक कपाला। हृदय कूर कंठ रुद्राथं, रे लंपट कृष्ण अवाखं।

सिमर राम सिमर ए है तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब सा।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार, बिनसत न लगे बार पूरे समगात है। रहा सगल परम डाल।

हाथ है। जय जावंती मेला नामा। रे मन कौन गत होए है तेरी, एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान।

फलम तस्य जन्मसे जावद् ब्रह्मणा विन्दते सागरं संसारस गुरु प्रसादी तरह के।

विनोद सुत कतंच भात मीट हित बंध कतंच मोह कुटुंबते कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत रहं।

दिसै दुखम थान बसंत पूछै मैं सिमरंत मरणं सदा चिते होवंत आ गया भगवान पुरखै नानक की सास अकर फते।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे मृत मोहन अलप बुद्धन रचंत बनता दिनोद साहन जो बन बे कर्म कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभंत वस्त्र।

ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਜਾ ਚੰਤ ਨਾਨਕੇ ਦੇਨਹਾਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ।

घने दयाल एक भगवान पुरखे नानक सर्व जी कृत पालके अनित चित्तं अनित आशा बहुविध प्रकारं अनित हेतं अहम भं अहम बंधं।

होत अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अघ खंडने ऋत बसंत बैधीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन में मरण रहंत श्रोता

अनाथ नाथे शरण नानक पुरख अचते जिन कला धारो आकाशन बैसंतर काशत बैसतन।

गुसाईन्द्र स्वरूपेण सिमरन सर्वत्र जीवन लब्धं संत संगेन नामित स्वस्थ मार्ग हर भक्तन मस्तं भगनंत शैलं कर्दमं तरंत पपीलकं

त्याल हरे विखम स्थान मन मोह मदर महा असाद पंच तस्करे हित मोह भय।

परम बादम अवर्ते एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन मतन बलवंत बलात् कारणे शरण कमल में भजंत तृण समान भृग।

करें न चित्तो जाका अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग के तो अप जसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए।

नित प्रत हिरे पर दरविश दरकत ढाकिए हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते भय पुनीत पार ब्रह्म बिचारई ऊपर बने अग

जप तप संजम हरक सुख मान महत अर गर्बे मूसन निमख के प्रेम पर वार वार देव सरबे मूसन।

लागी मंदर द्वार से अब क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो भयो जो कीनो करतार तिस दिन दूसर को।

सतगुर क्या करे जो सिखा में चूक अंधे एक ना ला गई जो बांस बजाये फूक। कबीर है गए बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पटंतर ना पूजे।

ऐसा सिमरो नित अमरापुर बासा करो, हर गया बहोरे बित कबीर सेवा को दोए भले, एक संत इक राम।

केवट बिरला संत कबीर राम रतन मुख पोतरी पारख आगे खोले कोई आए मिले गो गाती ले गो महंगे मोल कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाल्यो कटक कुटुंब संदेही में मर गयो बाहर पई न बंब कबीर आखी केरे मात के पल पल गई बिहाए मन जंग

जीवन पे पंछी चले दिसावरी बिरखा सुफल पलंग। कबीर साधु संग पर आपकी लिखिया होए लिलाते, मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवगत काट। कबीर एक कड़ी आदि करी।

कंध कुहारा सिरकड़ा वन के पर लोहारे खरीदा हूँ लोड़ी सो अपना तू लोड़े अंगियार खरीदा इतना आटा।

ओ लबी वाते थप्पर तू मैं क्या होए चिकर डुबे हाथ फरीदा नंदी संत नारायण वड्डी सी मोई आसे।

हंस न को दरा खाए, चल चल गईया पंखिया गिनी वसाए ताले, फरीदा सर परिया पी चलसी थके कवले कले। फरीदा इत सिराने पोए सवन कीड़ा लड़ियो मास, केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास। फरीदा पन्नी कड़ी सवन वी टुटी नागर लाजे, अजराइल फिरिश्ता कै कर नाथी अज। फरीदा पन्नी कड़ी सवन वी टूटी नागर लाजे, जो सज्जन पोए।

फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माहे मंदा किसनो आखी है जा किस दिन कोई ना है फरीदा जे जे नाला कपया जे गल कपे दुख पवन ना इती मामले सहान इती दुख चबन चलन रतन से सुनियर बह गए हेरे मिट्टी पाके जानी चल गए फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडा।

रब खजूरी पक्या माके नहीं वहन जो जो वंजे दीहड़ा तो उम्र हथ पवन फरीदा तन सुखा पिंजर किया तलिया खूंडे काज अजय सुरज न बहुड़ो देख बंदे के पाज काजा करंग तंडोलिया सगला खाया मास एगे लेना मत हो फिर देखन की आस कागा चूड़ ना पिंजरा बसे ता उदर जाहे जित पिंजरे मेरा सौ वसे मास न पिद्दू खाहे फरीदा गोर निमाणी सड करे निकरिया कर आओ।

फरीदा महल सखण रह गए वासा आया तल गोरा से निमानिया बैसन रूहा मल आखी से था बंदगी चलन अज के कल फरीदा मोतैदा बन्ना एवे दिसे ज्यो दरिया वैता अगे दोजक तपया सुनिए हूल पवे कहा इतना नो सब सोजी आई इक फिर दे

जारा काय पटोला पारती कंबल शहरे नानक घर ही बैठिया सब मिले जे नियत रास करे महला पंजवा फरीदा गर्भ।

نکل فقیر داخری سو پائے پور کرم پہلے پہرے پھلڑا

क्या चलै किस नाल इक जा बंदे नाल हन कितना कुत्तियां दे उठाल तू देंदिए सुहाग को सौ तन काई कोर जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान ए सबर का नीह

ए सिर तल उपर पाए मैं जानिया वंस है ताने की संग जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग क्या हंस क्या बबुला जाको नदर करे जे सिख पावे नानका सागो हंस करे सरवर पंखी है परो साही लाल पचास तन लहरी गद किया सच्चे तेरी आस कम को अखर कम गुण कम को मणिया मंते कम को वे सोहा करी जित वस आवे संत निहन को अखर खन गुण जो बामणिया मंते के त्रै तैणी वेश कर तावस आवी संत मत होंगी हो ताण होंदे हो निताणा अण होंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए एक सिक्का ना गालाए सबना मैं सच्चा तनी ह्याओ न कही ठाए मानक सब अमोल वे सबना मन

पर भरो भरपूर सगल घट रहो व्यापे व्यापक देखे जगत जाने कौन तेरी गते सर्व की रक्षा करे आते हर पते अब मासी।

आन नहीं तुम भरे हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसार एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवास हर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उप तो कर लो एक निमक तो भर आन नई समसर उजियारो निर्मल कोट करा छते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर ए जी क्या बसन है हाके बल बल बल बल।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

जय कृपाल हर हर भयो, हर गुरु नानक जिन परसो, से जन्म मरण दूं ते रहो। सत सत हर सत सत सत सत भणिए, दूसर आन न आवर पुरख पुरातन सुनिए। अमृत हर को नाम लेत मन सब।

जय ठाकुर सो परसन भयो सत संगते प्यार हर गुरु नानक जिन परसयो तिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीवान सच सचे पै धरयो सचे सत निवास सच तटावस करयो सत सुन जो सन

मद माता बिचरत बिकले बड़ो अभिमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा ये मीठी जी माए हितानी बलवंत छप करत उपाया देखत सुनत प्रभ।

हर तारन तरन समरथ सवैद कुल समूह उदारन सो चित चेत अचेत जाम सत संगते भरम अंधेर मोयो कत धो मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगलो होतो काज अलग सुख बंदन कोट जन्म कहां दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरो रंच करे खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सो दे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूझन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निक

नानक काट भरम भरे। रे मनमूस बिलावे गर्वत करतब करत महाम भुना, संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन भरमत घुगना। सुत बन का साजन सुख बंदते तासो मो बड़ो सुभना, बोयो भीत अहं मम अंकुर बीतक।

मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंसत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नामिक जगे जानत सुपना। देहे न देहे।

पिता माया मस्त कहाँ लोगारो। छत्र न पत्र न चौर न चावर बहती जात हृदय न विचारो। रक्त न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नांग सिधारो। सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो। कोट न ओट न कोस न छोटा कर्त विकार दो कर झारो। मित्र न पुत्र कल्प साजन सुख उल्टत जात बिरख की छारो। दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो। श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो। प्राण मान दान मग जोहन चीत चीत दे ले ले तारी। साजन सैन में

एहन करत सौध तन जारी करम धर्म संजन सुख सुचनेमा करम धर्म संजन सुचनेमा चंचल संग सगल बिदहारी पथ पंखी बिरख अचतावर बौगंद जौन भम्यो अत भारी सिंपल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पथ सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन चले सब डारी ब्रह्मांडक शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावे इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरण गगन आवत फुन धावत सिद्ध मांस

ग्रस्यो जम दो तन डन मृत मरो है। अंत धोन संकट नरक भुंचत शासन दुख गर्त गर्यो है। प्रेम भगत उधरे सेनान के कर कृपा संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आसमारी। औषध मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मद सर कृष्णा बिन जाय हर नाम चारी। स्नान दान तापन सुच क्रिया

भगत दीन गुण रही सहज आत्म रंग माने, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ और न जाने। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस ना।

करतार करह समरथो। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो, तै धरयो मस्तक।

जातु दृष्ट अमृत धार, काल को खन उतारे तिमर अज्ञान जाए दर्श द्वारे। ओ जो से

सतसंगत सहज सारे जागी ले गुर बिचारे निमरे भूत सदीव परम प्यारे कौ तीर्थ कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुरु पर समुरारे तै तो दर्यो नाम अपारे बिमल जास बिखारे साधक सिद्ध

लैणा जगत गुरु पर सुमुरार। दृष्ट धरत तम हरन दहन अघ पाप परासन। सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन। लोभ मोवश करण शरण जाचक प्रत पालन। आत्मरत संग्रहण कहन अमर।

गरल नाश कन न थियो अम्यो अंतरगत पियो रुद बिगास जागयो अलग पल धरी जुगंतर सतगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम समाज।

नाम परस जन पायो सत प्रगट हो रवलो। दर्शन परसे गुरु कै अब सठ मजन हो। सच तीरथ सच स्नान और भोजन भाव सच सदा सच भाषंत सो है। सच पायो गुरु सबर सच नाम सुगंती बो है। जिस सच संयम वर्त सचे।

हमें दृश्य शुभ करे हरे अघ पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे सदै बल। सदा सुख मन वसै दुख सल

चीजों को एक ओंकार सदगुरु प्रसाद सोए पुरुष वरसाचा जाता एक नाम असल संसार जिन भगत भ

तीरथ रव तिर प्रगण संसारे सात सरोवर मवल सरा। उत्तर दक्षिण पुग अर पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख।

कोई नाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया चित नाम लागते तीस ध्यावे जतन सपी सर मनवसया सोई नाम सिमर गंगे पितामे चरण चित अमृत रसया चित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया नाम चित संसार किरण रहो सुरतर साथे उत्तर दक्षिण पूर्व देश पश्चिम जस भाके जन्म तयो सके अत जित नाम हर दे निवासे सुर नर गण गंधर्व से दर्शन आशा से भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगतवत भव जल हरण गुर अमरदास तय पायो नाम ध्यावे देव कैतीस और साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे जय नाम समाधेव हरक सोग समतर सहारे नाम शिरोमणि सर्वमयि भगत रहे निवधार सोई नाम पदार्थ अमर गुरु तुस दियो करतार सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया जिस धीरज धुर धवल भुजा

हृदय बसो अत हो सोए रस नहीं जातो। मुखों भगत उतरे अमर गुर इत रंग रातो। मस्तक निशान सचो करम पल जोए कर ध्यायो। परसो गुर सतगुरु तिलक सरब इच्छ तिन पायो। चरण तपर सत्यत चरण गुर अमर पवल ले। हथ तपर सत्यत हथ लगे गुर अमर पे। जी तपर सत्यत जी गुर अमर भरजे।

सर्वनि गुर अमर सुनि जै सत्यक सोहियो जित ही बसे गुरु अमरदास निज जगत पिते सत्यक सो सुर जालक भणी जो सुर ने गुर अमर नितें।

सुख लेते नर संसार में अभय पट रिद मद के सत्यक ते नर जालत भणी गुर अमरदास सो पर समरे तई पढ़ियो एक मन धर्यो एक कर एक पछाणियो नैन बैन मोह इते इक भोए थाए न जानियो सुपन इक पर तख इक इकस में नीनो ईस इक अर पंज सिदे तै तीस न कीनो इको जे लाख लखो अलख है इक इक कर वर्ण्यो गुरु अमरदास जालक भणे तू इक लोणे इक मन्यो जे मत गई जय देव जे मत नामे समाणी जे मत लोचन चि

लहर जालता पदार्थ इतने गुरु अमरदास जिथे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद ने।

तात गुण कवण रखाणो, जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो। बोलतो विधाते निर्मयो, सब संगत कुल उधर गुरु अमरदास।

जप तप सत संतोष तिक दर्शन गुर सिखे शरण परे ते उबरे छोड़ जम पुर के लिखे भगत।

जब गुरु देखे सुगदिष्ट नाम करता मुख मेरा। अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो। गुरु अमरदास

रूप करता पुरख सो जाने दिन के छुटियो गुर मिलियो सोई दिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो रहो संत हो तोल सा

सागर को गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन भल उन्हें जो गावे।

एक मन पुरखन अंगन ध्याओ, गुर पर साध हर गुण सद गाओ। गुम गावत मन होए दिगासा, सतगुर पूर जने की आशा। सतगुर सेव परम पद पायो, अदना से अवगत दयायो। किस भेटे दारिद्र न चमते, कल सहार तास गुण जमते। जमपो गुण विमल सुजन।

नाम निरंजन उर धरया, हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे, कब कल ठकर हर दास ने, गुरु राम दास सर अबर भरे, छूटत परवा अमेव अमरा तत, अमृत सरोवर सद भरया, ते पीरे संत करे मन मज्जन, उबजनो सेवा करिया, तिन भव निवार अनभय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे, कौन कर्ण शकुन हर दास तने, गुरु राम दास सर अबर भरे, सतगुरु मत गूढ़ बिमल सत संगते, आत्म रंग चलूल भया, जागा मन कवल सहज परदासा, अभय निरंजन घरे लहा, सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे, कब कल ठाकुर हर दास तने, गुरु राम दास सर अभर भरे, अनुभव अनुमान अकल लेवे लागे, पारस भेटिया सहज घरे, सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत भाए भंडार भरे, मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागा चित लागा संतोष सरे, कब कल ठकुर हर दास तने, गुरु राम दास सर अबर भरे, अबर भरे पायो अपार अंतर धारियो, दुख भंजन आ

प्रेम भरत परवासी तुम पुबली न होते सतगुर शब्द अथाओ अम्यो धारा रस गुत्ते मत माता संग

ज्ञान अमृत फल लागे, गुरु प्रसाद पाए धन ते जन बड़ भागे, ते मुक्त भय सतगुरु सबदे

गुरुजन को सौ तरसन मान अभमान निवारे। जिनको गुरु सौ तरसन सबद लग

सतगुरु नाम एक निव मन जप दृष्टि जन दुख पाप पौखत हो जियो तारण करण छिन मात्र जाको दृष्ट धारे शब्द हृदय विचारे काम क्रोध खोए जियो जीवन शब्द दाता अगम जा

सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाती सबद सार एक लिव लाई है। सुन जाने को तेरा अपारे निर्भव निरंकारे अकथ कथन हारे तुझे बुझाई है।

नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल कौ पारस परस कच कंचना हो चंदना सुबास जास सिमरत अन्तरे जाके दे।

पाँव ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो। सकल खनिस सूर दिन सैल करो फल फूल दियो। सुर नर सपत सम

अमर प्रगाट। कच्चो कंचन भयो शबद गुर सरवण्यो सुनियो, बिखे अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो। लोहो होयो लाल नदर सतगुर।

गुरु गुरु ऐनस जाते दास भट बेनत कहे जो गुरु नाम रिज मैं धरे सो जन्म मरण दो ते रहे गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर कर सच बिचारे गुर करे मन मेरे गुर कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे गुर नैन भैन गुर गुर करो गुरु सत कब नल कहे जिन गुरु न देखो न कियो ते अकथ संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारण तरण समर्थ कलयुग सुनत समाद शब्द जिसके रे सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस्त तैने रे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत

मुख देख गरु सुख पायो पुती जो प्यास पियो सिवन की बंसत सिद को विद मिलायो पूरन भवन ठौर बसोर से बासन सुजो दंज सधायो गोविंद वाल गोविंद पुरी समजलन तीर विवास बनायो गयो दुख दूर।

निस्वासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भांडरो भन दास आस जगत गुरु की पारस भेत परस करो रामदास गुरु हर

त्याग तजो भजो हर ज्ञानियों वचन गुरु रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐनक करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख भजो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर।

मिलत मुन जन रे तरे नारदाद सनकाद हर गुरु मुखे तरे एक नाम लग तजो रस आ

श्री गुरु साहिब सब ऊपर करी कृपा सतयुग जिन धूपर श्री प्रहलाद भगत उधयन हस्त कमल मा

परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु सेव।

हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण भगाए आई ही प्रतीत, प्रतीत ही आई जिन जन के किन को पदवी उच्च भई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिखा गई, अवलोका ब्रह्म भरम सुब छुटका, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटका, दिव दृष्ट कारण करण सत गुरु गुरु सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारण तरण, परताप सदा गुर का घट घट परदास भया।

करें पर भात शुद्ध मन गुरु पूजा विद सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरन। सतगुरु गुरु सेव अलग

तिन तरयो समुद्र रुद्र थिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन बच

निंदनियों भले छलन सबल मलन भंग फलन कान कुर न कलंक बदी डंक चढ़ दल रविंदनियों राम रवण दुर्त दमन सकल भवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद दियो जरम करम मच्छ कच हो बरा।

सच जान मंत्र एह नित बातुर कल्याण लहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन संसार धो होमे का फंद काट साध संग रत जियो देह गे ते सने चित बिलास जगत एओ चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही धार तजनिकार मन

ਆਪੇ ਹੱਥ ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਵੇ ਆਪੇ ਪੰਚ ਸੂਰ ਪਰਗਾਤਾ ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ।

संगत से ती मन खचना किया खेल बड़मेर समासा वाहे गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आ

गुर समरथ गए किरिया धूप बुद्ध सुमत समारन को उन धम दूजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जे साज तो और कथो न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल में भव सागर पार उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है ब्रह्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले उधार।

रव के सुख को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है निर्मल नाम सुधास पर पूर्ण सब त्रंग प्रगट तिन आदर। गहर गंभीर अथायत वर्ण सुबर सदा सब विदरत नागर, संत मराल करे कंतु हल तिन जम प्रास मिट्यो दुख कागर।

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहते ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन गहना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ देख किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाई कृपा।

अंतर्गत तेज पुंसै लोक प्रजा से देखत दर्श भटत भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभते अल्प मूजों कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप

जाके बसीस धर्यो गुर हथे। तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन तरस क्यों ना जगत कोई। आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे। अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखो तुम आपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई, सर्व जी मन ध्यायो। श्री गुरु राम।

पायो सतगुरु नानक भगत करे एक मन तन मन धन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज धारी अगम ज्ञान रस रस हियो गुरु अमरदास।

तन हर परम पद पायो। नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा खुब भगत हर के जुगण, अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन, तिनको अवतार।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिटियो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिटियो जो खिणन। कर्म कर तो दर्श परस पारस फल बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तैं हर परम पद पायो। जय सित सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जय सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जय सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुण बल भण मिल संगत धन धन करो। जय सतगुर लग प्रभ पाइए तो सतगुर सिमरो नरो। जिन

जय तिखत अत होए रहत मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानो, तीनी भगत प्रेम निवलाई। साते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद की।

कहे मथुरा अमृत में मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन सिखो ने सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जग

आए बौरस साल ने सवार दी खटवत मीठे पाए क्यों बाणी पगत सलांदे हर नाम चित लाए मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए तै पगती पगत बहु लोच दे।

0: नाम रतन पर गाथिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्शे फिरे बिन नावे बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सकते कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर के शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे भंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरुमुख अंतर सहज है मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम।

कलत मोह हेत है अंत बेली को न सिखाए, सतगुरु सेवे सो सुख पाए नाम वसे मन आई, नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाई। मनमुख नाम ना चेतनी बिन नाम है दुख रोए, आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए, हों मैं अंतर मैल है शब्द ना काढ़े तोए, नानक बिन नाम है मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करे प्रगास, ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुरु वचन न करे विसास, ज्ञानिया अंदर गुरु शब्द है नित हर लिव सदा विकास, हर ज्ञानिया की रख

बिख का मारण हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए, मिल सतगुरु निर्मल होया, बिख हो मैं गया।

सतगुर पुरख निर्वैर है नित हृदय हर लिवलाए निर्वैर है नाल वैर रचाएंदा अपने कर लूकी लाए अंतर क्रोध अहंकार है अन्दिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित पौंक दे बिख

सतगुर सेवन आपना गुर शब्दी विचार सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार एथे ओथे मनियन हर नाम लगे व्यापार गुरमुख शब्द सियाप दे तित साचे दरबार सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

ए मोह माया सब पसरिया नाल चले नांति वार बिन हर शांत ना आवे किस आगे करी पुकार वड पागी सतगुरु पाया बूझया ब्रह्म विचार तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर उरदार असी खत्ते बहुत कमाम दे अंत ना पारा वार हर कृपा करके बख्श लियो हों पापी वड गुनहगार हर जियो लेखे वार ना आवे तू बख्श मिलावन हार गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल कट विकार जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए जन्म मरण नहि चल भये गुरमुख नाम ते आए गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लवन नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन मनमुख नाम ना चेत्यो तिग जीवन तिग वास जिसदा जित्ता खाना पहनना सो मन ना वस्यो गुणतास ए मन शब्द ना पेदियो क्यों होवे करवास मन मुखिया दोहागनी आवन जान मोयास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास हर हर नाम उरधारिया हर हृदय कमल प्रगास सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास शब्द मरे सोई जन सिजै बिन शब्द मुक्त न होई पेख करे बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई नानक बिन सतगुरु नाव ना पाई है जे सो लोचे कोई हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई अपड़ कोई न सकई जे सो लोचे कोई मुख संजम हच्छा ना होवई कर पेख पवे सब कोई गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए वसै गुर शब्द विचार है कोई नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोए माया मोह दुख सागर है बिख दुत्तर तरिया ना जाए मेरा मेरा कर दे पच मोए हों मैं करत विहाय मन मुखा उरवार न पार है आद विच रहे लपटाए जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु न जाए गुरमती ज्ञान रतन मन वसे सब देखिया ब्रह्म सुवाए नानक सतगुरु बोझ वड पागी चढ़े ते पौजल पार लंगाए बिन सतगुरु दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार गुर कृपा ते नाव मन वसे सदा रहे उरधार तिसना बुझे तिपत होए हर के नाए प्यार नानक गुरमुख पाये हर अपनी कृपा धार बिन शब्द जगत बर लिया कहना कछु न जाए हर रखे से उबरे शब्द रहे लिव लाए नानक करता सब कित जानदा जिन रखी बनत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण बिख माया मोह न मिटई विच होमे आवन जान सतगुर मिले मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सतगुरु बाण माया मोह बहु चित्व दे बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्थिर नाथी है मर बिनस जाए खिनवार वड पाग होवे सतगुर मिले होमे तजै विकार हर नामा जब सुख पाया जन नानक शब्द विचार बिन सतगुरु भगत न होवे ना

नानक गुरमुख मन से लुजै जिना सतगुरु पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार ओए मानस जून न आखियन पशु टोर गावार ओना अंतर ज्ञान न ध्यान है हरसो प्रीत न प्यार मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार जीव दया नो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार नानक गुरमुख सोहने सच्चे दरबार हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल गुरमती हर पाया माया मोह पर जाल हर मंदर वस अनेक है नव नाम समाल तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान किलविक पाप सब कटिए हो मैं चुके गुमान गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय तह जाओ एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए सतगुर विच वडिया वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहारे जाओ से दाड़िया सचिया जे गुर चरनी लगन अंदिन सेवन गुर अपना अंदिन अनदरहन नानक से मुह सोहने सच्चे दर दिसन मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोले सच कमाए सच्चा शब्द मन वस्या सतगुरु माहे समाहे सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे सच्ची दरगे बैसना सच्चे माहे समाए नानक बिन सतगुरु सच ना पाईए मन मुख भूले जाए बाबी हा प्रयो प्रयो करे जल निद प्रेम प्यार गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार तिस चुके सहज उपजे चुके कूप पुकार नानक गुरमुख सांत होए नाम रखो उरदार बाबिया तू सच चो सच्चे सौ लिवलाए बोलिया तेरा थाए पवे गुरमुख होए अलाए शब्द चीन तिक उतरे मन लै रजाए चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवे सह चुबाए जल ही ते सब उपजे बिन जल प्यास न जाए नानक हर जल जिन पिया तिस भूख न लागे आए बाबी हा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुवाए सब किस तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए आप पछाणे प्रीतम मिले उठा छह बरलाए चिम चिम अमृत वरसदा तिसना पुख सब जाए फूक पुकार न हो वही ज्योति ज्योत मिलाए नानक सुख सवन सुहागणी सच्चे नाम समाए तुरो खसम पेजिया सच्चे हुक्म पठाए इंद वरते दया कर गूड़ी छह बरलाए बाबी हे तन मन सुख होए जा तत बूंद मोह पाए अन तन बहुता उपजे तरती शोभा पाए अंदिन लोक भगत करे गुर कह शब्द समाए आपे सच्चा बस लय कर कृपा करे रजाए हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द समाए पैका सह सिगार करो सच रहो लिव लाए नानक नामो मन वसे हर दरगे ले छड़ाए बाबी हा सगली तरती जे फिरे ऊट चढ़े आकाश सतगुर मिले जल पाईए चूके भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किस तिसके पास बिन बोलिया सब किस जानदा किस आ गए की चै अरदास
ਨਾਨਕ ਕਟ ਕਟ ਏਕੋ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ, ਹਰ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਪਰ ਫੜੈ, ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਏ। ਸਬਦੇ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਏ, ਹਰ ਬੁੱਠੈ ਮਨ ਤਨ ਪਰਫੜੈ, ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆ ਹੋਏ। ਵੱਡੜੈ ਚਾਲ ਚਲੁੰਬੜੈ ਨਾਵੜਾ ਲਈਐ ਕਿਸ, ਨਾਉ ਲਈਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ ਪੰਨਣ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੈ ਬੋਲੈ ਪੱਲੀ ਬਾਣ, ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਹੈ ਕਿਆ ਉੱਚੀ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ। ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਏ ਹਰ ਰੰਗ ਕੀਆ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਆਪ ਛੋਡੈ ਤਾਂ ਸੋ ਮਿਲੈ ਸੱਚਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਹਉ ਮੈਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਬੁਝ ਨਾ ਸਕਾ ਕਾਰ, ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤੁਝੈ ਧਿਆਇ ਦਾ ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਵਿਹਾਨ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਕਰ ਸਕੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਦਰ ਕਰੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਹਿ ਸਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਪਿਆਇਆ ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੋਗ ਨਾ ਪਗਵੀ ਕੱਪੜੀ ਜੋਗ ਨਾ ਮਹਿਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਜੇ ਪਵੈ ਬੇਦ ਪੜੈ ਜੁਗ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਪੇਟੈ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਵੈ ਮੋਹ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਖਸਮ ਕਾ ਮਤ ਪਵੀ ਫਿਰੈ ਚਲ ਚਿਤ, ਮਨਮੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸੁਖ ਕੇ ਪੁੱਛੈ ਮਿਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਲਾਏ ਚਿਤ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਾ ਮੂਲ ਕੱਟੀਐ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਵੀ ਮਿਤ। ਪੁੱਲਿਆਂ ਆਪ ਸਮਝਾਏ ਸੀ।

लावे अंतर जोर हो मैं तन माया कूड़ी आवे जाए सतगुर का फुरमाया मन न सकी दुत्तर तरिया न जाए नजर करे जिस अपनी सोच ले सतगुर भाए सतगुर का दर्शन सफल है जो इच्छा सो फल पाए जिन्नी सतगुर मन्या हो तिनके लागो पाए नानक ता का दास है जे अंदिन रह लिवलाए जिना प्री प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्ति है नानक मिले सुभाए गुरमुख के मन रहसी है जिना प्री प्यार क्यों जीवन फिर बहारे जासो देखन अपना नानक जीवन भी हरे जिना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया राती अतै डे हो नानक।

सतगुरु पुरख हर त्याय दा सतसंगत सतगुरु भाए सतसंगत सतगुरु सेवदे हर मेले गुरु मिलाए यो पौजल जगत संसार है गुरु बोहित नाम तराए गुरु सिखी पाना मन्या गुरु पूरा पार लंघाए गुरु सिखा की हर तूड़ दे हम पापी भी गत पाए गुरु मस्तक हर प्रभ लिखिया गुरु नानक मिलिया आए जम कंकर मार बिदारियन हर दरगे ले छाए गुरु सिखा नो सावास है हर तुखा मेल मिलाए गुरु पूरे हर नाम दिलाया जिन विच्चों परम चुकाया राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग दिखाया हों मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम बताया गुरमती जम जोहे न सके सच्चे नाए समाया सब आपे आप वर्ते करता जो पावे सो नाए लाया जन नानक नाउ ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया मन अंतर हों मैं रोग परम पूले हों मैं साकत दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन रात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुरु नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुरु के गुल बोले।

गुर कै शब्द अराधिय नाम रंग बैराग जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू इह राग जामू इक ता लख तौ जिती पिनने दर कितड़े बामन बिरथा गयो जन्म जिनकी तो सो विसरे थोरस पीजिए कबू न फीका हुए नानक राम नाम गुण गाये दरगह निर्मल सोए जो प्रभ रखे आप तिन कोए न मारे अंदर नाम निदान सदा गुण सारे एका टेप अगम मन तन प्रभ धारे लगा रंग अपार को।

दुई गणत लाहे अपनी नजर निहाल आपे लहो लाए जन देहो मति उपदेश विचों परम जाए जो सुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कष्ट दे वस दूजी नाही जाए नानक सुख आनंद भये प्रभ की मन रजाए गुर पूरा जिन सिमरिया से भय निहाल नानक नाम आराधना कारज आवे रास पापी कर्म कमाव दे कर दे हाए हाए नानक जो मथन माधानिया क्यों मथे धर्म राय नाम से आए साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवें कीतो पवन पुनीत खुबड़ी कुठाए मिठी गलन कुमंत्रिया।

दम मादम सो प्रभ चितना आवई नानक नहीं करम चिचर मूल न छुड़ी दो जिचर आप कृपाल शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर सन माल खंब विकांदड़े जे लहा किन्ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहा सुख जन टोल।

पांचों नारी पंचम हरख दिशा सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भात अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौ सका लापे संग रागनी पांचों थापे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुती उचारी तनाश्री ए पांचों गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा खौखट औ पौरानद गाए अष्ट

सरसबान औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत समोदा अष्ट पुत्र में कही सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन लावे।

सदा पवाई है। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म है जे पुजे, ताहूं मैं कह ना कोई। गावे को तान

सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पाणी के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवे ता वात ना पुछे के कीता अंदर कीत कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुझे जे तिस गुण कोए करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने तत धवल आकाश सुने दीप लो पाताल सुने पोहे ना सकै काल नानक।

हाथ हुए असगा नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कह पिछे पछताए कागज कलम ना लिखन हार मन्ने का वह कर्म विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुत हुए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की।

जे को मन जाने मन कोई, मन्ने मार्ग ठाक न पाई, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाय, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होय, जे को मन जाने मन कोई।

पवह ना पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोह दर राजहान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूत जे को बुझे हुए सचियार तबले ऊपर केता पार धरती होर परे होर होर तिस ते पार।

दरियाओ, कुदरत कवण कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई पली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मुह पखसार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कवण कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भख खाहे।

गत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोई बिन गुण कीते भगत ना होए स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कमण सुवेला वखत कमण कमण थित कमण वार कमण से रुती माह कमण जित होवा आकार वेल न पाइया पंडती।

जां करता सिर ठीक को साची, आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखण

आखह पड़े करह वखियान, आखह बरमे आखह इंद, आखह गोपी तै गोविंद, आखह ईश्वरे आखह सिद्ध, आखह केते कीते बुद्ध, आखह दानवे आखह देव, आखह सुर नर मुन जन सेव, केते आखह आखन पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करे ता आख ना सकह केई के, जेवड़ भावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखै बोल बिगाड़, ता लिखिया सिर गावारा गावार, सो दर केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब संभाले, वाजे नाद अनेक असंख।

देवतियां दर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारी गावन पंडित पंड रखीसर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पयाली गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूर।

आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग बजोग दोए कार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै।

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देस आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई।

जाए। धर्म खंड काए हो धर्म, ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश, केते बर में काड़त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बलोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे

वेद हथियार पवो खला अग्न तप ताओ पांडा पाओ अमृत तित ताल करिये शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत।

राजा धर्म दुआरे गावन कुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारी गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन।

आमन तुदनो पंडित पन्नर खीस जुग जुग वेदा नाली गामन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच्छ पाए आली गामन तुदनो रतन उपाए तेरे अठ सठ तीरथ नाली गामन तुदनो जोध महाबल सूरा गामन तुदनो खानी चारी गामन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ते।

सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन अपाई कर कर देखे कीता है अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोई।

खाई हर कीरत हमरी रहरास रहाउ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चितम है उद्दम जा आहर हर जियो।

सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया, ऊडे ऊड आवे सह कोसा, तिस पासे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सन

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमय अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्या

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे है हर त्यावे है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे श्रेष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन ना

सो कर राख वडाई तोय रहाउ विसे चसियां कड़ियां पहरां थित्ती वारी माह होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाउ सहस तव नैन नन नैन है तुहि कहो सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोई किस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो

ही पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाही कर साधु अंजुली पुन बड़ाही कर दंडौत पुन बड़ाही रहाउ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हों मैं कंडाही ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पाव है जमकाल सह सिर डंडाही हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम।

जो तिस भावे है से भले कोर के कहन बखान तिन मत तिन पत तिन धन पल्ले जिन हृदय रहे आसमाए तिन का क्या सा लाहना।

तिसमिन सब अपवित्र है जीता पहनन खान होर गल्ला सब कूड़िया तुद भावे परवान श्री राग महल पहला जाल मोह घस मस कर

जित खादे तन पीड़िय मन मह चलह वेकार रहाउ रत्ता पहनन मन रत्ता सोपे दी सत दान नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर ध्यान कमर

रहाउ। पूज लगे पीर आखिए सब मिले संसार, नाउ सदाए अपना होवे सिद्ध सुमार। जा पत लेखे ना पवे सभा पूज खुआर, जिनको सतगुरु थापे।

मनिय अखंड सदा सच सोए खेहू खेर लाई है ता जियो केहा होए जलिया सब सियाण पां उठी चलिया रोए नानक नाम वसारे है दर गया क्या होए श्री राग महला पहला गुणवंती गुण वीथर औगुणवंती झूर जे लोड़ है वर कामणी नह मिलिए फिर कूर ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना पाइए फिर दूर मेरे ठाकुर पूरा तख्त अडोल गुरमुख पूरा जे करे पाइए साच अतोल रहाउ प्रभ हर मंदर सोहना तिस मेहमान कलाल मोती हीरा निर्मला कंचन कोटरी साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलहा हर नाम गुर सर सागर बोहितो गुर तीर्थ दरियाओ जे तिस भावे उजली सत सर नावन जाओ पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास पूरे थान सुहावन पूरे आस निरास नानक पूरा जे मिले क्यों घट है गुणतास श्री राग महला पहला आप वो भैने गल मिले अंक सहेलड़िया मिलकै करह कहानियां समरत कंत किया साचे साहिब सब गुण औगण सब असहा करता सब को तेरे जोर एक शब्द बीचारिय जां तू तां क्या होर रहाओ जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया कि

केता आखण आखी आखण तोट ना होए मंगण वाले केतड़े दाता एको सोए जिसके जी प्राण है मन वस्या सुख होए जग सुपना बाजी बनी खिन मह खेल खिलाए संजोगी मिल एक से वे जोगी उठ जाए जो तिस भाणा सो थी है अवर ना करना जाए गुरमुख वस्त वे साही है सच वखर सच रास जिन्नी सच वणंजिया गुरपूरे साबास नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास श्री राग महल पहला धात मिले फुन धात को सिफती सिफत समाए लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोखियां हर जप एक पाए भाई रे संत जना की रेण संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेन रहाओ ऊंचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार त्रिविध कर्म कमाई है आस अंदेसा होए क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए निज कार महल पछाणिए नदर करे मल धोए बिन गुर मैल ना उतरे बिन हर क्यों घर वास एको शब्द विचारिए अवर त्यागे आस नानक देख दिखाइए हौ।

न पावे ता सब अडंबर कूड सब रस भोगण बाद है सब शिंगार विकार जब लग शब्द ना भेदी है क्यों सो है गुरुद्वार नानक धन सुहागणी।

सच मिले गुरमत पल्ले पाए, सो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए, नानक दर प्रधान सो दरगाह पैंदा जाए। श्री राग महल पहला, तन जल बल माटी भया, मन माया मोहे मनूर, औगण फिर लागू भये कूरव जावे तूर, बिन शब्द परमाई है दुबदा डोबे पूर, मन रे शब्द तरहो चित लाए, जिन गुरमुख नाम ना बूझिया मर जन्मे आवे जाय। रहाउ तन सूचा सो आखी है जिसमें साचा नाउ, भय सच राती देहोरी जेहवा सच सुआउ, सच्ची नदर निहाली है

गुरमुख नाम सलाहिए हौ मैं निवरी पाही रहाउ। सुन सुन गंडन गंडिए लिख पढ़ बुझह पार। तृष्णा अहनिस अगली हौ मैं रोग विकार। ओह वे परवाहु अतोलवा गुरमुख कीमत सार। लख सियाणप जे करी लख सियो प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी गुरमुख चीनै आप। तन मन गुर पह वेचिया मन दिया सिर नाल। त्रे भवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल। सतगुर मेल मलाया नानक।

घर जाइय तित जीवनिया मर मार अनहद शब्द सुहावने पाइय गुर विचार अनहद बाणी पाइय।

रव रहे शिव शक्ति का मेल, त्रेहो गुण बंदी देहरी जो आया जग सो खेल। बेजोगी दुख विछड़े मन मुख लह ना मेल, मन बैरागी घर वसै सच भै राता होए, ज्ञान महारस भोग।

रूंग वड्डा मन माही क्यों दरगाह पत पाई जां हर ना वसै मन माही गुर मिलिया सुख पाई है।

गत गए नाही सहसा सोग। गुरमुख जिस हर मन वसे तिस मेले गुर संयोग। काया कामन जे करी भोगे भोगण हार। इस सियो नेहो ना की जई जो दिसै चलन हार। गुरमुख रवह सुहागणी सो प्रभ सेज पतार। चारे अग्न निवार मर गुरमुख हर जल पाए। अंतर कमल परगासिया अमृत भरिया अगाए। नानक सतगुर मीत कर सच पाव है दरगाह जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया। गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई है। तुलिए पूरे तोल कीमत किने ना पाई है। रिद मानक मोल अमोल पाई रे हर हीरा गुरमाहे। सत संगत सत गुर पाई है अहनस शब्द सलाहे। रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर परगास। ज्यों अग्न मरै जल पाए त्यों तृष्णा दासन दास। जम जंदार ना लगई इउं पौ जल तरै तरास। गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए।

गुर मिल पाओ जन लंगिया दरगाह पात परवान नानक ते मुख उजले धुनि उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज करहो वणजारि हो वखर लिहो संभाल तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल अगे साहु सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर।

सुख होए, खोटे वणज बणजिए मन तन खोटा होए, ठाही फाथे मिर्ग ज्यो दुख घणो नेतरोए, खोटे पोते ना पवह तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला, राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना, हर जप लाहा अगला निरपव हर मन।

साहिब राव रहया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल।

तू ओ ना का तेरे ओहे असी बोल बगाड़ बगाड़ है बोल तू नदरी अंदर तोल है तोल जह करनी तह पूरी मत करनी बाजो घटे घट प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए आप पछाणे बूझे सोए गुर प्रसाद करे विचार सो ज्ञानी दरगाह परवान श्री राग महला पे।

शलै नह काऊ कटारा कर सकै ज्यों साहिब राखै त्यों रहै इस लोभी का जियो टल पलै बिन तेल दीवा क्यों जलै रहा पोथी प्राण कमाइयै पौ वट्टी इत तन पाइयै सच बूझण आन जलाइयै इहो तेल दीवा इउं जलै कर चानण साहिब तौ।

हर सेती मन रव रहिया, कर ही माहे उदास, जिन्ना हर का सादे आया, हौ तिन बलिहार जास, नानक नदरी पाई सच नाम गुणतास, श्री राग महला तीजा, बहु भेख कर परमाई, मन हिरदय कपट कमाई, हर का महल ना पावई, मर विस्टा माहि समाई, मन रे ग्रह ही माहि उदास, सच संयम करनी सो करे, गुरमुख होए परगास, रहाओ गुर कै शब्द मन जीतिया, गत मुक्त करै मह पाए, हर का नाम त्याई है, सत संगत मेल मिलाए, जे लख इस्तरिया भोग करह, नव खंड राज कमाहे, बिन सतगुर सुख ना पावई, फिर जोनी पाहे, हर हार कंठ जिन्नी पहरिया, गुर चरणी चित लाए, तिन्ना पिछे रिद सिद फिरै, ओना तिल ना तमाए, जो प्रभ भावै सो थीए, अवर ना करना जाए, जन ना

पार्स परसी है पार्स हुई, ज्योति ज्योत सुमाई, जिनको पूर्व लिखिया तिन सत गुर मिलिया आई। मन पुखा पुखा मत कर है, मत तू कर है पुकार, लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार।

से निर्मले हौ सद बलिहारे जास हृदय जिनकै हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर गुरमत जिन्नी पछाणिया से देख है सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन वसै औगणवंतिया दूर मनमुख गुण तै बाहरी बिन नावे मरदे झूर जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन त्याया हर सोए अन दिन भगती रत्या मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओह सदा सदा थिर होए एहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चेतै लिव लाए पग खिसै रहना नहीं आगे ठौर ना पाए ओह वेला हथ ना आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उबरै हर सीती लिव लाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए जिन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए हर गुण गाव है हर नित पढ़ है हर गुण गाए समाए नानक तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिव लाए श्री राग महला तीजा जिन्नी एक मन नाम ते आया गुरमती विचार तिनके मुख सद उजले

समाए, तिनका जन्म सफल है, जो चल है सतगुर पाई, कुल उधार है अपना, धन जड़ेंदी माए, हर हर नाम त्याई है, जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्नी गुरमुख नाम त्याया, विचो हो आप गुआई, वे अंदर हो बाहर हो निर्मले,

हर भगता हर तन रास है, गुरपूछ कर है वापार, हर नाम सलाहन सदा सदा, वखर हर नाम आधार, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार, भाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या कर है, गुरमुख नाम त्याई रहाव, हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना होवे दुबदा बोल खुआर, सो जन रलाया ना रले, जिस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है, जो हर राख है उरतार, मन तन सौंपे आगे धरे, हो मैं विचो मार, तन गुरमुख सो

अनदिन नाम ते आई रहाउ साची मैल ना लागई मन निर्मल हर ते आई गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाई गुरु ज्ञान प्रचंड बुलाया अज्ञान अंधेरा जाई मनमुख मैले मल परी हऊ।

गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार श्री राग महला तीजा मन मुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी ना होए शब्द ना चीने सदा दुख हर दरगह पत खोए हम मैं गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए मेरे मन अहनस पूर रही नित आसा सतगुर सेव मोह परज लै घर ही माहे उदासा रहाउ गुरमुख कर्म कमावै बिगसै हर बैराग आनंद अन बिन भगत करे दिन राती हौं मैं मारनी चंद वड्डै भाग सत संगत पाई।

नाम निदान सद मन वसै महली पावै थाउ रहाउ। मनमुख मन तन अंध है तिसनों ठौर ना ठाउ। बहु जूनी पौंदा फिरै यूं सुन्ये घर काउ। गुरमती घट चानना